मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 22 जून 2026। प्रातः के 5:56 और 36 सेकेंड्स हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA

0: परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं इस देशगान के साथ।

देवों में देव महादेव जी की कृपा जिन पर हो तो शक्तिहीन व्यक्ति ऊर्जा से भर जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है और अकिंचन भी समृद्ध हो जाता है। ऐसे प्रभु भोलेनाथ को हमारा बारंबार प्रणाम है।

0: ये थी आज की वंदना। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
3: योग एक प्राचीन कला है और हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, तब से विश्व भर के सभी वर्गों के लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ी है। योग संस्कृति और आध्यात्म हमारी गौरवशाली विरासत है और मानव सभ्यता के लिए एक अनुपम योगदान है। योग का प्रयोग हमारे तन मन को निरोग बनाकर दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। तन और मन को संपूर्ण स्वस्थ रखने के लिए योग और राजयोग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक है। लोगों की आधुनिक जीवन शैली में नकारात्मकता का प्रभाव ज्यादा है, इस कारण चिंता, तनाव, भय, निराशा मनुष्य के मन में घर कर चुका है। फलस्वरूप शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। वर्तमान समय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है। सच्ची खुशी कोसों दूर हो गई है। जीवन में तन और मन की संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग और राजयोग को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। आसन प्राणायाम से तन की तंदुरुस्ती प्राप्त होती है और राजयोग से हमारा मन सशक्त बनता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, चिंतन श्रेष्ठ बन जाता है। कहा जाता है जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोच वैसा स्वास्थ्य। स्वस्थ तन और मन सुखी जीवन का आधार है, इसलिए अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाए, जीवन में एक आदत डाल ले। कोई भी कर्म करने के पहले नकारात्मक नहीं सोचना है। अच्छा सोचेंगे अच्छा बनेंगे, और इसके लिए जरूरी है योग और राजयोग का नियमित अभ्यास। नियमित रूप से योगाभ्यास हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करके बीमारियों को समाप्त करता है। योग से स्मरण शक्ति और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। राजयोग तनाव, चिंता, भय आदि विकृतियों को दूर करने में बहुत लाभदायक है। योगाभ्यास द्वारा समाज को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं, क्योंकि योग से आंतरिक चेतना का विकास होता है। कहा जाता है योगः कर्मेषु कौशलम्, योग से कर्मों में कुशलता आती है। योग का अर्थ है जोड़, संबंध या मिलन। राजयोग आत्मा का परमात्मा से मिलन की विधि है। योग हमारे तन मन दोनों को स्वस्थ बनाता है। मन वचन कर्म में समानता आती है। जीवन जीने की यथार्थ कला सिखाता है। मानव और प्रकृति के बीच समरसता स्थापित करता है। योग से हमारे जीवन का तनाव दूर होता है और जीवन खुशहाल बनता है। तो आइए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए नियमित योगाभ्यास का संकल्प लें। योग से सकारात्मक चिंतन के द्वारा औरों के प्रति शुभ भावना रख वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करें।
0: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर ब्रह्म कुमारी मंजूषा का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन।

श्री रामचरितमानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से राम कथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेद मत और लोक मत इसके दो किनारे हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर वाणी जयराम का था, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चौगोट।
1: काश्तकार भाई बहन मन, कहीं भले फसल चो कमानी कर ले, बेड़ा ने खरपतवार बल्ले लाटा बूटा बल्ले अखरू आए और बेड़ा ने जितलो लाटा बूटा रह दे उतलो फसल के नुकसान करे दे। ऐ लागुन एच रोकथाम करतोर खूबे जरूरी आए। गोटोक गोट बल्लो आसे बेड़ा ने कुनी बले एक बरक लाटा बूटा अखरुक देतोर, जो मतलब आए 7 बरक तक लगातार लाटा बूटा के बेड़ा ने अखरातोर। ऐ लागुन बेड़ा के लाटा बूटा ले बचातोर खूबे जरूरी आए। फसल संगे लाटा बूटा बले खद भात और दूसर जीनिस पाउन बाढ़ते जाऊआ और फसल संगे हरा जीता बाढ़ते जाऊआ। जेचो लागुन बेड़ा ने फसल जो उत्पादन कम हुआ है, संगे संगे बेड़ा ने अखर तो लाटा बूटा ने फसल जो दुश्मन कीड़ी मन जहुटुआत, जोन फसल काजे खूब हानिकारक हुआत। ऐ लागुन फसल जो अच्छा कमानी करतो काजे ए वाट मन के करतो राय। सबले पहल शुद्ध और साफ बीज के बुनतो राय। हमके कहीं भले फसल चो बीज के धरतो पहल उनके अच्छा दखुन पाकिट बीती बीज के बुनतो राय। संगे संगे बीज के पाकिट ले निस्काउन साफ करतो राय और कहीं भले दूसर बीज रले उनके निस्कातो राय और सिर्फ फसल बीती बीज के बुनतो राय। दूसर वाट जोन बेड़ा ने लाटा बूटा जुगे अखरुआ हूं थाने झपके बाढ़ तो बीती फसल के बुनतो राय। असन झपके बाढ़ तो बीती फसल बाड़ून भूई के ढाके से जेचो लागुन घाम खाले नी पाए और घाम नी पाओ तो लागुन बेड़ा ने लाटा बूटा जुगे नी अखरुक सके। लाटा बूटा चो रोकथाम काजे तीसर वाट बुनतोर विधि आए। फसल के हमी छिड़काव बुनवाओ। छिड़काव विधि ने बुनले पाछे बाढ़लो फसल ले लाटा बूटा झिकतोर बले बल्ले मिजानी ने भारी तकलीफ होय से। संगे संगे ये विधि ने बेड़ा चो सभय भाग ने फसल चो बूटा समान नी रहे से, जेचो लागुन उत्पादन ने कमी होय से। ऐ काजे रोपा विधि ले बेड़ा ने फसल लगा ले बेड़ा चो लाटा बूटा के छुकछुका गुचाई होय से, जेचो लागुन उत्पादन बले आगर होय से। असने बुनतो समय चो बले ध्यान रखून लाटा बूटा चो बाढ़ती के रोकथाम करुक सकूं। जोन भूई ने लाटा बूटा जुगे अखरुआए असन भूई ने समय चो आगे नहाली समय चो पाछे बुनतो राय। समय चो आगे बुन ले फसल चो बूटा झपके बाड़े दे और लाटा बूटा खाले रहे दे, तेबे घाम नी पड़तो लागुन लाटा नी बाड़ूक सक दे। असने समय चो पाछे बुन ले जागलो लाटा बूटा के जोपुन निस्काउन पकाउन देतो राय और ये चो पाछे फसल के बुनतो राय। असन कर ले फसल ने लाटा बूटा ने बचाउक लाए सकुआ। बुन तो बेरा हमके ये गोट के बले ले कर तो राय कि जोन ट्रेक्टर नहाले नागर ले कोनी बेड़ा ने बुनु से और हुन बेड़ा ने लाटा बूटा आगर आसोत। असन बेड़ा ने बुनुन दूसर निको बेड़ा जोन थाने लाटा बूटा कम आसोत, असन थाने हुनी ट्रेक्टर नहाले नागर ने बुन ले पहिल लाटा बूटा बीती बेड़ा चो बीज दूसर निको बेड़ा ने जाय से, जेचो लागुन हुन बेड़ा ने बले लाटा बूटा अखरुक सके। ऐ लागुन गोटोक बेड़ा ने बुनलो पाछे नागर के अच्छा ले साफ सफाई करतो राय, ये जो पाछे दूसर अच्छा बेड़ा ने बुनतो राय। ये गोट के बले ध्यान देतो राय कि भूई ने फसल चो बूटा चो संख्या ने कमी बले नहीं हो और आगर बले नहीं होतो राय। बूटा कम होले लाटा बूटा आगर बाड़ुआ और बूटा जन होले पौधा चो बाढ़ती अच्छा होक नहीं सकुआ। ऐ काजे

0: टचो संख्या भूचो अनुसार बराबर होतो राय। असने बेड़ा मन ने फसल चक्र बल्ले अपना तो राय। फसल चक्र बल्ले हमेशा धान नी बुन तो राय, कोनी कोनी बरक दूसर फसल बुनून दे तो राय। असन कर ले बल्ले लाटा बूटा चो रोकथाम करुक लाय सकू। लाटा बूटा चो रोकथाम काजे अकरस जोताई कर तो राय। अकरस जोताई कर ले गरम दिने घाम ने लाटा बूटा चो बीज मरे से संगे संगे ये बीज के चढ़ी चुड़ुम बले खास होत। जेचो लागुन अकरस जोताई कर लो ने बेड़ा मन ने लाटा बूटा चो अखरतो के रोकथाम करुक लाय सकू। असने बेड़ा मन ने पानी भरून दे तो राय। बेड़ा ने पानी भरू रले भूई ने बल्ले लेहरा अमरुक नहीं सके। जेचो लागुन लाटा बूटा मरुन जाऊआत। अजिक दिन पाछे पानी के बेड़ा ले बाहर निस्काउन भूई सुकुक दे तो राय। असनु आठ दुई तीन हार कर ले बेड़ा ने लाटा बूटा मन नष्ट हो सोत। काश्तकार भाई बहन मन एबे सांगलो वाट के धरून बेड़ा मन ने लाटा बूटा चो रोकथाम चो उपाय कर ले। फसल चो उत्पादन नगद होय दे और फसल चो नगद उत्पादन होले आमदनी बले नगद होय दे।
1: अभी बेड़ा खाड़ा चौगोट का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकवाद्य धुन का कार्यक्रम हुलहुली। आज इसमें सुनिए भारत और साथियों का बजाया गुंडरूप हैरमपाड़।

0: हुलहुली कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गुंडरू भैरमपाड़। वादक कलाकार थे भारत और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 7:05 पर नमस्कार जगदलपुर में आज के आकर्षण। आज के अतिथि कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर स्वर्णिम मिश्रा से चंद्र ऋषि ठाकुर की ली गई भेंट वार्ता। विषय होगा मानसिक स्वास्थ्य और काउंसिलिंग का महत्व। साथ ही होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर लोक मंजरी कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे बस्तर के विभिन्न लोकगीत। लोक साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम मोचो माटी का प्रसारण होगा सुबह 9:00। कार्यक्रम के संपादक होंगे बलवीर सिंह कच्छ। 9:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज की फिल्म होगी प्यार झुकता नहीं। गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10:00 आनंद लीजिए पुराने नख्मों का। मासो और साथी गोंडी गीत प्रस्तुत करेंगे गुड़दुम कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर। दिन के 11:00 होगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज इसमें सुनिए सुप्रसिद्ध संगीतकार एसडी बर्मन पर कार्यक्रम। पाटा केंजा में दिन के 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गोंडी गीत। कलाकार होंगे जयलाल और साथी। दिन के 12:00 होगा कार्यक्रम कला और कलाकार। 12:30 पर प्रसारित करेंगे ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार। दोपहर 1:05 पर बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनर्प्रसारण आप सुन सकते हैं। दोपहर 1:10 पर रोजाना हम पेश करते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। शाम की सभा में शाम 5:05 पर सुनिए समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। ये कार्यक्रम आज हल्बी बोली में होगा। युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय शाम 5:10। शाम 6:30 पर गोंडी लोकगीत प्रस्तुत करेंगे दशरू और साथी। बस्तर के स्वर शाम 7:00 और शाम 7:21 पर होगा कार्यक्रम आमचो गांव। लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में रात 8:00 आज हम आपको सुनवाएंगे लक्ष्मण और साथियों के गाए गोंडी गीत पिलामन काजे गोट। ये कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर। इसमें पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पर जानकारी देंगे फूल सिंह कश्यप। जीवना चोसोर कार्यक्रम में रात 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रगति महिला स्व सहायता समूह मंगनार की सदस्य भगवती देवांगन से बलवीर सिंह कच्छ द्वारा ली गई भेंट वार्ता। भेंट घाट कार्यक्रम सुनिए रात 9:30 पर। इसमें साक्षरता की आवश्यकता विषय पर बलवीर सिंह कच्छ की वार्ता हम आपको सुनवाएंगे। और रात 10:00 लोकगीतों के कार्यक्रम कोदो माली में सुनिएगा लच्छूराम और साथियों के गाए गोंडी गीत। श्रोताओं हम आपको एक बार फिर याद दिला दें लोक साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम मोचो माटी हम प्रसारित करेंगे सुबह 9:00। इस कार्यक्रम के संपादक होंगे बलवीर सिंह कच्छ। सुबह 9:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे प्यार झुकता नहीं फिल्म के गीत। दिन के 11:00 एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनिए। ये कार्यक्रम आज केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध संगीतकार एसडी बर्मन पर। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पोताः आईएनएस दुनागिरिः, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
2: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे द्विशताधिकाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति पञ्चशताधिकाः व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्र पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु चत्वारिंशद् अधिक चतुश्शतोत्तर पञ्चसहस्र परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन द्वादश श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामः क्रमशः प्रकाशितः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु सप्ताशीत्यधिक शतं प्रतिशतं परिणामः घोषिताः सन्ति, अवशिष्ट परिणामः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं सीबीएसई इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां सप्त जनाः मृताः, सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि-द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के

0: ये जांच के आदेश दिए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

हमारा जीवन भले ही हमें माता पिता से मिला हो, लेकिन इस धरती पर आने से लेकर हमारी परवरिश, हमारी उपलब्धियों और हमारे विकास में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है वो है प्रकृति। हम नतमस्तक हैं उस पर्यावरण के प्रति जो जीवन का पर्याय है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आरंभ करते हैं आज का नमस्कार जगदलपुर।

नमस्कार, जगदलपुर कार्यक्रम में आज आपके लिए है आज के अतिथि और मधुरिमा। इन कार्यक्रमों के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं रानू। नमस्कार श्रोताओं, आइए रोज की तरह कुछ बातचीत कर लें, कुछ चर्चा कर लें। श्रोताओं, आजकल सोशल मीडिया अपनी पहचान दिलाने या अपनी उपलब्धियों को प्रचारित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पिछले दिनों पर्यावरण दिवस पर जगह जगह वृक्षारोपण करते हुए तमाम लोगों ने अपने फोटोज वीडियोज अपने अपने मोबाइल पर लगाए। अच्छी बात है, ये प्रेरक प्रयास है, लेकिन क्या केवल इतने से ही हमारे कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है? केवल स्टेटस लगाने या संदेश भेजने से पर्यावरण नहीं बचेगा श्रोताओं। यदि सचमुच हमें अपने आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा, भरपूर पानी और हरियाली देनी है तो पेड़ लगाएं, पौधे रोपें, वृक्षारोपण करें और उनकी देखभाल का जिम्मा भी लें। उसी तरह जिस तरह हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। याद रखें, एक पेड़ हजारों लीटर पानी बचाने में हमारी मदद करता है। एक पेड़ सैकड़ों जीवन को जीवन भर ऑक्सीजन देता है और एक पेड़ लाखों लोगों को रोग मुक्त और स्वस्थ कर सकता है। जी हाँ श्रोताओ, आज लगाया गया पौधा आने वाले वर्षों में पूरे समाज की, गांव की, शहर की पहचान बन सकता है। देश के कई हिस्सों में बारिश आ चुकी है। खासकर बस्तर की बात हम करें तो आज सुबह से ही यहाँ झमाझम बारिश हो रही है। यही सर्वोत्तम समय है पौधारोपण के लिए। इसलिए संकल्प लें, एक व्यक्ति एक पौधा, एक परिवार चार पौधे और एक गांव हजार पौधे। इस तरह कल्पना कीजिए आने वाले समय में कितनी हरियाली होगी। आपके लगाए पेड़ों की छांव में आपकी आने वाली पीढ़ियां बैठेंगी और आपके प्रतिदानों के प्रति कृतज्ञ होंगी। याद रखने वाली बात है श्रोताओं, वृक्षारोपण या पौधारोपण के लिए किसी दिन विशेष की आवश्यकता नहीं, वृक्ष हमारी अपनी आवश्यकता है। आइए बनाएं एक हरी भरी वसुंधरा।

0: बूंद जो बन गई मोती। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश के स्वर में। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
5: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
4: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
6: बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दरकिता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोर कीता।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं अब बारी है आज के अतिथि कार्यक्रम की। इसमें आज सुनिए डॉक्टर स्वर्णिम मिश्रा से चंद्र ऋषि ठाकुर की ली गई भेंटवार्ता। विषय है मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग का महत्व। आइए सुने ये भेंटवार्ता।
7: आकाशवाणी के आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, कई बार हम अपनी दिनचर्या में ऐसे व्यस्त रहते हैं और अपने दिन प्रतिदिन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि कहीं हम किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर किसी मानसिक परेशानी से तो ग्रसित नहीं है। कई बार हमें काउंसलिंग की जरूरत होती है, लेकिन इसके अभाव में हम काउंसलर की मदद नहीं ले पाते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे ही एक काउंसलर को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करें और आपको बताएं कि काउंसलर की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है और वो किस तरह से हमारी काउंसलिंग कर हमारी मदद कर सकते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है स्वर्णिम मिश्रा जी को। आप एक साइकोलॉजी काउंसलर हैं और आप बच्चों, बूढ़ों, वयस्कों सभी को काउंसलिंग देते हैं। तो सबसे पहले स्वर्णिम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
8: थैंक यू मैम।
7: तो जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप काउंसलिंग करते हैं, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे जीवन में काउंसलिंग का क्या महत्व होता है और ये परिवारों को या फिर व्यक्तियों को किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है।
8: जी, सबसे पहले हम समझते हैं काउंसलिंग होता क्या है। जैसे कि साइकोलॉजी फील्ड के अंदर आते हैं 3 श्रेणी, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और गाइडेंस। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई अगर किसी को ज्ञान दे रहा है, गाइड कर रहा है, तो फिर वो काउंसलिंग है। ये डिफरेंस हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग गाइडेंस नहीं है। काउंसलिंग जो है कि काउंसलिंग का महत्व इस बात से है कि वह इंसान को समझता है, एक काउंसलर उसे सुनता है और अपने भीतर चल रही उलझनों को स्पष्ट कर पाते हैं सामने जो आते हैं, और वो एक सुरक्षित स्थान देते हैं जिसमें वो अपनी बातों को बता पाए, और अपने इमोशंस को जब निकलता है इंसान का और वो अपने इमोशंस को देख पाता है, तब जाके उसको पता चलता है कि घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है। अक्सर हम ये करते हैं कि हम जो घबराहट हो रही है उसको साधारण समझते हैं, क्योंकि ऐसे ही जिंदगी कट रही है, वैसे ही कटेगी, इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा दुख हर साल हमारे अंदर रहता ही है, और हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और बोलते हैं कि हमें मानसिक तनाव नहीं है या फिर वो कुछ बड़ी बात है काउंसलर पास जाना, हमें इसे नॉर्मलाइज करना चाहिए आज के डेट में। इसलिए जगदलपुर में इसका अवेयरनेस लाने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी इंडिया में भी इसकी अवेयरनेस जोरों शोरों से हो रही है
7: जी। और आपसे हम ये भी जानना चाह रहे थे कि ये किस तरह से परिवारों को और व्यक्तियों को फायदा पहुंचाता है।
8: जी, परिवारों को और पेरेंट्स को इस चीज में बहुत समझने की जरूरत है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो हमेशा ये नहीं होता है कि वह कहीं नालायक है। हमें कभी कभार अंडरस्टैंड करना है कि उसे पढ़ने में

0: जा क्यों रही है। इसके लिए हम एक्स्ट्रा ट्यूशंस लगाते हैं, पर आजकल के टाइट शेड्यूल के कारण वो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काउंसलर एक बड़ी भूमिका निभाता है। उसे अंडरस्टैंड करता है बच्चों की कि चल क्या रहा है दिमाग में, क्यों वो अपने आप को एक नालायक, एक कमज़ोर इंसान समझ रहा है। अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स को थोड़े सोचने चाहिए कि अगर बच्चे को हम बार बार किसी चीज़ को बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा इतना भोला भाला होता है कि वो अपने आप को वो समझने लग जाता है। तो पेरेंट्स ध्यान रखें और मारे ना, आज के डेट में मारे ना। मारने से बच्चा रिपेल करेगा और जो समझाने चाह रहे हैं वो नहीं समझेगा। आज के डेट में बहुत जगह में मारना कम हो गया है, बंद हो गया है, और उसके जगह अच्छी शब्दों के प्रयोग करके बच्चे को एक नया सोच दे सकते हैं, जिससे वो अपने आप को काबिल समझे और सोच पाए कि पढ़ाई में कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो सोचेगा कि पढ़ाई कर सकता हूँ, तो कर पाएगा।
1: जी। और कई बार ऐसा होता भी है कि बच्चे को उनके माँ बाप बोलते रहते हैं कि तेरे को तो कुछ नहीं आता, तू तो गधी है या फिर तू गधा है, इतना सा सवाल तुझसे नहीं बनता। तो इस तरह की जो निगेटिव टॉकिंग है आजकल आम हो गई है, तो क्या ये बच्चों के लिए सही है?
0: जनरेशन से ये चीज़ नॉर्मलाइज हम कर रहे हैं। जैसे खुते द पुत्तर बोल देते हैं हम लोग, ये तो ये माँ का प्यार है, ये पापा का प्यार है बोलते हैं। पर ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट इतना हद तक देता है कि इंसान उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। अभी हम समझें अगर काउंसलिंग का, कि सोचते हैं कि आज के डेट में काउंसलर्स का जरूरत पड़ रहा है, पहले के समय में हमारे ज़माने में तो ज़रूरत नहीं पड़ता था, कहते थे पेरेंट्स। वो पेरेंट्स का भी मैं काउंसलिंग करता हूँ और अच्छे समझाता हूँ प्यार से, कि उस समय ऐसा नहीं था कि काउंसलिंग का जरूरत नहीं था, पर उस समय हमारे रिक्वायरमेंट क्या थे। उस समय हमारे रिक्वायरमेंट थे कि हम पैसा कमाएं, हम घर बनाएं, बच्चों के लिए संपत्ति रखें। उस समय ये सोचने का समय नहीं था, भले सोचते बहुत लोग थे और उस चक्कर में कितनों ने सुसाइड भी किया होगा। उस चीज़ का हमें आइडिया नहीं, उस चीज़ में बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो हो गई पुरानी बात। वो नहीं है कोई सेलिब्रिटी, वो नहीं है कोई बड़े आदमी, तो फिर इसलिए उस बारे में जिक्र भी नहीं हुआ। आज के डेट में सुशांत सिंह के बाद से हम उस बारे में अच्छे से ध्यान से सोच पा रहे हैं, सुन रहे हैं सब लोग अटेंटिवली, तो ये एक अच्छी बदलाव है।
1: तो बच्चे की किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो देखभाल कर सकते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे पेरेंट्स प्रभावित कर सकते हैं?
0: जी, ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली हम काउंसलर के पास जाएं, काउंसलर के पास जाया जा सकता है। और पेरेंट्स सबसे पहले अंडरस्टैंड करें पेरेंटिंग टेक्निक्स, उसमें वो माइंडफुलनेस लाएं अपने अंदर पहले, क्योंकि अक्सर क्या होता है पेरेंट्स भी ज़बरदस्ती नहीं चिल्लाते होते हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ट्रॉमा होती है, एंग्जाइटी होती है, डर होता है, खौफ होता है, जो ज़माने के कारण मिला रहता है, लोगों से बुरा व्यवहार मिला रहता है। तो उनको डर रहता है कि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो जितना हो सके बच्चों को चिल्लाते हैं ताकि वो जमाने से कॉन्फिडेंट होके फेस कर पाए। पर उस चक्कर में क्या होता है कि वो बच्चे पे गुस्सा कर देते हैं, और बच्चों को समझने के लिए माइंडफुलनेस जब लाएंगे, माइंडफुलनेस कुछ नहीं होता है, बस हम अपने दिनचर्या में रोज क्या हो रहा है उसको होश पूर्वक करते हैं। जब हमारे पास ये आसपास ये सब है, हमारे ये सब खुशबुएं आ रही हैं, तो उस चीज़ को फील करेंगे जब, तो फिर हम अच्छे तरीके से अपने होश आवाज़ में आ पाएंगे। उसके बाद अपने आप को ठीक करेंगे, अपने आप की काउंसलिंग कराएं, उसके बाद फिर बच्चे को अच्छे से परवरिश दे पाएंगे, अच्छे से प्यार दुलार से पूछ पाएंगे कि तेरे दिन में क्या बीता, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने तुझे परेशान किया, किसी ने तुझे मारा। तो उस चीज़ से ज़िंदगी बदल सकती है एक बच्चे की, क्योंकि वो बच्चा भी फिर कॉन्फिडेंट होगा। जितना पेरेंट्स, माँ और पिता दोनों से प्यार मिले, बच्चा उतना फलता फूलता है और उतना ज़्यादा खुश होके ग्रो कर पाता है।
1: जी। और कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि बच्चा जो है, एक तो घर में उसको जो ताने मिलते हैं उससे तो परेशान रहता ही है, फिर स्कूल भी जाते हैं, स्कूल में भी अलग उन पर दबाव रहता है, पढ़ाई का, लोगों के बीच घुलने मिलने का, दोस्त बनाने का, और इन सब चीजों में फंस के कभी कभी उसको चिंता भी होता है, तनाव भी होता है, और इसके लक्षण बच्चों में दिखते भी हैं। लेकिन जो अभिभावक है या फिर माता पिता है वो उस चीज को पहचान नहीं पाते कि शायद हमारे बच्चे को ये समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के किस तरह से पहचान किया जा सकता है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं अभिभावकों द्वारा?
0: उसे कुछ समय तक छोड़ के उसे एक प्राइवेट स्पेस दें, उसका एक अलग से रूम रखें, रूम नहीं है तो एक ही रूम है अगर, तो उसको थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दें। वो बैठेगा, सोचेगा अपने सोच के बारे में, ये बात हो रहा है मेरा 15 से अबाव के बच्चे के बारे में, तो वो बैठेगा सोचेगा उसके साथ क्या हो रहा है, वो टाइम लेगा, और जब उसका मन करेगा ही, क्योंकि वो बच्चे जो है पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, तो आखिरकार जो भी हो जाए हार के आएगा पेरेंट्स को ही अपनी सारी बातें बताएगा। तो उसको टाइम दें, उसको स्पेस दें, और फिर उसके हड़बड़ी ना करें। क्या होता है कि हम जब एंग्जाइटी में होते हैं, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो हड़बड़ा जाते हैं। जब हमें अक्सर पता नहीं होता है कि हम एंग्जाइटी में होते हैं। एंग्जाइटी हमको शब्द पता है, उसका मतलब

0: भी डेफिनेशन गूगल कर सकते हैं, पर क्या हमें उस वो चीज है वो हमें पता ही नहीं होता। जैसे डॉक्टर के पास हम बाकी बीमारियों को चेकअप कराते रहते हैं, हमें इसका भी चेकअप करा लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, अगर ज़्यादा चिड़चिड़ापन लग रहा है, तो फिर हमें वो चेकअप करा लेना चाहिए। और वो चेकअप कराने के बाद पता चलेगा कि हम अगर चिड़चिड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम हड़बड़ा रहे हैं, और हड़बड़ाने के चक्कर में बच्चे को एक जगह बैठने नहीं दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हड़बड़ी हो रहा है, कुछ करो, जिंदगी बीत रहा है, तुम कहीं नालायक ना हो जाओ, कहीं कुछ छूट रहा है। जैसे जब कुछ छूट रहा है, या फिर आपके हार्ट में बहुत पेन हो रहा है अचानक भयानक, या फिर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में पेन हो रहा है, तो वो है एंग्जाइटी की निशानी। अगर वो कॉन्स्टेंटली हो ही रहा है तो उसे हम समझ सकते हैं कि हम अपने आप में प्रॉब्लम है। बच्चा का जिंदगी हड़बड़ा के खत्म नहीं हो रहा है, उसका कुछ नहीं होगा, अभी बहुत समय है। ये चीज़ को पेरेंट्स को समझने की जरूरत है।
1: जी स्वर्णिम, अभी हमने एक नया शब्द जो अभी अभी आ रहा है वो है ADHD, या कहें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ये बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो आखिर ये ADHD होता क्या है, और ये किस तरह से बच्चों को प्रभावित कर रहा है, और इससे जो अभिभावक हैं या फिर माता पिता हैं वो कैसे निपट सकते हैं?
0: जी, पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रॉमा और इस चीज़ को दुख पाया जाता है अगर बच्चे में डिसेबिलिटी आ जाए। वैसे ही ADHD अगर हो तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं उसको संभालने में, जैसे कि आपने इसका फुल फॉर्म बताया। और इसका अर्थ यह है कि ध्यान की कमी होना और अत्यधिक सक्रियता से जुड़ा विकार। तो जब बच्चा ज़्यादा दौड़ता है, इधर उधर भागता है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, किसी चीज़ को समझ नहीं पाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है अच्छे से, और हाइपर एक्टिव हो जाता है, और अटेंशन डिफिसिट हो जाता है उसका, एक जगह ध्यान नहीं लग पाता है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम समझते हैं कि ये कब हो सकता है। पेरेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो सकता है। जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, तब उसके पेट में जब अगर वो बच्चा रहे, तब वो टेंशन अगर ज़्यादा ले, और अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करे, स्ट्रेस ज़्यादा उसे दिया जाए, तो फिर वो उस समय ना नेगेटिवली इफेक्ट करता है बच्चे पे, और उसके कारण उसके दिमाग में भी असर करता है। तो इसका अच्छी बात यह है कि ये ठीक हो सकता है, काउंसलर पास जाएं, केयर करें, ऐसे बच्चों को ज़्यादा चिल्लाएं ना। पेरेंट्स कभी कभार गलती कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नालायक हो जा रहा है, तो फिर चिल्लाते हैं, तो ऐसे बच्चों को ही नहीं चिल्लाना है। और बात तो सही भी है कि अगर चिल्लाएं ना तो फिर कंट्रोल में नहीं आते, सोचते हैं। एक हद तक उन्हें समझाया जाए चलेगा, पर उसके बाद अगर चिल्लाएंगे तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बच्चे पे, और ज़्यादा वो बिगड़ने लगेगा, क्योंकि वो पेरेंट्स से ही दूर हो जाएगा। पेरेंट्स से दूर हो जाएगा तो फिर वो किसकी बात सुनेगा। पेरेंट्स केयर करें, केयर करके प्यार से काउंसलर के पास लेके जाएं, काउंसलर 2-3 मंथ्स और ईयर में उस चीज़ का अच्छे से काउंसलिंग करके उस बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। और मेडिकेशन भी ज़रूरी है, इसकी मेडिकेशन भी इसकी दिया जाती है।
1: जी जी सॉरी, आजकल काउंसलिंग के भी नए नए तकनीकें आ रही हैं, और विज्ञान के साथ साथ काउंसलिंग भी अलग पड़ाव कंप्लीट कर रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में काउंसलिंग के कौन कौन से ऐसी नई तकनीकें हैं, और ये बच्चों पर क्या असर करती है?
0: जी जी जी, ये गांव-गांव तक बात मैं पहुंचाना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि हम उतने सरल भाषा में भी बात करेंगे ताकि सबको इस चीज का इन्फॉर्मेशन मिल पाए। काउंसलिंग शब्द अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी को, कोई बात नहीं, काउंसलिंग का अर्थ इतना समझे कि अपने भाव को समझे, अपने इमोशंस को समझ पाना। ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए होता है। बूढ़े हो गए मतलब ये नहीं अब जिंदगी खत्म हो गई, बूढ़ों के लिए भी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बाकी बच्चों के लिए भी यही होती है, कोई बच्चों के लिए अलग नहीं होता है साइंस। इसमें भी हम उनके इमोशंस को समझते हैं, इमोशंस को समझ के उनको दिखाते हैं, वो अपने फेस कर पाते हैं इमोशंस। हम सोचते हैं अक्सर कि बच्चों के पास इमोशंस नहीं होती, बेटियों को समझते हैं हम, वुमेन्स को समझ रहे हैं आज के डेट में, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, हम मेंस के बारे में, राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर एक किड के बारे में कौन बात कर रहा है? एक किड के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होते, सोचते हैं वो अपने फीलिंग्स को देखते ही नहीं। काइंड ऑफ ये अच्छी बात है, वो अपने फीलिंग्स को अगर नहीं देख रहे हैं तो उतना ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, पर क्या उनके पास फीलिंग्स नहीं है ऐसे में? उनके पास ये बहुत फीलिंग्स है, उनका अगर क्लास में इंसल्ट हो रहा है तो उनको फील हो रहा है, उस समय समझ में आए ना आए, आगे जाके 20 ईयर्स बाद वो उस चीज़ को सोच के रोएंगे। क्या वो सबके सामने रोएंगे? जी नहीं, हम उनको वो भी अलाउ नहीं करते हैं, हम उनको पब्लिकली अलाउ नहीं करते रोना। इस बात में एक बहुत बड़ा टॉपिक बोलूँगा मैं, बहुत बड़ा चीज़ आज के डेट में हम शोध कर रहे हैं कि अपने इमोशंस को दिखाओ, स्टेज में भी अगर तुम चाह रहे हो तो वहाँ भी दिखाओ। हम सोचते कि हमको सबके सामने इमोशंस नहीं दिखाना चाहिए, वरना हम लोग हमारे वीक साइड को देख के हमारे यूज़ कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट, पर ये गलत है। हम क्या ही ऐसा कर दे रहे हैं जो कोई हमारे खिलाफ यूज़ करे? ओपन बुक रहो, सारे दुख इसी कारण होते हैं कि हम क्लोज बुक कर रहे हैं, अपनी बातों को अपनी तक रखें तो दुख होता है, सबको सब बताओ। क्योंकि हम इसलिए नहीं डर रहे हैं कि कोई हमारे अगेंस्ट यूज़ करे, हमको ये डर है कि हमको सिंपैथी

0: ये सामने वाले से हमें इमोशंस दिखा रहे, तो और अगर सामने वाले सिंपैथी नहीं दिखाया तो हम दुख में चले जाएंगे कि सिंपैथी नहीं दिखाया, वो एक्सपेक्टेशन आ जाता है। एक्सपेक्टेशन को छोड़ दीजिए, जब हम एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे कि सामने वाला हमें सिंपैथी दे, हम खुल के अपना बात बता पाएंगे। ऑलरेडी हमारे इमोशंस को छुपाने में हम एक वॉल बनाने में है, दिल के चारों तरफ मेहनत कर रहे हैं, और वो वॉल को और बचाने के लिए हम अब इमोशंस को भी ढाके कितना सारा काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए इमोशंस को, वॉल को हटा के सबको बताओ हमको सिंपैथी नहीं चाहिए। हमको सिंपैथी किससे चाहिए? एक सोशल ग्रुप होता है, साइकोलॉजी में टर्म होता है सोशल ग्रुप, जो होता है 4 to 5 लोग का क्लोज ग्रुप, जिस इंसान को आप हर चीज बता सकते हो, हर चीज, और वो आपके अगेंस्ट यूज तो बहुत दूर की बात, आपके वो किसी भी टाइम हेल्प करने को रेडी हो और हर समय आपकी बात सुनने को रेडी हो। वर्क के चक्कर में वो ऐसे लोग आजकल नहीं मिल पाते, 4-5 मैंने बताया है, एक इंसान मिलना आज के डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, पर 4-5 लोग तो होने ही चाहिए। प्लस हम ऐसे लोग से कम्युनिकेशन ही ना रखें जो हमारे खिलाफ हमारे चीज़ों को यूज़ करें, इसके लिए हर इंसान को थोड़ा बहुत साइकोलॉजी आना चाहिए, ताकि हम सराउंडिंग में ऐसे लोग से डेली बेसिस पे मिलें जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो।
1: जी अब हम, आपने तो बताया कि इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष जो है वो किस तरह से अपने भावनाओं को लोगों को बता सकता है या फिर किस तरह से वो अपनी साइकोलॉजी को मजबूत कर सकता है। अब हम बात करेंगे परिवार की, परिवार कैसे आपस में सामंजस्य बिठाए, कैसे आपस में संवाद करे और अपनी भावनाओं को साझा करे।
0: जी, अक्सर क्या होता है हमारे पैट्रियार्की के कारण हम पेरेंट्स जो है सोचते हैं कि बड़ों की इज्जत करो, फादर चाहता है कि उसकी इज्जत रहे, प्रोटेक्ट वो करता है दुनिया से फैमिली को, पर कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव स्ट्रांग फिगर दिखने के चक्कर में वो अपने ही फैमिली मेंबर्स को डरा रहा होता है, उन लोगों को कंट्रोल कर दे रहा होता है, उनको दबा के रख देता है, जो बहुत बहुत गलत है। और ऐसे फैमिली में हम जाके कोई एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी ईगो में है और वो काउंसलर का काम ही नहीं है किसी को जाके ज्ञान देना, काउंसलर का काम है जो हमारे पास आए उनको हम ज्ञान दे सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काउंसलिंग उसी का हो सकता है जो अपनी हेल्प कर पाए, किसी और की नहीं। तो पेरेंट्स को सबसे पहले ऐसे अवेयरनेस सेशंस की मदद से समझना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर तो ईगो नहीं, और क्या मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को रोक रहा हूँ। बैठ के बात करनी चाहिए सबको प्यार से, वुमेन को भी राइट मिलना चाहिए सामने आके पति के साथ बैठे, बच्चों पे माँ का उतना ही अधिकार है जितना एक पिता का होता है। तो फिर पिता भी बैठे, पत्नी बोल रही है तो उसकी बातों को काट के को चुप ना करें, पत्नी बोल रही है तो पति का बात को चुप ना करें, दोनों अपनी बातों को रख पाए। कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन इज द की भी सोचते। आज के टिकटॉक के जमाने में 15 सेकंड के रील्स देखने के कारण सबका दिमाग इतना कम हो चुका है कि कोई भी वर्ड आए तो हम ईगो में ये सोचते कि उसका मीनिंग हमें पता है, उसका डायरेक्ट हम कंक्लूजन निकाल देते हैं, हाँ हमें पता है कम्युनिकेशन इज द की क्या होता है, कम्युनिकेट करो की होगा, पर उसका मतलब क्या है, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, बहुत बड़ा चीज़ होता है। आज के डेट में कम्युनिकेशन का तो इंग्लिश जो आता है उसको कम्युनिकेशन आता है बोलते हैं, जी नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब और भी गहरा होता है, और उसका मतलब तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि दो लोग वार्तालाप करें अच्छे तरीके से बिना किसी की बात को काटें, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सुनना। टेडएक्स टॉक में आप सुनेंगे तो आपको वहाँ पे भी एक जगह सुनने को मिलेगा, बहुत अच्छे सेलिब्रिटी ने बताया है फॉरेन की, कि सुनना सीखिए। हम बोलने के चक्कर में वो सुन पाते हैं जो हमको पता है ऑलरेडी, पर सुनते हैं हम तो पता चलता है सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। सबको बोलना है, सुनता कोई नहीं, बस वो करने से आई डोंट थिंक कि कोई और प्रॉब्लम बचेगा फैमिली में सॉल्व करने को।
1: तो फैमिली में संवाद का होना, कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, और तभी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो स्वर्णिम, आपसे तो बहुत सारी बातें की है हमने, साइकोलॉजी से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित, पेरेंटिंग के संबंधित, और बच्चों की जो मानसिक विचारधारा होती है उससे संबंधित। लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह गई हो और आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहते हो तो कहें।
0: जी, यहाँ पे काउंसलिंग अवेयरनेस तभी आ पाएगा जब हम समझे कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि एक बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसे पीड़ित नहीं है जो एकदम ज़्यादा दुख में डूब जाए, एकदम ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, अरे बाप रे मुझे डिप्रेशन है। तो जिस सेकंड हम सोचे कि हम डिप्रेशन में हम कमज़ोर हैं, उस सेकंड हम अपने बेड से उठ नहीं पाएंगे। तो फिर ठीक है, अवेयरनेस आ रहा है, हमको कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि हम दुख में हैं, पर उसके साथ साथ इसका हर दुख का सॉल्यूशन होता ही है, हर दुख का इलाज है, हर दुख ठीक हुआ जा सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेस्ड इंसान हूँ, मैं ऐसा ही रह पाऊंगा, ऐसे ही रहूंगी जिंदगी भर, ये है ही नहीं। इंसान हर साल बदलता है, हर बॉडी सेल्स हर साल बदलते, तो नया इंसान बन के आता है। तो ये मत सोचिए कि आप काउंसलर के पास जा रहे हैं तो लोग मुझे पागल बोलेंगे। तो ये चीज़ बदलना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ का केयर करना वही कर पाता है जो अपने बारे में सोच पाता है। पीस ज़रूरी है ज़िंदगी में आज की डेट में, खाली हर्डल करके अपना जायदाद बढ़ाना ये सब आज के डेट का सोच नहीं है। इसलिए जेन ज़ी का सोच मिलेनियल्स से और उनसे ऊपर से कभी नहीं मिल पाता है, क्योंकि आज के डेट में सब लोग अपने आप को ठीक करने में लग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अब जनरेशन बदल रहा है, हम अपने सारे ट्रॉमा को हील कर रहे हैं, ट्रॉमा हीलर का जनरेशन है ये बोलते हैं। तो अच्छी बात है, पर उस राह में ये मुश्किल भी बहुत प्रोसेस है, जैसे स्पिरिचुअलिटी की प्रोसेस भी बहुत मुश्किल होती है। इस चक्कर में बहुत सारे लोग बिखर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग करना चालू कर दे रहे हैं, और आज के डेट में ड्रिंकिंग को नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है। ड्रिंकिंग क्या है? ड्रिंकिंग हमारे ब्रेन में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको खत्म कर देता है काइंड ऑफ कभी कुछ समय के लिए, पर क्या नेचर के साथ छेड़छाड़ करना अच्छा है? जी नहीं। आज की डेट में आप खुश होंगे ड्रिंक करके, 3 दिन बाद फिर आपको मन करेगा, पर वो आपका लत लगेगा। लत बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं, पर उस चीज को समझते नहीं, हाँ है तो है, लत है, पर दुख क्या होगा? दुख बढ़ते ही जाएगा। आज खत्म किए, कल बल्कअप होके 3 दिन बाद वो दुख बढ़ के निकलेगा आपके अंदर, आपको और ड्रिंक करने का मन करेगा। इसीलिए पेशेंट्स होते हैं, जो भी ड्रिंकिंग करके प्रॉब्लम में है किसी के घर में, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट्स है मेरे पास, ये राजनंद गांव के पास में है आश्रम जहाँ पे रखते हैं ड्रिंकिंग, जिनका हैबिट हो जाता है, जो छोड़ ही नहीं पाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा आश्रम है, वहाँ पे रखते हैं, और वहाँ पे है कुछ फीस, तो उसका मैं डिटेल्स बता सकता हूँ। वो चीज़ उतना ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज चले जाता है। 1920 उससे पहले तक ये बैन था ड्रिंकिंग, वो ड्रग्स के जैसा था, आज के डेट में नॉर्मल है। तो ये चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी कम्युनिकेट करें और हैप्पी रहें
1: जी। तो आपने एक अच्छे संदेश के साथ आज की जो भेंट वार्ता है उसको समाप्त की है, और अब हम अपने श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे, और हमें उम्मीद है कि जिन श्रोताओं ने आपको सुना है उन्हें थोड़ी सी मदद इस भेंट वार्ता से जरूर मिलेगी। तो आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद स्वर्णिम
0: जी। थैंक यू मैम। स्वर्णिम मिश्रा मेरा सेम नेम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं, और मुझसे कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू
1: जी।
2: तो सुना आपने, हर उम्र में मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो अपने परिजनों में या बच्चों में किसी भी तरह का व्यावहारिक या मानसिक बदलाव यदि आप देखते हैं तो उन्हें काउंसलर के पास ले जाने में देर ना करें। समस्या के शुरुआती दौर में ही इलाज आरंभ हो तो इलाज की अवधि कम हो जाती है। श्रोताओं, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाना हमारा उद्देश्य है। हम अपने उद्देश्यों में कितने सफल होते हैं ये हमें बताते हैं आपके संदेश। हमें इनका इंतजार रहेगा। बहरहाल हम आपको फिर बता दें, कार्यक्रम आज के अतिथि में आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वर्णिम मिश्रा से चंद्र ऋषि ठाकुर की ली गई भेंट वार्ता। विषय था मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग का महत्व। श्रोताओं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे मनोरंजन से भी है, और जहां गीत संगीत हो वहां स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। तो लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में इन संदेशों के बाद।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: और अब पेश है मधुरिमा।

अपने महबूब का सत्संवर कर आना और दिल के अरमानों का जाग जाना, दिल के अरमानों का जाग जाना और दिल के हाथों मजबूर होकर मचल कर इजहार कर बैठना। और जब ये खूबसूरत सा इजहार लफ्जों का रूप ले लेता है तो वो बन जाता है मीठा सा गीत कुछ इस तरह।

दीवाने हुए जाते हैं हम इन आँखों की रंगत देखकर, दीवाने हुए जाते हैं हम इन आँखों की रंगत देखकर, मेरी दुनिया रंग दी जिसने, तेरी आँखों का काजल ही तो है।

एक तो उनका रूप कयामत और दूजे ये सिंगार, भला ऐसे में कोई क्यों ना दीवाना हो जाए। और ऐसे में अगर दिल कोई गुस्ताखी कर जाए तो भला दोष किसका, देखने वाले महबूब का या माशूक के सिंगार का।

लेकिन प्रेम केवल खूबसूरती पर मरमिटना या उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ना ही नहीं, प्रेम तो आपसी विश्वास की वो मजबूत डोर है जिसमें बंधकर जीवन भर साथ निभाने के वायदे किए जाते हैं, वायदे जिन्हें पूरे करने का हौसला रखना ही सच्ची मोहब्बत है ना?

0: कुछ इजहार, कुछ इकरार और कुछ प्यार से भरी ये थी आज की मधुरिमा। इन्हीं गीतों के साथ अब आज के नमस्कार जगदलपुर से मुझे रानू को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
2: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की

0: चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIFF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि

0: दलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
1: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया। ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था। वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने

0: beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए भत्री गीत। गायक कलाकार हैं मद्रास कोरस।

बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं सुखमती और साथियों के स्वर में। प्रस्तुत है ये भत्री गीत।

लोक मंजरी कार्यक्रम के अंत में आइए सुने शेख हुसैन और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी गीत।

इस छत्तीसगढ़ी गीत के साथ ही बस्तर के लोक गीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम मोचो माटी। इस कार्यक्रम में आज हल्बी कविता प्रस्तुत करेंगे रामाशंकर त्रिपाठी। बलमी पानीग्राही द्वारा प्रस्तुत वार्ता सुनिए दहेज, और ध्रुवी कहानी सुना रही हैं मालती त्रिपाठी। कार्यक्रम के संपादक हैं बलबीर सिंह कच्छ।

0: दुम दुम बाजा बाजली झीर लीटी भेरा। आम चो पीला पड़ो न लिकुन कर लो देश चो सेवा। आम चो पीला पड़ो न लिकुन कर लो देश चो सेवा। सत धर्म चो काजे आमी जाऊं, सत धर्म चो काजे आमी जाऊं। जाऊं पड़ुक लिकुक लाय, आया बाबा जमाय जाहा संगे सिकुक लाय। डोकरा सियान जमाय पड़ू बायले पीला जमाय पड़ू पड़ू न लिकुन आगे बढ़ू। डोकरा सियान जमाय पड़ू बायले पीला जमाय पड़ू पड़ू न लिकुन आगे बढ़ू। बानी बानी चो गोट के सिकुआ, बानी बानी चो गोट के सिकुआ पड़ू न लिखुन भाती। नाहले दादा करते रहवा सोजे आको तीती। बानी बानी चो गोट के सिकवा पढ़ुन लिखुन भाती। नाहले दादा करते रहवा सोजे आको तीती। पाईक मन धरुन ने दे कुचरा फुक दे सिटी। पाईक मन धरुन ने दे कुचरा फुक दे सिटी। पढ़ुन लिखुन रले दादा नी करु आमी आको तीती, नी करु दादा आको तीती। मोचो तीसरा कविता चो शीर्षक आय मोचो बेड़ा। मोचो बेड़ा मोचो बेड़ा पानी काजे गागे। मोचो बेड़ा पानी काजे गागे। पानी बानी चो जीव जनावर राने रला आगे। पानी बानी चो जीव जनावर राने रला आगे। मोचो बेड़ा पानी काजे गागे। पानी ये दाए थे बे नाई पंडकी रामी गागे नाई। पानी ये दाए थे बे नाई पंडकी रामी गागे नाई। जमाए रुक के गोंदन गोंदन हडरी हटे बिकले। जमाए रुक के गोंदन गोंदन हडरी हटे बिकले। खोटला आनले घरे दादा रुपया आनले घरे। खोटला आनले घरे दादा रुपया आनले घरे। गुलाय बेड़ान डांगरा फाटली। गुलाय बेड़ा ने डांगरा फाटली चरई चुरगुन गेला और घरे। हडरी हटे दारू बिकुन रुपया आनले घरे। ए दाए छमास पानी बले एतो काजे डरे। ए दाए छमास पानी बले एतो काजे डरे। चरई चुरगुन गेला और घरे। लाख रुपया लगन दादा घरे बोरिंग खनाले। लाख रुपया लगन दादा घरे बोरिंग खनाले। पानी गेली भीतरे खाले एदाय आनंद कहाले। पानी गेली भीतरे खाले एदाय आनंद कहाले। गाय बैला मेंढा बोकड़ी जेठ ने पानी मिरे नाई। गाय बैला मेंढा बोकड़ी के जेठ ने पानी मिरे नाई। पियास काजे कल्पुन मरसुत पानी मिरे नाई। पियास काजे कल्पुन मरसुत पानी मिरे नाई। बुता करुक मिरे नाई कर ले थे बेस पैसा। बेड़ा गबार सुकुन गेली फोकहा आसे भैंसा। बेड़ा गबार सुकुन गेली फोकहा आसे भैंसा। खातो काजे भात नाई कहाले आनंद चारा। मैची एताच रुक के गोंदले एदाय मोके मारा। मैची एताच रुक के गोंदले एदाय मोके मारा। चीतर कोडरी लमहा काजे रुक रान के बढ़ाऊं। चीतर कोडरी लमहा काजे रुक रान के बढ़ाऊं। पीला जिला के रुपया काजे एदाय स्कूल पटाऊं। चीतर कोडरी लमहा काजे रुक रान के बढ़ाऊं। पीला जिला के रुपया काजे एदाय स्कूल पटाऊं। बायले पीला जमाए पड़ा आप लो हक चो काजे लड़ा। बायले पीला जमाए पड़ा आप लो हक चो काजे लड़ा। जमाए नंगत गोट के धरुन खूबे खूबे आगे बढ़ा। पानी तेबे थेबे दे दादा। पानी तेबे थेबे दे दादा फिर हासे दे हम चो बेड़ा। जमाए नंगत गोट के धरुन आगे आगे बढ़ा। जमाए नंगत गोट के धरुन आगे आगे बढ़ा।
1: तेबे अपन मन रामा शंकर त्रिपाठी चो कविता पाठ सुनते रलास। भाई बहन मन जसन की अपन मन जानास गांव ने दहेज नाव चो कहीं सबत के नी जानते रला। मांतर एबे एबे ये दहेज बले गांव ने अमरुक मुरियाली। ये दहेज बीती रुसुम अमरतो के बी आसादी करतोर खूबे चीपा होए से। कसन बल्ले अपन मन जानास ये दहेज ने कई किस्म चो नुकसान होए से। धन माल चो नुकसान होए से। परिवार परिवार संगे झगड़ा बल होए से। दुई परिवार चो टूटतोर असन बल्ले आम के जानू कहे से। तो यही दहेज चो चिंता के आम के सांगसोत बलसोत श्रीमती बल्लभी पानीग्राही।
2: आज चो जो आधुनिक युग ने जहाँ नानी नानी गांव मन बाढ़ते बाढ़ते नानी सुनी शहर चो रूप धरते जाए से। गांव गांव पारा ने बले शिक्षा बल्ले पढ़ाई लिखाई संग संगे प्रचार प्रसार बले बाढ़ती जाए से। मंतर असन हालात ने बले दाइज चो नीति रेती

कम नहीं होए। और नाग साप जो फेनी काड़ लो असन आमचो समाज ने विकराल रूप धरून धरते जाए से। आल दखा इलो दिन दहेचो खबर टीवी ने दखा कि रेडियो ने सुना और पेपर ने बोले सांग से और सफाई लगे सुनक बल हो से। गाँव ने बोले दाइचो भेट ने कितलो बेटी बहन गाँव चो जीवना बर्बाद हो से। ये भी दखा गाँव बोले शहर ले पाछे नहीं आए। गाँव ने बाल बिहार संगे संगे दाइचो चलन बोले बाढ़ते जाए से। ये चो रोकथाम का जे सरकार बोले कितलो उगाट मन बनाते जाए से। पेपर ने बोल दिया से और टीवी मन ने बोल दिया से प्रचार प्रसार बकले से और सांगते बोले जाए से। मंत्र जानून सुनून बोले दाइचो चलन कम नहीं हो से। ये चीज संग संगे बाल बिहाव बल कम नहीं हो से। लुका चोरीन बल कर सोत और उनची संग संग दाइचो बोले बड़े से। ये यही बात ने कितरो बेटी बहन मन आप लोग जीवन के बोले नुकसान कर ला। कोनी मर सोत दाइच बिना कोनी काई परवन जा सोत दाइचो लालची लोग आप लोग पिला के बाजार के ने बिकतो असन मोल भाव कर सोत। शहर चो लोग संग संगे ये दाई गाँव गुड़ा चो लोग बोले दाई ढोर चो मांग कर सोत। देखा कितरो दाई ढोर आगे तो नहीं रहे मानतर आगे लोग कम रहोत और दाई ढोर बल नहीं देते रहोत आपले मन ने देते रहोत दाई जाम चो समाज के गिलते जाए से। और बेटी बहन मन चो और आम चो जीवना ने खूबे दुख हमराए से। दाइज बल्ले दूसर चो धन आले विचार करूं कि दूसर चो धन दिलो बीती आम को कितरो दिन परापत हो से। उनके लोग नहीं सोचोत जसन कि कोनी बाप माए आप लो बेटी के जन्म ले धरून बाढ़ते तक पढ़ाई लिखाई कितरो दंड ने पोसुन पालून बढ़ाओ रसोत। और हुन मन जो गोटक सपना रहे से कि मोचो बेटी अच्छा घरे जाऊन अच्छा कमाऊन खाए दे। मानतर कितले लोग जो सपना सपना च रहे से के भी दखा दाइज कमान लीस के भी दखा पैसा कमान लीस के भी दखा कहीं नहीं आन लीस बोलून सत्रह सत्री लेखी के मारपेट कर सोत न तो जरऊन दे सोत न तो उचकुन दे सोत। और के भी ब्याह कर लो होलो मुनुख भी बोले मारपेट करे से तु गाड़ी आन घोड़ा आन। आजकल गांव गांव ने बोले चले से गाड़ी घोड़ा चो और पैसा कौड़ी चो दाइज काजे। लोग असन सोच सोत कि बेटा आसे और बेटा संगे संगे दाइज बोले बुहारी आने दे। मानतर असन नहीं सोचोत कि आमचो घर बल बेटी आसे और आम के बल दे उकला आगे दे। ये निजाम सत कि हुनिच बेटा ठाने लेकी होली जाले और दूसरे घरे बिहाव करुन दिले उनके बल तो दाइज दे उकला आगे दे। मानतर हुनके नहीं सोचोत आया बाबा गाँव गाँवली ने असने हुन आपन बोले और हुनी बेटी संगे बोले दुख दंड मिरुक सके। दाइज चो रीति आजकल खूब बाढ़ते जाए से। गरीब होले की सवकार बेटी जो जन्म हो जाले बेटी जो ब्याह संग संगे दाइज चो सुरता पूरे हो से। आमचो घरे बेटी होली आमी कसन करून दाइज देऊ आवे आगे दाइज चोक सुरता कर सुत बेटी होले के कि लेखी चो ब्याह दाय फलना चांदी हमका ढमका देउक लागे दे असन नुहाए की थापड़ी गोटो खाते बजाओ हो दे। दोनों हाथे निहोले रे थापड़ी नि बजे जसन कि आज दूसर घर ले दाइज चो लालच करतो लोग के भाई आपन बेटी बहन काजे दाइज देव पड़े से। असन तो माए बाप आप लो बेटी जुआए चो खुशी काजे आपन चो शक्ति ने जे बोले सखसोत हुन तो देसोचे। मानतर जीव कंदराउन दाइज मांग लो के मांगतो लोग बोले कोनी कोनी जे जसन देखो सुनुख मेरे

0: आप सुन रहे थे लोक साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम मोचो माटी। कार्यक्रम के संपादक थे बलवीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242।

हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है सन 1985 को प्रदर्शित फिल्म प्यार झुकता नहीं।

प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरे, डैनी डेंगजुम्पा, असरानी और बिंदु ने। मास्टर विक्की, जिनका असल नाम है विष्णुप्रिया पंडित, जिन्होंने इस फिल्म में बाल कलाकार के रूप में भूमिका निभाई है मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे की भूमिका में। कहानी का मुख्य बिंदु प्रेम कहानी ही है। फिल्म का अगला गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की ही आवाजों में आइए सुनते हैं।

जैसा कि हमने बताया, ये फिल्म प्यार झुकता नहीं प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसमें अमीरी गरीबी की जद्दोजहद है, वहीं प्रेम का शाश्वत रूप भी है। नायक नायिका के बीच कटुता पैदा करने का प्रयास भी है, तो अलगाव का दर्द भी। किस तरह एक दाम्पत्य युगल गलतफहमियों और षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है और उनकी संतान उन्हें मिलाने किस तरह सेतु का काम करती है, यही फिल्म की मुख्य कहानी है।

इस फिल्म में कुल चार गीत हैं जिन्हें लिखा है SH बिहारी ने। इन गीतों को संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीतों में अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार ने। अगला गीत इन्हीं आवाजों में।

फिल्म प्यार झुकता नहीं के निर्माता हैं विजय सदाना, जिसे निर्देशित किया है केसी बोकाड़िया ने। इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, इसे 3 बार अलग अलग फिल्माया गया है। युगल गीत के रूप में इसे गाया है शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने, और बाल कलाकार पर फिल्माया गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है। आइए सुने यही गीत, जिसे आज भी लोग काफी पसंद करते हैं।

0: कविता कृष्णमूर्ति के गाए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए प्यार झुकता नहीं फिल्म के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री रायपुर से करेंगे शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास। और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ से सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में प्रदेश के 1000 विशिष्टजन विशेष ट्रेन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम जाएंगे। यात्रा का शुभारंभ आज सुबह करीब 11 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस यात्रा में कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यात्रा का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ना है। प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपराओं का भी प्रदर्शन करेंगे। दंतेवाड़ा जिले में ढोलकल ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण किया गया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने इस ट्रैकिंग रूट का शुभारंभ किया। जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत करीब 61 लाख रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। इस रूट के शुरू होने से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे दंतेवाड़ा की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कभी नक्सलियों का गढ़ रही करेगुट्टा पहाड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर ये 5000 फीट ऊंची पहाड़ी कभी कुख्यात माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी। पिछले वर्ष अप्रैल मई माह में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में नक्सलियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया गया था। कई दिनों तक चले इस अभियान में भारी मात्रा में यहां से हथियार और 450 से ज्यादा आईईडी बरामद किए गए थे। इस दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में स्थित सुरक्षा शिविर में कल योग सत्र आयोजित किया गया। राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल रमन डे का करेंगे। छत्तीसगढ़ स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 27 जून तक चलेगी। इसमें देश के 21 राज्यों के 349 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के 49 खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा एक पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के 127 केंद्रों पर करीब 46,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। रायपुर, बिलासपुर सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहे। रेलवे के अनुसार परीक्षा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय वृहद शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान के तहत हुए इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। प्रशासन को मिले 396 आवेदनों में से 277 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने आईएसआई से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पंजाब निवासी सेवक सिंह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी कार्य की आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री रायपुर से करेंगे शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास। और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन।

आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं पुराने फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में है।

कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना, लोफर फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गुलशन कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की ही है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम आया सावन झूमके।

गुलशन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में आनंद बख्शी की रचना है। फिल्म चिराग के इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मंजिल, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। योगेश ने गीत लिखा है जिसकी तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों के गाए फिल्म प्रेम नगर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुलशन अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए पुरानी फिल्मों के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। आज इसमें सुनिए मासो और साथियों के गाए गोंडी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे गोंडी लोकगीत। गायक कलाकार थे मासू और साथी। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, आज हम याद करेंगे भारतीय फिल्म संगीत के उस जादूगर को जिसकी धुनों में लोक संगीत की मिठास, शास्त्रीय संगीत की गहराई और भावनाओं की अनूठी अभिव्यक्ति समाई हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान हस्ती, महान गायक, संगीतकार, एक युग की आवाज एसडी बर्मन के बारे में। एसडी बर्मन का नाम बॉलीवुड के कुछ महानतम संगीतकारों से भी ऊपर है, क्योंकि इसके अनगिनत कारण हैं। 1906 में सचिन देव बर्मन के रूप में जन्मे त्रिपुरा के एक शाही परिवार के इस वंशज ने सभी अपेक्षाओं को धता बताते हुए राजसी वस्त्रों को त्याग कर संगीत से सराबोर जीवन को चुना। उनका संगीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि दिल में उतर जाता है।

माँ की ममता और उसके आंचल की छांव को सुरों में पिरोने वाला ये गीत आज भी उतना ही भावुक कर देता है। ऐसी मधुर और आत्मा को छू लेने वाली धुनों के कारण महान संगीतकार और गायक एसटी बर्मन हमेशा याद किए जाते हैं। एसटी बर्मन की आवाज में एक अलग ही अपनापन है। उनकी गायकी में बनावटी नहीं बल्कि भावनाओं की सच्चाई है। उनकी धुनें कभी शोर नहीं करती बल्कि धीरे धीरे मन में उतर जाती हैं। उनके गीतों में जहां रोमानियत है वहीं विरह आशा

संगीत में एचडी बर्मन की रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने विधिवत संगीत की शिक्षा भी ली थी। एचडी बर्मन सिर्फ एक ही तरह की संगीत शैली में माहिर नहीं थे, वे संगीत की नई नई शैलियों को खोजने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। उनकी धुनों में भारतीय मिट्टी की खुशबू थी। वे कहते थे कि संगीत जितना सरल होगा उतना ही लोगों के दिलों तक पहुंचेगा।

उनकी फिल्म सुजाता का ये गीत हिंदी फिल्मों में भटियाली लोक संगीत के प्रयोग का पहला उदाहरण माना जाता है। उनकी अपनी एक अलग पहचान है। वे कैसे ऐसे गायक हैं जिनकी आवाज सादगी भरी है और जो सीधे दिल तक पहुंचती है। देवानंद, गुरुदत्त, विमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे फिल्मकारों के साथ अनेक यादगार फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे हर गायक की आवाज की विशेषता को पहचानते थे। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त और मन्ना डे सभी से उन्होंने अमर गीत गवाए।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आपकी सेवा में प्रसारित किया जा रहा है कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज के हमारे कलाकार हैं महान गायक और संगीतकार एसडी बर्मन। श्रोताओं, एसडी बर्मन ने वर्ष 1935 में बांग्ला फिल्म सांझेर पिदिम से गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार कृष्ण चंद्र डे से संगीत की शिक्षा ली। उनके रचनात्मक कार्यों से प्रेरित होकर वे 1944 में मुंबई चले आए। उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है। पश्चिमी संगीत का प्रभाव भी उनकी रचनाओं में झलकता है। एसडी बर्मन ने अपने फिल्मी सफर में सबसे ज्यादा फिल्में गीतकार साहिर लुधियानवी के साथ की। उनकी जोड़ी उनके साथ खूब जमी और उनके लिखे गीत जबरदस्त हिट हुए।

एसटी बर्मन अपने पिता की मृत्यु के बाद घर से निकल गए और असम और त्रिपुरा के जंगलों में घूमे, जहां पर उनको बंगाल और आसपास के लोक संगीत के विषय में अपार जानकारी मिली। उन्होंने उस्ताद आफताबुद्दीन खान के शिष्य बनकर मुरली वादन की भी शिक्षा ली और मुरली वादक बने। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उन्होंने अपने पिता, जो कि महान सितार वादक भी थे, नवदीप चंद्र देवबर्मन से ली। उसके बाद उस्ताद बादल खान और भीष्मदेव चट्टोपाध्याय के यहाँ शिक्षित हुए। इसी शिक्षा से उनमें शास्त्रीय संगीत की जड़ें पक्की हुईं।

सन 1933 से 1975 तक एस टी बर्मन साहब बांग्ला और हिंदी फिल्मों में सक्रिय रहे। उनके गीतों ने हर किसी के दिल में अमिट छाप छोड़ी है। उनके गीतों में विविधता थी।

श्रोताओं, एसडी बर्मन के संगीत में लोक गीत की धुन झलकती थी, वहीं शास्त्रीय संगीत का भी स्पर्श था। उनके पुत्र राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा ने भी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म अभिमान, टैक्सी ड्राइवर, आराधना के लिए मिला। वहीं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और एशिया फिल्म सोसाइटी अवार्ड से भी वे नवाजे गए। 31 अक्टूबर 1975 को वे हम सबसे विदा हो गए, लेकिन उनकी बनाई धुनें आज भी हर पीढ़ी के दिलों में गूंजती हैं। उनका संगीत, उनकी रचनाएं भारतीय फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर हैं।

एक ही कलाकार। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था महान गायक और संगीतकार SD बर्मन पर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। सुबह के 11:31 हो चुके हैं। पाठक इंजा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गोंडी लोकगीत। गायक कलाकार हैं जयलाल और साथी।

पाटा खिंचा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जयलाल और साथियों के गए गोंडी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

का भी प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न

0: वृक्षों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कभी नक्सलियों का गढ़ रही करेगुट्टा पहाड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर ये 5000 फीट ऊंची पहाड़ी कभी कुख्यात माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी। पिछले वर्ष अप्रैल मई माह में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में नक्सलियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया गया था। कई दिनों तक चले अभियान में यहां से भारी मात्रा में हथियार और 450 से ज्यादा आईईडी बरामद किए गए थे। इस दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में स्थित सुरक्षा शिविर में योग सत्र आयोजित किया गया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची का अवलोकन और वाचन किया जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी और ग्रामीणों से प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पुलिस ने आईएसआई से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पंजाब निवासी सेवक सिंह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी कार्य के आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर साइबर सेल को जांच के लिए भेजा है। मामले की आगे की जांच रायपुर एटीएस को सौंपी जाएगी। राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल रमन डे का करेंगे। छत्तीसगढ़ स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 27 जून तक चलेगी। इसमें देश के 21 राज्यों के 349 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के 49 खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय वृहत शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत हुए इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए हल्बी बोली में कार्यक्रम कला और कलाकार।

कला और कलाकार कार्यक्रम सुनतो सपाय कलाकार भाई बहन सियान सजन और दादा दीदी मन के मैं गोंजी करे से जुहार। तो कलाकार भाई बहन मन देखा आज फिर तुम संग में भेट घाट हो किले ने कहन के मचो ये तो समय यही है आले फिर आज तुम सपाय सांग कलाकार भाई बहन मन सपाय कसन आसा सपाय नंगत नंगत आसास काय दका सपाय नंगत तरह कसन बलि दका ये बिकाय की घाम बल छे कैसे उनचे संग संग खिन खिन पानी बले ऐसे ने ए पानी ने भिजले काय की आमचो दे पाय खिन के दुखा धोरा उठले दुखा धर ली जाले फिर जोड़ मूड और उता फिर जड़ मूड सपाय हुआ ने ये सपाय नहीं हो बोलून काय की नहीं खिन पानी ले बाचून रा खिन घाम ने बल खूबे नीरा दका और काय की तुम्हें नंगत राज्य कलाकार भाई बहन मन तुम जो काम बुता बल नंगत चले देने आ काम बुता नंगत चली जाल तुम जो घर परिवार बल नंगत रह दे आ तुम जो जोन घर पर जो न कमी घटी रह दे परेशानी हो देने उन सपाय बल लापे धो रह दे तो सपाय नंगत रह दे हरिक दुमिक ने रहा बोलून बारी का काया की नहीं आप लोग दे पाए बल नंगत ले नंगत दखा रखा करा दखा और घाम ने अक पानी बल खूबे नी भीजा घाम ने बल खूबे नी रहा दखा तो कलाकार भाई बहन मन दखा सपाय गोट बाट तो होली ने तुम संग भेट बल होले में आ का तुम्ही जानू आज कि नहीं मैं ले जाल कहीं ना कहीं गोट मन धोरो निवाय ने जो तुम संग गोटे याद के आजे आज बल मैं तुम जाल गोटो गोट धोरो निले से यह कला शिक्षा की आवश्यकता बल्ले की ये कला का भाई बहन मन तुम्ही जो न तुम चलो जो हुनर आस ने जहन की दका हुनर बल्ले आमची दका पूरे चिरुआत ने जहन की कुमार होला बांस ले नगत टाटी टूटना कहीं कहीं बनावा तुम मन होला उन मन बल गोटो हुनर आए पर जो न घर बना उन बल हुनर आए ने ये चीज संग संग कहीं बड़ी होला लोहार सोना सब पाए का है कि नहीं इतने नंगत नंगत जीनिस में बनाते मन चल लगे का है कि भितने खूबे हुनर आसे ने एक ही बोलो मामी हुनर कहन बोले कि दका ये जो हुनर आया आमी तो पेट ले सीखू नील उसे ने अब का है कि आम जो घर ने कोनी आसो जो न सियान सजन नाले आम जो घर लगे कोनी आसो कलाकार असन भाई बहन मन जो मन चल लगे सब पाए हुनर आसे ने आ जो घर ने सब पाए नी जान मा दुन मन का है कि मन चल लग लगन मेहनत मसागत रुआ सीख तो काज ने और मन का है कि दूसरा ताने दकुन बारी बोले सीखवा तर आप लोग जो हुनर आस उनके नंगत ले नंगत बनात का जे मेहनत मसागत करुआत ने और काहे के कलाकार भाई बहन मन ये मन तो सीख तो काजे का सोजे दकलो का तो सीखु नी होए ने उन चो काजे काय है के ने कलाकार भाई बहन मन आम के काय के नहीं जो नाम चो घर लगे आसोत नाले कोन लगे संस्था जसन की स्कूल बोलू सामी ने जो न सिखाते स्कूल मन खुल लासोत खोल लासोत उन मन तन जौन काय के नहीं ए सब आए चो सीख तो रहे अरे वे काहे के नहीं खूबे दका सरकार बोल नहीं असन कला मन सीख तो काजे काय के नहीं ट्रेनिंग मन दे सोत तो इस सब ट्रेनिंग दान का है कि नाम के धत तो रहा है जो ता नाम के सुविधा मिले से सीख तो काजे उनके दख तो रहा है सीख तो रहा है आप लोग नहीं हाथ तो आए कान सपाए का है तो खुलून बन नहीं अच्छा सोनून दख तो रहा है और उनके नहीं नंगत ले सीख तो रहा है ने उनका सरकार बोले का है कि नहीं ये भी का है कि हर गाँव पारा मन ने का है पंचायत मन ने का है कि नहीं सेंटर मन खोले सोन जस के दका गाँव मन ने का है कि नहीं सिलाई सेंटर ने और सिलाई सेंटर आसे और फिर मिस्त्री मन काज बोले ये सब काम मन का है कि नहीं उन मन फारम मन दीवात और सूचना बल दीवात और कहे कि कलाकार भाई बहन मन ये सफाई कला आम सीख लो जल काम के फायदा हुआ है कसम बोले के दका कि आमी आम चो सोच समझ तो भी तिखे निक शक्ति बढ़ू है कहन कि आमी जोन कला के जानू हुनर आम चो लगा से उन आम खिन खिन जानू आम मान तो जसनी आम ये चो नहीं पढ़ाई लिखाई करुआ न अच्छा दकुआ सीखुआ तो कहने आम चो जोन दिमाग कहने उन खिनिक झपके चले दो कसम बोले हाँ मैं असन हुनर जाने एक खिन और नंगत बन रहे और सुंदर दका दे असन सोच हुआ है और असने संग संग कहे कि आम चलो खूबे परेशानी मन बली हुआ है ने कोनी जीनी सामचे लोग नी मिरे से कोनी आमचे लोग मत कोनी गोट खिनिक कमी हो ऐसे तो सफाई काज बल का है कि लेकिन सोच समझ तो बोले शक्ति लतर खूबे आए और नहीं भाड़ू बोले आए और रस निकाय कि आम के आत्मसम्मान ले जीव तो कार्य मिल रहा है कहन कि आम चो हुना जितलो तरह सुना है उतलो सुंदर नंगत ले नंगत होए देने और नंगत होली जाल फिर आम के बोले लागे थे कि नहीं आम चो कमानी धमानी नंगत होए दे और घर बल नंगत चले दे बोलून और कहे कि नहीं कलाकार भाई बहन मन एवं कहे कि मैं दो कुआ नहीं सरकार बाटले बने जैसा नाम के ट्रेनिंग चो सुविधा दिला सुस न्याउ बस सुविधा दिला सर जहन की मैं दो कुआ नहीं आम चो जो न स्कूल मन आसने जो न क्या मैं प्राइमरी स्कूल बोलो उन मनता ने गोटो पुस्तक ली से बांसुरी बोलून उन पुस्तक में दखले कि उतना नहीं जता और उन चटनी पिस्तों का जे रुआ जे उन ओकली और मूसर ढेकी ये सब पाचुता ने छापा बन ली से
उन छापा बन तो कारण ये है कि पीला मन का है कि नहीं जहाँ जेबी चो पीला मन आसत नहीं उन मन का है कि हम चो जोन पुरखा बेरा जोन चलते ऐसे ने ऐसा नोकली आ जान उन ढेकी ये सब पाए हाँ ते ये लिखन के दका आगे चलो का है कि चार बजे ले तीन बजे रात बेरा उठन भर नहीं धान के नहीं कूटते रहत नहीं कांटते रहत ये भी का है कि नहीं जैसे मशीन नीली उसने हमें उनके भूलकलू अरे मिलने कूटाओं से नहीं ये सब पाए कि जानवर उनका

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी एथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: तो कलाकार भाई बहन, मैं तुम संग बोलते रहने की स्कूल में ने कहा है कि पिलामन के गोटोक विषय धत्तो काज बले सुविधा होली सुन सपाय के धरुन बर का एक पिलामन नंगत ले नंगत पोड़ुन बारी आप लोग जो हुनर उनमें सीखुक चाहत कला के उनके करुक चाहते। और कहा है कि नहीं कलाकार भाई बहन मन, ये सपाय कर तो ये बोले कारण है कि हम जो जोन पीला मन आत नहीं, हम जो जोन पुरखे बराले जोन कला के उनमें जानो हुनर उनमें जो लग रहे उन सपाय के भूलकते जाए सोत। ये सपाय के मन पोड़ुन बारी का है कि हम जो संस्कृति आसे परंपरा रीति रिवाज आसे ने उन सपाय के जान दे उन चो संग संगे उनमें जो जोन घर चो जोन कला से हम जो हुनर जोन कला का भाई मन मन लगा से जोन हंसते जाए से धीरे धीरे उन सपाय के बल जान दे और सीख दे बोलू ना सन गोटक सुविधा होली से स्कूल बाटे बोले। तो जितलो बले कला का भाई बहन मन आसत आप लोग पिला मन के घरे सीखा सीखा बल दका स्कूल मन तान पुस्तक मन मिली से उन पुस्तक तान बल खिन के पिला मन के सिखा तो काजे दका दका गहन के तुम्ही सिखा ले जल पिला मन सीख दे। हाँ, तो कलाकार भाई बहन ये सपाय गोट मन तो होली ने दका तुम और बल जाने आस की महिला जल और बल गोट गोट धरुनी वाय जो ना आज चो कलाकार बोलो ने आज बल गोट कलाकार धरुनी ले से ये मनात बी वी कारंत जोन भात रंगमंच चो जोन बड़े प्रयोग धर्मी चो नाम ने मन के जानुआत और काय के मंच पूरा नाम काय के ने बाबू कोडी वेंकटरमन कारंत ये मंचो नाम है ये मंचो गोट आज तुम संगे गोटे आए दे काय के दका ये मन जो नात नहीं मन खूब बड़े रंगमंच ने काम करते रह रंगमंच बल्ले काय के की थिएटर बोलो हम थिएटर जोन तने नाटक लोकगीत नृत्य कविता और पहली काय असनी जो नाम चो कलाकार मन आसो तुन मन ने होता उबुन बारी उनके सपाय के सुनावात और दकावात और काय के नहीं उनकी हमें रंगमंच बोलो हमने और ये तक काय के नहीं कैमरा नीरू है ये मन का है कि नहीं जैसा नामी नाटक देखू हम जे बोसुन बारी उसनी यता बोले बोसुन दख्त बीती के रंगमंच बोलवा अरे ये मन ने खूबे बड़े बड़े काम मन ये मन कर ला और आप लोग नाम के आराम चो देश जो नाम के बोल खूबे आगे बाढ़ती करान दिला सोत और दख ये मन चो गोट के मैं तुमके सांगे से आज दखा ये मन चो जो जन्म आए नहीं 19 सितंबर 1929 ने कर्नाटक चो दक्षिण ने आसे कन्नड़ जिला चो बाबू कोडी गाँव ने होली ये मन पिला बेरा ले कला चो खूबे मन लगाते रहो बोले मन जसनी जन्म ला उसनी खिनी खिनी के मन चो गुण रोए कन के सपा जसनी पिला जन्म आए तो उन मन चो तो काई काई गुण रोची आए ने ये मन जसनी बाटते के ला उसनी ये मन के काए के नहीं कला चो बारे ने जान तो खूबे मन होली गहन के पिला मन चुतान दका खूबे जिज्ञासा रुआ जान तो लगन लुआ ने कोनी बोले काम हुआ से कहा एक कसन कह तो रहा ये काया है खूबे पूछ बात ने तो काय के मन चुता बल उसने मन रही मन कला चो काज ने खूबे पूछते रह हाँ उन काय काम कर रहे सो एक कसन है बोलू खूबे जानकारी धरते रह ये मन तीसरी कक्षा ने रो तो उन्हीं समय ने मन नहीं काय होली अपली उन्हें कला चो लगन चो कार ने काय के नहीं पहली बार काय होली कुरुक्षेत्र बोलून गोट नाटक होली उन मनता ने मन आप लोग हुनर के दकाला बोलबे कुरुक्षेत्र नाटक जो नाम है उनता ने आप लोग नाटक के दकाला और उन मन बोले तय जानो काम कर ला ये मन उदा खूबे नानी रो तीसरी कक्षा बोले 8 साल तक उम्र रही उदा

आरुदरादक उन सप्पाय लोग बसला सटफूरे ने आ जन उता जौबुन बारी जानु नाटक तो नाले गोट या तो बल कितलो बड़े गोट आय ने आरुमा नानी उमर ने ए मन मान त नानी उमर ने दका आपलो संकोच के नी दकला डरला नाई काई नाई बोलुन बारी नाई उन मन चला के लगन रहे हुनर रहे तो मन काय के नाई नानी उमर ने ही ये नाटक नाने काम करुक मोरियाला उठलन फिर ये मन काय आप लोग घर ले काय कि नहीं पराला पराला बोले मन घर के छांडून गेला कसन बोले के दाखर मन के आप लोग घर ने उसन माहौल नहीं मिलते रहे समय नहीं मिलते रहे शायद तो नहीं कारण काय कि ये मन नहीं आप लोग घर के छांडून गेला और नहीं गोटो उतल गेलो पाच नहीं गोटो प्रसिद्ध बीती नहीं गुब्बी बिरन्ना नाटक कंपनी ताने नहीं ये मन काम करुक मुरियाला बोलबू उतर गेला और उतर जानो उन कंपनी ताने जाओ आप लोग काम मांगला और उतर रोन रोन काय कि नहीं उन्हें ठियतर के गोट के जानला जोन के जानो रंगमंच बोलुआ हाँ तो कलाकार भाई बहन मन ये मंच गोट के मैं तुम संग गोटी आंच ने यदि मैं तुम का जे गीत बल धोने सर गीत के बोले सुनो

तो कलाकार भाई बहन मन ए गीत के सुनलास ने ए गीत के गावलास डी एस बोरकर अरुण मंचो संगवारी मन तो कलाकार भाई बहन मन मैं तुम संगे गोटे यात्रा आज चो कलाकार ने आज चो कलाकार ने जोन रोते मन बाबू कोडी वेंकट रमन कारंत ने ये मंचो गोट के गोटे यात्रा मैं तुमके सांगते रहे कि ये मन का है कि नानी उमन आप लोग घर के छाडून गेला और नही छाडून बारी का है कि नहीं गोटो प्रसिद्ध गुब्बी बिरन्ना नाटक गोटो कंपनी ताने जाऊन ये मन काम करुख मुरियाला गेलो का है कि ना ये मन उदंदा तीसरी कक्षा रोत तो घर के छाड़ू गेला तो मन चे पढ़ाई बल छाण ली मानतर का है कि देखा उन मन उन कंपनी ताने नाटक कंपनी ताने रलो ताने ची उन मन का है कि ना आप लोग काम बल करते रोत और उनचे संग संग का है कि उन मन आगे चे पढ़ाई बल ये मन करला कसन बल लेके दका जोन कंपनी मन नहीं रहते रोत उन कंपनी तान चो मदद ले ये मन का है कि आगे चो पढ़ाई करला और आगे चो पढ़ाई मन करून करून का है कि नहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तान ले मन नहीं हिंदी साहित्य विषय ने एम ए चो उपाधि धरला और यही तान ले ची और शास्त्रीय संगीत जोन के हिंदुस्तानी संगीत जो नाम ने जानो उच्च बस शिक्षा धरना और फिर 1962 ने राष्ट्रीय नाटक विश्वविद्यालय ने नाटक चो शिक्षा बद धरला दका ये मन पीला बेरा दका ये मन चाने कला चो होना तो रली ची ने ये मन का ये जितलो बल कला रे ये मन के जान तो सीख तो लगन रली ये मन के उन्हीं का जी का है कि मन चो पढ़ाई के मंजारी छाडून बारी आप लोग घर के बारे घर द्वार सब पाए के घर परिवार माए बाप सब पाए के छाडून बारी ये मन गेला ने और जाऊन बारी बड़का है कि मन काम तो गोर इतने बड़े कंपनी ताने नाटक कंपनी तान गेला होता काम करला ने काम करून करून पण दका आपलं पढाई भर करला पढाई संग संग दका के मन इतलो पढाई करला की उन मन उपाधी भर धरला ने और उन्हीं सब पाए ने दका आपलो पढाई धरलो पाचे का है कि नहीं ये मन नाटक ने भारत चो परंपरा मन के लोक नृत्य और गीत कठपुतली कला और लोक कथा मन के दकाक मुझेला कन के दका ये मन तो ये सब शिक्षा धर रोत ने संगीत चो शिक्षा धर रो और नाटक चो शिक्षा धरला तो ये मन शिक्षा धरला तो ये मन जो सोचे रही कि सब शिक्षा धर लेता ने आम चो जो भारत चो जो कला आसने उन कला के काय के मन सपाय दुनिया ने दका तो का जे मन ए सपाय पढ़ाई करला तेबे तो ये मन दका कितलो नगत नगत ने लोक नृत्य गीत कठपुतली कठपुतली कला बल्ले तुम्बल जाने साथ ने उन घर बनावात और उनके नाचावात ने और उनके संग संग लोक कथा ये सपाय के बल काय के मन जानला सीखला उतलन पाचे एक सपाय बाट दका मुरियाला और असनी काय के नहीं ये मन तो ये सपा करून करून का है कि मन नाटक मन ने बल करला जसन की दका है वदन घासीराम कोतवाल जो कुमार स्वामी सत्वशीला किंग रियर असन नाटक मन ये मन काम करला और ये मन के बनाला बले आउ का है कि नहीं ये मन इतलो करला ने इतलो करले तान बल ये मन और बल निठे बल और बल काम बल नगत मन करला जहन की 1977 ले 1981 ने का है कि राष्ट्रीय नाटक विद्यालय चो डायरेक्टर बल बनला डायरेक्टर बनले कि निदेशक बनला निदेशक बनलो पाचे मन चो थिएटर के दिल्ली ले बाहर ही निकल कहन की दका जोन ताने मन काम करते रहते निदेशक बनला उन काहे कि नहीं उन सोचे दिल्ली तांचे रली बाहर चलो कोने नहीं जानते रहो कि दिल्ली ताने इतने बड़े थिएटर आसे जोन ताने नाटक कहानी ये सपा चीज मन हुआ है बोलो तो ये सपा लोग जानूत बोलूं का है कि नहीं दिल्ली ताले मन बाहरी जगह मन ने नीला और ये मन का है कि नहीं बाहरी जगह ने तो कारण ये रही कि जो दूसरा राज्य आए जिला आए गांव मन तान जितने भी कलाकार भाई बहन मन आसत ने उन मन आप लोग हुनर के यही जो मन चे मन जो दिल्ली तान और थिएटर के बाहरी दका मुझाला ये ताई उन आप लोग हुनर के और नंगत नंगत बनाओ और आप लोग कला के चितार बन बने मन चो सोच कारण ये मन बाहरी नियुक्त मुरियाला और 1975 ने गिरीश कार्नाड संगे मिरुन भातीरे वंश वृक्ष गोटक फिल्म चो निर्देशक काम करला तका निर्देशक ने निर्देशन काम करला निर्देशन बल्ले का है कि जोन ताने कहानी नाटक के नहीं मंच ताने दका तो लोग के मन सिखातु बीती बनाला आदतलो पाचे का है कि नहीं 1975 ने चोमना दूड़ी बनाला जोन चो ने राष्ट्र पुरस्कार मिली तो कलाकार भाई बहन मन ये गोट मन के मैं आओ तुमके बस सांगे ने मचल गाओ बल गोटो गीत असल गीत के बोले सुनो

तो कलाकार भाई बहन मन ये गीत के सुन लासने एज के गाला सो चंद्र का पोया मरुण मंचो संगवारी मन तो मैं तुम संगोटिया तो राजी छो कलाकार ने दका उन मन कहा कि मन नाटक मन तो कर ला ने मात्र मैं तुम के मुर बड़ा सांगू रहे कि मन नाटक से पढ़ाई करूं करूं कहा कि नहीं संगीत चो बल पढ़ाई कर रहा ने अब मन संगीत चो पढ़ाई कर ला तो उन्हीं कारण ने दखे मन कहा कि नहीं खूबे फिल्म मन तान बल आप लोग संगीत दिला गीत दिला ने जैसन की कन काबरा घाट श्राद्ध मन तान भले मन आप लोग गीत के दिला दका कितलो उन रला मन ने कि दका ये मन आप लोग नानी उमर ले दका कितलो लगन ले ये मन मेहनत मसागत कर ला ने कितलो आप लोग सब चीज के छाडून बारी ने घर के द्वार के छाडून बारी जाते बर कुपले कितलो बड़े गोटा है ये मन उन सब पाए के छाडून गेला और छाडून गेलो ताने बर पाचे उन मन आप लोग मेहनत मसागत कर आप लोग पढ़ाई के कर ला पढ़ाई कर ला पाचे दका ये मन कितलो सुंदर नकत नाटक मन कर ला और दिला बले ने उनके संग संग गीत मन मन दिला और कहे कितलो महान काम कर ते मन के ने कहा कि ने पुरस्कार बल मिली सम्मानित बल होली पुरस्कार बल मिली जहन की पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1976 ने मिली असनी फिर कालिदास सम्मान मिली ये खूबे नंगत गोट मनाए ने के कौनी बले कलाकार भाई के कोनी सम्मानित मिले कितलो नंगट गोट मनाए ने और कहे कि नहीं दका 1 सितंबर 2002 ने ये मन कहे कि बेंगलुरु ने आम के छाडो गेला तो कलाकार भाई बहन मन ये मन चो पूरा जीवना तुम के सांग लेने ये मन कसन जीवना आप लो जीवला कितलो परेशानी रली फेबले आप उन पढ़ाई कर ला ने पढ़ाई कर दका आप लोग काम केवल करते रहते बाट उन संग पढ़ाई भी कर ला और उठलन पाचे नाटक और नई संगीत मनता है बोला आप लोग योगदान दिला एक बोले खूबे बड़े एक गोट मनाए दका कहन के कलाकार भाई बहन मन कहे कि नहीं कोनी बल कलाकार खिनी कसम बल आसुर मंच लोग भितरे हूं ना तो उनके छान तो नवाए और उन हुनर के कहे कि नहीं नंगत ले नंगत कर तो काज नहीं जोन तान ले मौका मिले दे सुविधा मिले दे उन सुविधा के धत रहा है कहन के दखा तुम जितलो सुविधा धरा से ने तुम चो लगे चो लग ले जितलो जानकार हुआ से उतलो तुम चो भितरे जोन हुनर आ से उन बल खूबे नंगत ले नंगत होते जाए दे कसम बल ले कि जितलो तुम मेहनत मसागत करा से ने उतली तुम चो बल काम बुता नंगत हो दे जहन के दखा कोनी खेती बाड़ी काम करे सतने उन मन सोचे नांगर झोपन बारी धान के असनी बुनुन दिले तो धान नहीं होए उतर का है कि ना कितलो नगत दुई तीन हर नांगर चलाक पड़े दे उतन पाचे फिर धान बुन तो नाले लाटा आसुन लाटा गुचा तो फिर धान बुन तो धान बुनुन बारी फिर खत दे तो रहने जसनी फिर धान खिनी बाड़े दे उसनी फिर उनके खत दे तो फिर बाड़ी जानी जा तो पानी दक तो फिर खत दे तो ने ये सब पाए के दोकुन बारी तेबे तो धान पाके दे मान तोर का है कि दका इतलो मेहनत मसागत कर ले उनके उन अच्छा ले नगत धखा रखा नहीं करो जा आप लोग खेती बाड़ी के उन कहा ले धान हो दे नहीं हो का उन्हें कहा कलाकार भाई बहन मन तुम चलो लगे जितलो बल हुनर आसे कला से उन सपाए का नंगत ले नंगत करा दका हाँ तो कलाकार भाई बहन मन ने सपाए गोट मन तो हो ले दका अदय मचो जा तो बस समय हो ऐसे ने तो वाले मैं बोलते रहे कि तुमके विदा धरें बोलू ने आले मैं तुमके विदा मांगे था कला आओ कलाकार कार्यक्रम सुनतो सपाए मचो कलाकार भाई बहन दादा दीदी और सियान सा जन मन के मैं गोंचे जा तो पूरे करे से जुहार दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा।

कला और कलाकार। अभी हल्बी बोली में आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार।

घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सपाय मचो माय माता दीदी बहन मन के मैं गोंची करे से जुहार। तो दीदी बहन मन दका मचो समय दखुन फिर तुम संग दीदी बहन मन संग भेट घाट होतो का जिले ने अले तुम सपाय नगत नगत आसास का ने दका दीदी बहन मन सपाय नगत रहा दका है कसन बोले कि तुम्हें नगत रहला जाले मबल नगत रहें देने मैं नगत रहले जल तुम जो तो नगत नगत गोट मन धरू ने।

चिने आले आजी बोले गोट बोले सुता है मके तुम्हें तुम चुका आजी बोले गोट गोट धरू नीले से नहीं ये बोले खुबे नगट गोट है धका कारण की ये गोट ने कहा कि नहीं आमचो जीवन चेलू है नहीं और आमचो रहन सहन सब पाए कि आम ये ताले जानू खुआ ये गोट है ग्रामीण जीवन के सादगी और सीख। हाँ तो दीदी भाई मन दखा ग्रामीण जीवन बोले दखा कितलो नगर तो गोटाय ने ग्रामीण जीवन बोले आमचो गाँव चो जोन जीवना आसे ने आमचो जोन दीदी भाई मन रुआत गाँव पारा मन रुआत ने कितलो नगर दखा आमचो दीदी भाई मन ने दखा जसनी बियान हो दे कुकोड़ा भाष ली जाले उसनी मन उठन बारी घर चुभूता करू बाहर चुभूता करून फिर नहा दो होन पूजा पाठ रांधा रांधी सफाय करून उठलन फिर बेड़ा बाट भूता पर करू जावात ने अरुण बाट लेन फिर शनिवार फिर घर चुभूता कर तो फिर रात रान तो रार आप लोग घर जोन सियान सजना सुन सपा एक बार देख दखा रखा कर तो उनके संग संग पिला मन को दखा रखा कर तो ने आज उन पिला स्कूल जावा उन मन के बल दखा कितलो नंगत पढ़ाई लिखाई ने बल कितलो दखा रखा करू आसने ये कितलो सुंदर दखा ये सपा तुम जीवना कितलो अच्छा आसे और कहे कि नहीं दीदी बहन मन दखा आम्ही गाँव मन ने रू आमने आमचे गाँव मन का है कि ज्यादा गाड़ी घोड़ा नहीं चले ने और उठलो ज्यादा शोर बोलनी आवाज बोलनी है कहाँ ले कहीं ना एकदम शांति ले आम्ही रू आमने ना काची ले किच किच नहीं काची ले कहीं झगड़ा नहीं कहीं नहीं ने और कहे कि नहीं दीदी बहन मन ये भी जो जीवन आए ने हम कितलो भाग दो जीवन आए दखा जो नौकरी चाकरी करे सोतुन मन दखा बियान उठे सोत ने अब पिला मन के तैयार कर तो फिर रांधा पीना कर तो उठलन फिर भागुन भागुन फिर का तो स्कूल जातो ना ले आप लोग ड्यूटी ने जातो ने फिर ड्यूटी बाटले फिर झपके परान पराने तो राय फिर एवं बारे फिर घर चबूता कर तो देखा कितलो आमचो जीवना कितलो का तो ने आस ने आमके खिनिक बले आराम कर तो का जे समय नहीं मिले से मान तो जोन गाँव चो जोन जीवना आए ने गाँव मने जोन दीदी बहन में रुआ तुन मन चो का कितलो सुकून ले आओ हरिक दुमे कर ऐसा कसन बले के कहने उन मन बल ड्यूटी नौकरी चाकरी कर तो लोग में रुआ बेड़ा खड़न जा तो लोग रुआत ने फेवर मान तो उन मन चो का है कि नहीं उन मन चो जोन दिनचर्या जोन दिन उन मन काम बुता कर उन मन चो का है कि नहीं गोटो का समय बांध ली से कसन बले देखा अंदर अंदर उठ तो रहा है ने अंदर अंदर उठ घर चबूता कर तो रहा है तो आम के देखा जोन बेरा ने जहन के 8 बजे बेड़ा बार बुता करू जात रहते मन का है कि देखो है कि दीदी भाई मैंने 8 बजे ले पहले ही चाहिए मन सपाए बुता भाई ना सपाए सर हुआ है रांधा बारा सपाए चीज हुआ है फिर उठल घर ने जो ना हम जो सियान सज मना सतने उन मन के बोले खाना पीना और उन मन चुप दवाई दारू सपा चीज करूँ बारे मन बेड़ा बार जाए सतने अरे उन बारे फिर उन्हीं चीज बुता करे सोत मन तर का है कि मन के उठलो झपके का तो नहीं लागे से और कहा है कि नहीं जो नामी सर या जगह मैंने रुआ उन मन चुद कहा है कि दिनचर्या तुमके सांगे दखा राती बेरा झपकनी सोतो बियाने झपकनी उठतो ने और उन्हें संग संग कहा है कि जितलो आमी कहा तो खुबे राती ले सुआ उतली बियाने बेर ले उठवा और जितलो बेर ले उठवा तो उतली आम चो काम बुता बल कहा वैसे खिनिक ढीला ढाला हो ऐसे ने और जितलो ढीला ढाला हो तो उतली आम के कहा तो देरी होते जाए दे तो आम चो काम कहा ले झपके सर दे नि सर का ने और कहा है कि नहीं दका दीदी बहन मन ये सब है बोल तो कारण ये आए कि हम शहर रहो कि गाँव ने रहो मान तो कहा कि हम जो सब है काम बोता तो उन्हीं आए कि नहीं कहे कि तक आए हम समय आ चोखी ने ध्यान दे तो रहा है जितलो हम समय ने सब चीज करो तो उतलो हम काम बोले झपके झपके सर दे और सपा काम बोले नगत नगत हो दे तो दीदी बहन मन दका तुम बोले जितलो हो उतलो आप लोग समय आके नहीं कि नहीं बाटून दिया कि ये समय नाम के बुता कर तो रहा है उनसे मैं नाम के उन बुता कर तो रहा है बोलो और कहा कि दका गाँव चो जो दीदी बहन मन आसोर उन मन चो जो सहच जो दीदी भर उन मन चो रहन सहन ने किनिक फरक आसे कसन बोले देखा गाँव ने कहा है कि एकदम उन मन चो रहन सहन पहना वड़ा खाना पीना सब अलग आसे उन मन सादा सिंपल ने रोवात ने आ गोट मन काची गोट ने बलनी रोत झगड़ा लड़ाई ने बनी रो काची ठगा फासी ने बनी रुआत कौन लोग का गोटे आसो तुन मन गोटिया तो रोत उन बात बुलवात ने उतलो परेशानी बोले नहीं हुआ मन का काची ले और कहा है कि नहीं गाँव मन का है कि देखो मन जितले पर दीदी बहन आस जो चो घर ने कि बोले दिक्कत परेशानी हुआ से सपा दीदी बहन मन जवा तो मन तन बहुत सुख लय और मन चो दुख सुख के बाट हुआ हाँ तो दीदी बहन मन दखा एक गोट में तुम संगा ऊपर गोटे आए दे मान तो दखा मैं तुम क्या दे दी जहाला धनी ले जहाला के सुनो।

0: कोफ्ता, डबल रोटी, आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो। इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़, अदेन के इलाज तले खर्चा वेंट कम लगे माता। जीवन बीमा तगवन इंजे जीएसटी छूट दोर किता, अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता। सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता, अद कम मास इंजे 18% अत्ता। इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोर किता।
1: हाँ तो दीदी बहन मन दखा मच बोल तो कारण ये आए कि दखा जोन गांव ने जोन दीदी बहन मन तुम मन संग के खूब सी खूब पड़े दे कसम बोली के दखा आम चे जोन गांव चे दीदी बहन मन तुम मन काए कि ना जितलो मन के जरूरत आ से ने उतली जीनिस मन घिनवात आ जितलो मन के जरूरत आ से उतली खाना पीना करवात ने ये ना है कि आम के लोग पैसा खूब आ से आले भी तुबल जीनिस घेनु उन बल घेनु और फिर तो काजो लेके बल घेनु उनके बल घेनु ने असन मन नहीं करवा जो मन के जितलो जरूरत चो आ से जीनिस मन उतली मन घिनवात और उन मन के उपयोग करवात ने अब काहे के दखा ना ये मन काहे के ना आम चे जोन गांव चे जोन दीदी बहन मन असन मन दखा कितलो नंगा ताम चे जोन रान बनासुन मन संग खूब मया करुआत कसन बोले कि मया करुआत बोले दखन मन रान बन के काटुक नि दीवात कि ना अपनी मन नि काटुआत और कोनी बोले पाना होली दातुन होली काई होली तो उन मन के तो नानी नानी बूटा मिर्च है मान तो जोन उन मन जितले बूटा उन मन टूटा ऐसा पाना टूटा उतले उन मन बूटा मन बोल नहीं रखा धका करे सो घरे बोल नहीं या बाहरी बन का है कि नहीं नानी नानी बूटा मन को लगाए सो ये तो का है कि उन मन आप लोग जो रान बना उनके खूबे मया दया करुआत ने अरे चीज संग संग का है कि उन मन का है कि धीरज रुआ उन मन तन कई चीज जीनिस के दोकन बन उनके लाल मके मीरो असन नहीं भूरा उनका एक मन खिने धीरज संगावा था और खिने का अच्छा मेहनत मसागत करून जोन जीनी सुन मन के जरूरत है सुन के उन मन घेनुआ अब का है कि नहीं का है उन मन का है कि नहीं देखा सबसे बड़े गोट ये आए कि हम जोन दीदी भाई में नासत ने जित लोग मन घर चबूता करो उतली बाहरी चबल बूता करुआत बाहरी चबूता कर लो तान बोले का है कि नहीं दीदी भाई मन ये मन नहीं जितलो रान बना से उन सब पाए के बच्चा तो काज बोले मेहनत मसागत करुआत कहन के देखा गाँव मन का है कि समूह मन बना ला सतने जसन के दखा कोनी काजू प्लाट होली ने काजू प्लाट तन दखा काजू हुआ है ने बीजा हुआ है उन सब पाए के दखा रखा कर तो काजे बिक तो काजे का है कि नहीं समूह मन बन ली से उन मन का है कि ना उनके दखा रखा करुआत बीजा के बिकुआत और उन उनके बिकुन बारी बल का है कि नहीं उन मन तो बीजा के बिके सोत मान तो जो रुख हो से बूटा हो से उनके तो उन मन बचा ला सोत कहन के काकी उनके काटुक नि दीवात ना गोंदुक देव उन वात ने और का है कि नहीं इतलो सब कर लो तान बल का है कि नहीं कौन कौन असन बात सब पाए के काटुआत ने गोंदुआत मान तो रसन नहीं हो बोलू का है कि नहीं हम चो जन दीदी बहन खूब मेहनत मसागत करूँ उनके बचत का जे कोशिश करे सो अब का है कि नहीं जो न और ये चो संग संग का है कि नाम चो जो रीति रिवाज है परंपरा ये कारण बल का है कि नहीं हम के खूबे सीखू पढ़े दे और का है कि कलाकार भाई बहन मन ये सब पाए सीख ले का है कि नहीं आम चीज जीवन नंगत हो दे कसन बल लेके दका हमें झपके बीमा से मार नहीं हो कहन के गाँव चो खान पान न लगाए हम चो खान पान न लगाए हमें तेल मसाला खाओ गाँव चो लोग तो नहीं खाओ तो मन तेल मसाला खाओ नुआ एकदम बिना तेल चो झोर बना देने और भाजी जो न गोबर खत ले रुआ ये सब पाए उन मन खार लेने उन मन के नहीं बीमा से मार बल हो नुआत मान तो जो सहज चो लोग तो मन खूब बीमा से मार हुआ कसन बल देगा तेल मसाला खूब खावात उन चो संग संग का है कि नहीं जो न रासायनिक खत मन डालू रुआत लगा रुआ तुन चो साग भाजी बल खावा तुन कारण खूब बीमासी मार हुआ और दका कितलो गांव चो और शहर चो ने अंतर आस दका तुम भी बिल्कुल सोचुन दका तो जितलो बोले आसो मैं दीदी बहन मन के ही बोलें दे कि तुम बोले आप लोग जीवन के एकदम सिंपल सादा बना खान पान के नंगा ले दखा रखा कर कहन के एकदम ज्यादा तेल मसाले भी तीन खा और आप लोग शरीर के जितलो नंगा संगा से उतली तुम चो जीवन बोले नंगत हो दे और तुम चो दे पाए बल नंगत रह दे तो कलाकार दीदी बहन मन ये सपाए गोट मन तो होली ने तुम्हें जानू आज के महिला जलाओ बोले काई बोले गोट धरू नहीं वाय ने तो आज ही बोले गोट गोट धरू नीले से दीदी बहन मन ये गोट है भेट वाता धरनी ले साजी जो नात हीरा मनी अरे मन संग भेट कर ला सो बरवे सिंह कक्ष आले भेट वार्ता के सुनो
2: बहन मन दका गांव मन ने बोले ने पुरुष संग संगे महिला मन बोले खेती बाड़ी ने पाटकुत नियात बोले ने दोनों मिशन खेती बाड़ी कर लेने आमदनी अच्छा हो से तो असनी आज आमता ने मसंग गोड बात कर तो काजे इलासे श्रीमती हीरामनी तो हीरामनी दीदी दक सबले पहले मैं पूछू है अभी कि जसन की तुम चो जोन गाँव
3: परचन पाल
2: परचन पाल तो परचंद पाल ने तो बोले ने साग भाजी खेती बाड़ी खूब करुआत आ तुबल खेती बाड़ी ने आशीष बोलू भी तो ये भी काय असन फसल वगैरह तुम धरला सास काय
3: सब गोभी लगाऊ रहूं अभी पत्ता गोभी नहीं लगाऊ फूल गोभी रोप रहूं उनके बीकुन सार लू फिर लगा लू फूल गोभी उनके बोले अभी बीकू

0: ବାନୁ ସେ ଖିଣ୍ଡିକ ମାହା ବାଛିଲି ଇତ୍ରଲେ ସରିଲି ଆର୍ ଫେର ଏବେ ପକାଲୁ ସେ ରାୟପୁର ଲେ ମଙ୍ଗାଲୁ ଆମେ ରାୟପୁର ଚେ ହୁନପାଟ ଲେ ବିଚ
1: ବିଚ
0: ହୁନବାଟ ଥୋଡେ ଶସ୍ତା ଆଏ ହୁନବାଟ ଡାକ ନେଇ ବାଏ ପଠାଲୁ ଉନକେ ଫେର ପଲହା ପକାଲୁ ସେ ବାଙ୍ଗ ଆଏ ଲାଉ ଆଏ ମିର୍ଚି ଆଏ ସବ ପଲହା ଆନୁ ପଡ଼ିଲୁ।
1: अच्छा तो हीरामन दीदी जैसन की तुम्हें ये चमास ने होले का है कि धान फसल धर साथ में और बाकी हर समय ने सब्जी फसल धरते रहे साथ
0: नहीं मोराना से लगा वहाँ।
1: अच्छा मोराना
0: मोराना तो लगा वहाँ जुचाई बेड़ा धान इच कमाल तो आम के नी होए फायदा चारा ना आम के नी कर तो रासे ची धान लगा दखते रहूं बोले नी होए
1: तो पानी चो का है
0: पानी टीबेला से।
1: अच्छा ट्यूबवेल
0: टीबेला से हम खोल लूस खुद।
1: अच्छा
0: ट्यूबेला
1: खुद चो खोलो राय की असन कई सरकार बाटले सहायता
0: नहीं सरकार बाटले नहीं दे।
1: अच्छा
0: हम खोड़ालु से हम चो बेड़ा आसे 5 एकड़।
1: अच्छा
0: हाँ 5 एकड़ ले आग्रह हो दे बोले 5 एकड़ जानो हम खुद कमाऊ वहाँ भूति कमात लोग तो नहीं आ भूति कुली संगे सब करू आ हम बोल कमाऊ लगू भूति लोग बोल लगू आ।
1: अच्छा
0: और गाय बोला खूबे आसत एक जन गाय ची बोला लागू है चरातर।
1: अच्छा तो जैसन की आजकल नवा नवा ढंग ले नवा नवा तरीका ले बोलू साग भाजी जैसन मन लगाए सो का ये चुका तुम को नहीं तान सीखुक बोल जाओ रहला
0: नहीं हम नहीं सीखुक जाऊं।
1: अच्छा
0: कहाँ सीखुक नहीं जाऊं हम खुद असनी सपाए हम जो गान बिकट कम आसत खूब कमावा और सब मार्केट ने नहीं वहाँ भी कुकला है।
1: अच्छा
0: आनु वहाँ
1: बल्लेन सब दखा दखी ने
0: सब कमालू एबे आम चुका उनको काय तो नहीं पूरा शिक्षित।
1: अच्छा
0: पूरा भेंडी और लाऊ और बरबटी और वो भाजी और खेड़ा और तुझो चेंज भाजी और सब प्याज और सब चीज कहीं चो लोन चो कमी आसे आम चो गाँव ने उन्थान कमातर।
1: अच्छा
0: और पूरा कमावा सब
1: तो जसन की हीरामन दीदी ये बीच बोल तुम बाहरी मंगलास तो असन कहीं साग भाजी के कहीं रोग रही इधर लो ने बोल तुम
0: रोग रही इधर ले हुन मन देवरुआत होता।
1: अच्छा दवाई
0: हाँ दवाई देवरुआ थो उनके जड़ के जानू होता चोबर तो रहा और फिर जानू होता लगात रहा लगात बेरा और उतरोल फिर दवाई बोले मिरुआ उनके मार्केट ने तो रहा दवाई का जे काय बीती च कसन बोलते सांगुरुआ थुन बीती के ने उन भाती टंकी ने बनाउन भाती छिचुआ।
1: अच्छा
0: एक ढक्कन एक टंकी डेढ़ ढक्कन ढक्कन गोट रुआ उनके दीवात थाने एक लीटर एक डब्बा एक टंकी पानी ने इतरो डारा बोलते सांगुरुआ।
1: अच्छा आगे
0: उस नहीं करूँ
1: तो जैसन की हीरामन दीदी ये साग भाजी जन बल्लिस कमाते बीती तो बिक्री भांजरी जैसन की शहर आंसास की उन लग लग चो हाटे बोलते
0: नहीं लगे हाट आम चो बस्तर रोजे आसे शहर बल रोज आए।
1: अच्छा
0: शहर बल आम हर दिन वहाँ और बस्तर बोले हड्री रोज बसुआ बल उतरो हड्री नाम ने बिकू सहरे चान वहाँ।
1: अच्छा
0: आम के सहरे अमन उल्टा गांव वाला सब्जी है अच्छा है ज्यादा खत बीज नहीं लगवा बोलुआ ते और अच्छा धोरुआ ताजा ताजा आनुआ आम बासी टूटा रोनुआ ताजा टूटा हुआ ताजा आनुआ सुंदर दकुआ साग के आम चौक मंडाले धोरुआ सहरे अमन अच्छा और आमी हुन मन ले सिंधी मन ले आम 1 रुपया कम ने दी वहाँ।
1: अच्छा
0: आमी उसन आम चो तुम्ही न आय मानतर उसन नी करून बिकू आम्ही बोले चारा ना कम ने देऊ हा और अच्छा किलो बाट तो लुआ तेबे काली फेरा हुन च लग जाऊ हुन मन अच्छा सब्जी दीवात हुन मन चो किलो काठा सही रुआय सिंधी मन असन नी करत बोलुआत।
1: अच्छा
0: और दूसरा दिन हुन बीता मन और ही बात के नुकलाय। हां
1: बोले जसन की घर ले जो सब्जी वगैरह बाजार ने बिकू बतिया से सब सरे से।
0: हाँ सब सरुआ
1: अच्छा।
0: एक दिन ने 3,000-4,000 बिकू आ सामान हो तो रहा से।
1: अच्छा
0: और बिकुन घरे नहीं वहाँ।
1: अच्छा
0: पैसा
1: मान लो बाचुन गेली बोलने कहीं संगत
0: नहीं नहीं नहीं बाचे
1: नहीं बाचे
0: नहीं बाचे नहीं बाचे
1: बल्ले पूरा बिक्री
0: पूरा बिक्री समझ ये दे तू हम जो बस्तर शहर ये दे कितरो दूर आसे पूरा गाड़ी हम दे रायपुर रोड ने गाड़ी चले से आम के काय डर धर ली से पूरा लोग जान सो।
1: तो ये जसन की 12 महीना साग भाजी जोन कमानी करते भी थी बल्ले कितलो बरक असन
0: होली खूबे दिन होली बरक। हाँ खूबे बरक होली कम आम किसान लोग भाई किसान लोग सब चीज नहीं कमा ले ये बे सीख लो का थोड़े हुआ कुछ नहीं हो कमा तोर चिया हो वो चाय नहीं हो ने पीछे हट तोर नुआ कमा तोर चिया ते बे तो आज नहीं होली तो दूसरा दिन हो दे ची।
1: हाँ तो हीरामन दीदी जैसन का आगे चुक कमानी और एप चुक कमानी ने कहीं फरक लागे से कहीं
0: खूब अंतर आ से आगे।

0: कमा इनका आए रहे उड़ीद कमाओ थरवा कमाओ तिल कमाओ ये बे तो नु है आमी जितरो बलाम च दिल ने चाह उक सकू सब कमाओ करो दखा उक सकू मंत्र आम की हिम्मत हो तोरा से हिम्मत मान ये भी आमी कमाओ ची आहा काय सब चीज कमाओ से
1: अच्छा हाँ बोले ने आगे उतलो फसल नहीं धरत
0: नहीं होए नहीं होए आगे च लोग उतरो का खाली डांडा हाँ उसनी तीज मन डांडा ये बीती मनस नहीं कमाओत बोले उतरी आगे तो चार आना आठ आना चुआ ये भी तो 1000 के 5 मिनट नहीं हो जाओ दिले चलून जाए कितरो खर्चा हो ऐसे आए नहीं
1: तो ऐसे तो जसन की नवा हिसाब ने नवा तरीका ने जसन की साग भाजी कमान बाती तुम बीक सा सारू के दुई पैसा पैसा बल मेरे से तो बल्लू में घर का जे कसन उदिम खाए लागे से पीला जी लागे पढ़ाई लिख
0: सब पाए खाए होनी चारा ना ये ऐसे गुण तो अच्छा लागे से आई नहीं
1: हम तो
0: ऐसे ना पैसा नहीं है तरल कौन बाटले उब लागू है हाँ उन कमाऊं से आम जो हाथे चारा ना बीकू से अर्धोरू से तो ये पैसा कसन लसन करू उसन ले उसन करू बोल दिमाग ऐसे नाल कहाँ आली हुआ है
1: हाँ तो ऐसे तो दक दीदी तुम चो जो गाँव ने कहा कि स्व सहायता समूह मन खूबी आ सकती बोल स्व सहायता समूह मैं
0: बोले आए काय मैं अध्यक्ष नु आए मैं सचिव आए
1: अच्छा सचिव
0: मैं हीरा मनी आए सचिव आए
1: अच्छा बोले ने सचिव हिसाब ने बोले काय काम करतो रहे सुता
0: सचिव हिसाब ने कर तो काम सब हो से कसन सब हो से 10 जन रहू स्कूल चलाऊ से
1: अच्छा
0: तो स्कूल आगे स्कूल नहीं चला लू आम के आम आंगनबाड़ी मैडम बोल ली तुम्ही जनु सब गठन होवा बोल ली हाग दिली बसा ली
1: अच्छा
0: और तुम्ही गठन हो और 20 रुपया पैसा जमा करा
1: हाँ
0: फिर 20 रुपया पैसा जमा कर लू उसनी उसनी डोकरा पड़ाई पड़ाल माँ आम के समझाली सिखाली ने उसनी हो फिर चालू हो लिए मध्यान्ह भोजन चालू हो तो बोल ली नहीं तुम्ही स्कूल के चलहा
1: अच्छा
0: जोन शुरू दिन ले आमी चलाऊ सुन दिन ले आम के आम चो बस्तर जिला चो माटी जसने आम के काई वादा नहीं होली से बड़े अच्छा लाऊं से आंगन बाड़ी आए 4 ठन और स्कूल आए
1: अच्छा
0: चलाऊ से
1: बल्ले सब अच्छा बराबर
0: अच्छा सा सब बराबर आसो ये बे होलू 10-13 जन ये भी होलू से आगे 10 जन रोलू ये भी फिर और आंद्रा तो बाट ले इला मैडम मन और तुम्ही जानू फिर समूह जोड़ा बोलला
1: अच्छा
0: दोका मैडम मन कसन कसन आल बोनस नहीं कुछ नहीं होगा तुम लोग वही खाता में पैसा आएगा बोलला सपाए समझाला सिकाला गनु फिर हुता जोड़ लू फिर 15,000 पैसा मिल ली उन 15,000 सब फिर आन लू सब बांट लू फिर ब्याज देऊ से पठाऊ से आगे निकरा रहू आमी पैसा
1: अच्छा
0: 2.5 लाख पैसा तुम चो खाता नहीं ली से तुम चो समूह चो नाव ने तुम निकरा बोलला साहब मन हाँ निकरा बोल तक उनके निकरा लू और उन पैसा छुटून सार लू
1: अच्छा।
0: छुटून सार लू और फिर काय कर लू ये दे काय दिन आल फिर गेलू और पूरा खाता बंद कर लू 18,000 रुपया फिर आम चो छूट दिलो
1: अच्छा
0: उनके फिर आन लू और सपा जन फिर 15, 16, 17, 18 सो फिर सब 10 जन बांट लू पैसा खाता फिर बंद होली
1: अच्छा
0: ये भी फिर शुरू ली हूँ आंद्रा लोग बोल सब नहीं 50,000 तुम के मिरु आए भी रे फिर आज आजकल मार्च अकाउंट जो बैंक बंद आसे ते फिर गेलू बोल ली हूँ 50,000 कान लू बोल ली फिर और हूँ उठाऊ वहाँ और ब्याज पठाऊ वहाँ
1: अच्छा
0: अले उन तो सरकार दे से उनके करुक लागे से उन्हीं का जामी समूह होलू से
1: नहीं दक खिरामने दीदी दक तुम्हें बल्ले इतलो खेती बाड़ी संगे संगे फिर सोसायता समूह ने बल्ले काम कर सास बल्ले ने कई लोग असनी घरे चे रोन रोन उनमन काम डगरा थे रुवा
0: डगरा सो
1: है कि नहीं मंत्र तुम्हीं दक का बल्ले ने गोटोक सेवा चो
0: सेवा
1: काम कर
0: सास आम के पीला झीला मैं गेले आल स्कूल ने मैं चेक करुक जाऊ आए
1: अच्छा
0: मैं चेक करुक जाऊ आए सब पीला उठुआ था और मक नमस्ते बोलुआ हाँ सर बोले कुर्सी लूटे दे मके और बसे दे गुचे दे चलो बैठो कुर्सी में बोलुआ चलो बैठो बोलुआ और सब चीज पूछे दे असना है उसना है सर मैं गेले आल मच डर का सर तोबा तोबा हुआ है हाँ पढ़ा तो काजे हाँ और सर मैडम सब मैं दो कुआ कौन मैडम कसन पढ़ाए कौन सर कसन पढ़ाए नहीं तो तुरंत लिखुन दे उन दे बोलुआ है मैं
1: हाँ अच्छा
0: आई नहीं पीला तो जो सही पीला का अच्छा पढ़ाए दे रेख देख करे तब तो हूं अच्छा आए बोलता राय और सोचे वो शुरू है आजकल

0: लो हलो बोलते रुआ सर हो चाहे मैडम हो उन बोलते रुए पढ़ तोर पिला ध्यान दे उन चुका है तुम बस ली दके से नहीं ये लोग जात रहे सबके थोड़े देर उनके डॉक्टर आए उनचो हाल चाल को रुआ मैं जाते रुआ आठ दिन चार दिन ने लगे तो स्कूल है गाँव ने
1: हीरा दीदी बोले तुझ गोड़ तुझ हिम्मत के मतलब सुनून बात खूबे अच्छा लागली कसन बल्ले आमचो बस्तर ने कई जगह खूबे जगह महिला सरपंच आसत कई संस्था मन ने अध्यक्ष बोला आसत उपाध्यक्ष आसत मंत्र डर कुछ काम
0: नहीं, है कि नहीं मैं नहीं डक असली होली साहब मैं जानो चार ठन आंगनबाड़ी चो आम के नी दे उरल चाउर हे भगवान मैं कसन होली सरपंच लग जाए चाउर काजे नहीं लिस चाउर कूपन नहीं लीस मचो हाथे तीलीस कूपन चाउर नहीं दे बोले कसन करू आए बाबू पीला मन कसन खुआ मैं काहे की कसन खुआ हुआ सुता जावा बोले कहा जावा बोला जो एबे जो बोले मैं जो नहीं दीदी कालिक जावा तू नहीं आ मैं जाए से अकला बोले मचो अधिक चक बोले जो तुम्हें डर सास बोले जो बोल तक फिर दोनों गेलू जा तो छठन कूपन के दकाले साहब बोलो कौन है तुम्हारा सरपंच सब होते रहे वोटिंग लिस्ट होते रहे और जान कूपन के ने उन दकाले चलो बोलो साहब और आन लो एसडीएम लगे मैं फिर उन बीती दबाले बटन रुआ है तो उनके दबाले और रोल ले भीतरे इधर आओ अंदर आओ बोलो सर नमस्ते बोले नमस्ते तो धर ले दकाले कूपन के दका तो के कहाँ से आए हो नहीं परचन पाल चो सर बने तुम के सर पर चाउर नहीं दे नहीं तुम जो चाउर नहीं है बोले से मचो हाथ ले खुआ ऐसे छह महीना दे तो कितरो आए ने छह छह कूपन चो चाउर दे तो कितरो मचो काय थोली बोले हाँ चलो बुलाओ सरपंच को बोल लो एसडीएम सरपंच थर थर लो मचो एसडीएम लग गए थर थर लो तुरंत फोन करुन करुन का है तो बीता मन हाक दिला हाक दिला इतरो रोवत बाप रे बला कुन दिन दल दल ते रोत लोग दल दल ते रोत बाई तुचो हिम्मत इतरो एकला दुई जन बाई उन भात इतरो सरपंच के तुई हला उन छाड़ ली पुलिस मन धरुन चलो अंदर करो बोलते रहो
1: अच्छा।
0: हाँ तेरे पाचे नहीं दीदी तुक मैं पाए पड़े से संज बेरा तुई चाउर का जाओ बोल लो पाच पूरा चाउर दिलो
1: अच्छा तो हीरा मन दीदी दख तुचो इतलो अच्छा गोट की सुनन बाती आमचो रेडियो ले तुझो गोट के कई महिला मन मत सुनन बाती तुझो सन काम कर तुका जे प्रेरित हो दे फिर असने हमें कोनी दिने भेट घात आले आज का जे जुहार
0: आल जुहार।
2: हाँ तो दीदी भर मन भेट वार्ता सुनलास ने दका ये हीरा मनी बाई कितलो नगर गोटमन सांगला ने कमानी धमानी धरुन बारी दका काके कसन गोट यात्रा है बोलो ने तो दीदी भर मन तुम बोले सुनलास कि यमन दका कितलो हिम्मत ले आप लो सपाय काम बुता के करे सोत ने तो तुम बोले असने हिम्मत दका कोनी लगे लाज नहीं हुआ संकोच नहीं करा कहन की तुम्ही अच्छा ले मुख खोलून गोटिया ले जले कोनी फूरे चो माने बोलून मन गोट मन के समझ दे होगा रले कई गोट के नी समझोत का जितलो हो दे उतलो तुम्ही आप लो जोन परेशानी आसे दिक्कत आसे सपाए के तुम्ही बड़े लोग लगे हम रात के आज कोशिश करा गोटे आट के आज अच्छा ले नंगत ले गोटे आट के आज बल हुआ कहन की जितलो तुम्ही नंगत गोटे आसे उतले उन मन को अच्छा लागे कहन की दका कोन कोन असन के पढ़े लिखे तो आसोत मा तुम गोटे आट के आज खेने के डर हुआ ने आज जोन बिना पढ़े लिखे आस उन मन हिम्मत के दका ने जोन के भी स्कूल नहीं जाए और रोत और उन मन इतलो सुंदर नगर गोटे दिवात की हम उन मन गोट के धरुक नहीं सब कुछ हम रख नहीं सब कुछ कि नहीं ये मन स्कूल जाओ रोत की नहीं जाओ मन चिताक बल नहीं हो ऐसे ने तो दीदी भाई मन तुम्हें भले ये मन हीरा मन भाई मन असन खूबे हिम्मत ले आप लोग काम बुता के करा दका और हर जोन बल काम बुता से करा से उन सपाए ने खिनिक बले ईमानदारी दका कहन के दका ये भाई आम के सांगला ने हीरा मन भाई की कितलो आप लोग पिला मन के माया दया करू आए बोलू ने आज जितलो माया दया करू तुतली लमन को ले दखा रखा करो तो नहीं कारण ने तो ये मन चो स्कूल ने बल इतलो मान सम्मान आसे इज्जत आसे ने अरुण मन संग संग पिला मन बले मया दया करुआ तो अरे मन के इज्जत दिवा ने कितले बड़े गोट है तो जितले बल दीदी बहन मन आसे ये मन चो हसन तुम बल अपलान काम मन के करा दका हाँ तो दीदी बहन मन दखा ये सपा गोट मन तो होली ने मचलो खेन का समय बले आसे मैं बोलते रहे गोटो गीत गोबिन होले नंगत लागते ने अले बेरे नी करे ता तुम ये गीत के सुना।

हाँ तो दे दी भरमन एक गीत के सुन लास ने ये गीत के गाला सा जरंदर और उन मंचो संगारी मन लाका एक गीत सं संगा दाय मचो जातो समय हो ऐसे ने हाल मके विदा दिया था फिर घर दुआ कार्यक्रम सुन तो सपाय मचो माय माता दीदी बहन मन के मैं गोंची जातो पूरे करे से जुहार।

0: घर द्वार अभी आपकी सेवा में हल्बी बोली में यह कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजा है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया।

0: राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रूपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्तसिक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
2: गांव कारी खेतियार दादा दीदी मन शीतकार समयाचो नंगत स्वाद बीती साग बल्लो ने गोटक हुए से सेमी सेमी ने स्वाद संग संगे खूबे बल बोपू बीती जीनिस मन रहे से जे के विटामिन ए और प्रोटीन बोलसत। मानतर केबे केबे सेमी फसल के बले रोग राई मन नुकसान अमरातो ने पाट कुते रोग नुआत उन भीतरे गोटक रोग होय से डीरा सड़तो बीती रोग जे के कालर राट बले बलुआत ए रोग होलो ने सेमी डीरा मन सड़ून जाए और बूटा कमजोर होन भाती मरुन बले जाए। ए रोग के गुचातो का जे सेमी रोपतो बेरा ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम
3: हेलो, हेलो, हेलो।
2: जो 1 किलो बीच हिसाब ने उपचार करुन भाती सेमी मन के रोप तो रहा है। असनीची फिर बोले रोग होलो ने ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम के 1 लीटर पानी ने घरुन भाती छिड़काव करुन भाती ए रोग के आमी गुचा गुलाई सकू। असनीची दूसर रोग आए रस्ट ए रोग होलो ने सेमी पाना मन ने दाग दाग होन भाती सुकुन जाए। असन रोग होलो बोलो ने आम के जान तोराय ए रोग होली से और एक ही गुच्छा तो का जे ए दवाई के काम ने अंत राय उंचो नाव आए फलुसीला जोल नहाले पर ए दवाई नी मिरली जाले असनी ची फिर गोटुक दवाई आए उंचो नाव आए ट्राई आईडी में 500 1 मिलीलीटर दवाई के 1 लीटर पानी ने घुरन भाती 7 दिन चो हरक फरक ने छिड़काव करत राय। असनी ची गोटुक रोग आए मोजेक रोग ए रोग ने पाना मन सकड़ून भाती मुड़ी हुआ है और असन होली बल्लो ने आम के जान तो राय कि ए रोग होली से मोजेक रोग होली बल्लो ने बूटा मंचो बाढ़ती ठेबुन जाऊ।

0: उंचो 2 ले 3 मिलीलीटर दवाई के 1 लीटर पानी ने घोरून भाती सांज वेरा छिड़काव करत राय असन करून भारी भले ए रोग के आम्ही गुचाव लाई सकू। असनी ची गोटक रोग होय से करिया माओ जे के लाख भले बलुआत ए कीड़ी मन बूटा और फर ने जमुन देवात जे चले आम के खूबे नुकसान हो गए। एक गुचा तो काजे आजादी रेक्टिन 5% चो 0.5 मिलीलीटर जो 1 लीटर पानी ने घोरून भाती 10 दिन जो हरक फरक ने छिड़काव करतो रहे असन कर लो पाछे भले रोग होलो ने हम के कहा है कि जो न बूटा मनाए हुन के रोग होलो बेरा चो जोन पाना मनाए हुन के पकान देतो रहे और जरा उन भले देतो रहे। असनी ची गोटक होय से फली छेदक ये कीड़ी मन फर मन के काना करून भाती नुकसान अमरवत असन चीना बाना के लेख करून भाती एक बले डसाऊन देतो राय नहाल पेर दूर ले लापी दूर पकाऊन देतो राय। असन कर लो पाछे बले रोग होलो ने फिर गोड़ दवाई चो नाव आए हुन होय से क्लोरोफायरीफास 20 cc ये नाव चो 3 मिलीलीटर दवाई के 1 लीटर पानी ने घोरून भाती 10 दिन चो हरक फरक ने छिड़काव करतो राय। असनी ची गोटक रोग होय से फली छेदक ये कीड़ी मन फर मन के काना करुआत और खूबे नुकसान अमरुआत असन करलो ने असन चीना बाना के दखलो ने कहा है कि आम के एक बले टूटान भाती लापी दूर ने उन पकान देतो रहा है नाल पर डस आन देतो रहा है। असन करलो पाछे बले फिर बले रोग होलो ने दवाई चुनाव होय से ऊन होय से क्लोरोफायरीफास 20 cc ये नाव चो 3 मिलीलीटर दवाई के 1 लीटर पानी ने घुरून भाती 10-10 दिन चो हरक फरक ने छिड़काव करत रहा है। असन कर लो पासे आमी सेमी डीरा मंचो रोक के हमें गुचाव लाए सकू।
1: अभी कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
3: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
4: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: और पेश है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम श्रोता सुमन।

आचार्य, आपके अपने रेडियो मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुखविंदर सिंह, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों के गए इस गीत के साथ। बोल जावेद अख्तर के हैं, तर्ज बनाई हैं ए आर रहमान ने, फिल्म का नाम है लग

इस गीत के लिए हमें पत्र लिख भेजा है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर और संजय चौहान ने। ये हैं भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली, गांव सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, प्रीति, दीपाली और देवेन जी। आप हैं ग्राम छिंडीडी पुजारीपारा जिला कोंडागांव से सीतुराम चक्रधारी, मंगतीन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी, अस्तिका चक्रधारी, बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। हमारी ये श्रोता है ग्राम लोहेड़ी मोहबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, रागिनी और रोनिका यादव। आप हैं अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मैक और तन्वी गौहर, धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू, विजय पाटिल, पद्माबाई पाटिल, चिरंजीव, ज्ञानेश्वर पाटिल, तेजस्वनी पाटिल। आप सब हैं आडगांव तालुका भोकरन जिला जालना से। ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोना विश्वकर्मा, राशेश विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। हमारे ये श्रोता हैं गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्ण तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीषा राव, श्रम कुमार राव, नानू राव, साक्षी राव और श्रीहरी राधिका राव। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू कुनिका मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु सेन, पुष्पराज सेन, रितिका सेन और भुवनेश्वर सेन, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। पीपल नीम चौक अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से सुनील यादव, शिव कुमार यादव, पीबी तनिष्का यादव, नौबत यादव और नंदू यादव। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। आप हैं उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापुर से प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक तिरसुनिया, मनोहर निषाद, दिव्यांश धैर्य और आराध्या। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से राकेश, पप्पू सेन, निशा सेन, सपना सेन, ओम सेन, धर्मेंद्र सेन, यहीं से मुकेश सेन, द्वारिके बाई सेन और मनीषा बाई चौधरी। खापरखेड़ा ग्राम से आप हैं तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती, ममता, गोमती और रागिनी साहू। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, कंडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल। आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी वैदही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। कामठी नागपुर महाराष्ट्र से कैलाश प्रसाद शर्मा, किरण शर्मा, आशीष कुमार शर्मा और श्रीमती अमृता शर्मा। भंडार सिवनी जिला कोंडागांव से सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी। आप हैं भाई मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और सीमा शर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू कुनिका मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और ननक चंद मल्होत्रा। रतलाम मध्य प्रदेश से ग्राम है हिंगड़ी और जिला आलोट, जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सेन धाकड़ और शिवांगी धाकड़। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और पूजा खटक, शिवाजीनगर वडाली देशमुख से राजेश खोवरखेड़े, शिवसागर खोवरखेड़े, इंदिराबाई खोवरखेड़े और छकुलीताई खोवरखेड़े, खांडवी बुल्ढाणा से दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े, थिलोरी अमरावती से आप हैं सुनैना पवन भोंडे, वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर, शिवांशु रिशु, वी चैतन्य, दुर्गेश कुमार, अक्षय कुमार, अभिषेक नायडू, आप सब हैं धनोरा बस्तर से, अगनपुर बस्तर धर्मपुरा से डी वनिता नायडू, डी कृष्णा राव नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी रोजा मास्टर शिविक और डी सोमशेखर राव नायडू, देवपेट वाशिम से जेश खंबायतकर, प्रीमा खंबायतकर, राजश्री भावसार और राजू भावसार, मोहल्ला हलवाईयान शिरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म लगान का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है दो रास्ते, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध करते हुए हमें पत्र लिखा है हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद शमीम बेगम, इरफान खान और जिशान खान। आप हैं

लान यूनुस तड़वी, ग्राम मोहद बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी और रूसमिन तड़वी, यहीं से तैमूर तड़वी। हमारे ये श्रोता हैं मामड़पाल दरभा बस्तर से गणपत बघेल, मनीष बघेल और अनंत बघेल, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकर, पी एस नोहनकर और तुषार करांगले, ग्राम वडगांव डीघी से नांदुरा बुलढाणा महाराष्ट्र के श्रोता हैं वासुदेव बोधवड़े, माधुरी बोधवड़े, आकाश कुमार बोधवड़े, संत गाडगे नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से अनिता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े और लोकेश कुमार गाठोड़े, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रंजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, गांव परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमारे ये श्रोता है ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया और तुषारणी मसिया, यहीं से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, फागेश्वर मंडावी, करिश्मा मंडावी, संजीत मरकाम, वीरेन्द्र नेताम और विशाल नेताम, आप सब हैं गांव फरस गांव जिला कोंडागांव बस्तर से। ये हैं अमल साय, मनीषा नेताम, मंगल साय नेताम, मनोज संध्या नेताम और मनोहर नेताम, आप सब ग्राम मोहपाल बड़े डूंगर फरस गांव जिला कोंडागांव से। किशोर कुर्राम, सोन सिंह कुर्राम, एलमा कुर्राम और राजेश्वरी कुर्राम, आप हैं सिंगारपुरी फरस गांव से। ग्राम गारावंडी केशकाल से ये हैं गणेश्वरी मरकाम, हुकुम मरकाम, जीना

मरकाम और संजय मरकाम, यहीं से रुद्र मरकाम। ग्राम कोयनार बीजापुर से मनीषा मंडावी, देविका मंडावी, करिश्मा मंडावी, पूजा सिंड्रा और सरोज कश्यप। खंडवा मध्य प्रदेश से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार खंडाले, अंजलि खंडाले, संदीप कुमार खंडाले, माधुरी खंडाले, पिंटू कुमार खंडाले और जयश्री खंडाले। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन नेले, देवती पियले, श्री वडनेर। अकोला से दामोदर अरुणा दामोदर, बलदेव दामोदर। आप हैं आजाद नगर लक्षर, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और मेहराज जहां। काटर रोड वाशिम महाराष्ट्र से महाष्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, निधि सुरोशे, परिधि सुरोशे और मायरा सुरोशे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन और सत्येंद्र जैन। आम्बाधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन। तिरुपति नगर लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। आप हैं थोरात नांदेड़ से हमारे ये श्रोता हैं रणजीत कुमार नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रश्मि, रंजना और गबरू पहलवान थोरात। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। फरसगांव से हमारे ये श्रोता हैं सत्येंद्र मंडावी, सरिता मंडावी, उमेश नाग, कृष्णताम, रंजित भंडारी, सुभद्रा हुपेड़ी, स्वाति हुपेड़ी और चंद्रकला आचला, ये हैं अंतागढ़ से। अकोला महाराष्ट्र से सदानंद मंदुरकर, सुशीला मंदुरकर। सब्जी मंडी बुलढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन और मुज्जू बाबा। बनबगेरा राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा। डोंडीलोहारा बालोद से आप हैं देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय, तुषार, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया। रानीगांव नगरी के श्रोता हैं खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। ये हैं पिपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता। बरकट बकाल से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा, प्रियंका शर्मा और रोहित शर्मा, आप सब हैं गांव खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। ग्राम कोलासर तालुका नांदुरा से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े और संकेत बगाड़े। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। ये हैं मेघापारा लोरमी से मनोज कुमार साहू, धनंजय और कृष्ण गायत्री साहू। लोरमी गोलबाजार खपरीकला से संतोष सोनी, खिलेश, सुनीता, पीहू, दीक्षा, नेहल, संजय, बबलू, पूजा और रामा। देवरी भाटापारा से गजुनाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर वसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडी से सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा। रायपुर से आप हैं नीलू मेघ, राम कुमार राउत, अमरिका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत, आप सब भाटापारा के श्रोता हैं। ये हैं न हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती मां यादव, रिंकी, सन्नी और कोमल यादव, आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आपकी सेवा में प्रसारित किया जा रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल आप सब हैं मालेगांव से। चांदी चौक गंडरी पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू और रविन्द्र सेन आप हैं। खुशी रौनक सेन बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर, उत्तर प्रदेश मऊनाथ भंजन से ये हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, यहीं से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू या राघवेंद्र साहू भाटापारा से, ये हैं सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, अवध पटेल, भीषम दास मानिकपुरी महासमुंद से, दतरंगी से मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार साहू, सागर और कुमार साहू, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयसिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से ये हैं शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज, नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, नलेश्वर नगर नरवेल से आप हैं पीएस नोहानकर, विशाल नोहानकर, गुलाबदास मानिकपुरी लेवई से, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से आप हैं दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, दतरंगी से भागवत शर्मा वर्मा, ये हैं महेश हजारे, आदित्य हजारे पुणे से, भगवानी गजेंद्र सेन, संतोषी नेहा सेन, चंद्रप्रकाश सेन और चिराग सेन आप हैं भुरसुदा से, महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहिनाज और नाजिया नूरीनाज आप हैं। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, आप हैं वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश, सन्नी हेतल, कृष्णा और जयमीन भावसार, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भावे कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु ताश्वर, नवानंद सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी आप हैं ऊपरकोट मोहला चौखुंटी बुलंद शहर से, राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता सिंह, स्वाति, सुशांत और चुलबुल, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव, राधिका और दीपिका सैनी, डबरापारा सोंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण कुमार सेन, पिंकी सेन और रीना सेन आप सबकी पसंद पर, आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह की लिखी रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

श्रोता सुमन कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म साथ साथ से। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर का कलाम और मौसीकार हैं कुलदीप सिंह। और अनुरोध आपने किया है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा आप हैं चंडीगढ़ से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया गांव चौहलदा बागपत के श्रोता हैं। हमारे ये श्रोता हैं तालुका से उस्मान शेख फौजी, सारा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजनबी शेख, शाकिर शेख और इस्लामबी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख और गदर शेख, कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक और अमोल मानकर आप सब हैं महाराष्ट्र नागपुर से, रामगढ़ झारखंड से निप्पी साहनी, सुनीत साहनी और संदीप भक्कड़, फरदड़ी बालोद से मंतुराम यादव, चित्ररेखा यादव, साहिल, शिवम, केशव, माधव, राकेश, पोषण, रितेश, नेत्राम और संतुराम यादव। ये हैं डोंडी लोहारा संबलपुर से गौतम उर्वशा, डामिन लक्की, अर्जुनदा बालो छत्तीसगढ़ से दिनेश यादव, साधना यादव, भंचुआ से अयांश रावटे, रिंकू रावटे और कांकेर से हमारे ये श्रोता हैं नरसिंह थापा और बिरसिंह थापा, फूलसर कटघोरा से आप हैं नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मिणी, प्रीति दीवान, सिद्धांत, शौर्य और सानवी, कमलेश साहू, हरेंद्र साहू और सुशील बिल्स पुरिया आप हैं बावली से, हतकिरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, गांव नथना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बीबी गाव्या और भाई सुच्चा पाठक आप हैं आर्यनगर, कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुषी और नंदिनी जंघेल, सालार पहलगाम कश्मीर से पीरसादा मिराजुद्दीन, निजामुद्दीन, कैसरुद्दीन, तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बिबीशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनिता श्रीवास, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, मोरवा से भाईकारी, रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा आप हैं विनोदपुरी, रंजू वीपी, रंजू अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, रमापुरी और आरएसपुरी आप सब हैं लुधियाना पंजाब से, विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा आप सब हैं बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से, यादव मोहला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार, यहीं से जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकार, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाजों में। गुलजार के शब्द हैं और फिल्म का नाम है गुरु। इस गीत के लिए फरमाइश आई है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, बागबहरा भद्रसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन, गोरबा बिलाईगढ़ से देवलाल कर्ष, कामनिकर्ष और यशकर्ष, गुमला झारखंड से एसएम जावेद और सगुफ्ता अंजुम, आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, नेहरूवाड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू और राघवेंद्र साहू, कुमारीकोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनेश कश्यप और अनुराग कश्यप, आप हैं हिंगोली से टेलर रामचंद धोडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिकू इंगोले, रमाबाई इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजूषा सुरेंद्र और नामदेव राव शिंदे पाटिल, श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, मूल्य बाठे और वैशाली बाठे, आप है धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से, गणेशपेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे, बेरडी से राजेश सोनी, कंचल सोनी, गायत्री ठोमणे, वैश्विणी ठोमणे, चंचन ठोमणे और अर्जुन गवनेकर, पुणे से आप हैं पंकज आर्या, प्रियंका जरूर वरूर से बाबा साहेब वाडोदे, चंद्रप्रभा वाडोदे, ग्राम रोहांसी से डगेसर राम साहू, नूतन साहू, गौरव साहू और घनश्याम साहू, आप हैं जलगांव सोमनाथ जालना से डॉक्टर रामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक भूतेकर, अश्विनी भूतेकर, आप हैं वैष्णवी जगदाले, हर्सुल सावंगी, औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया, आप सब हैं इंदौर से, गोलबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अजय अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, ग्राम बुड़गन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति, ग्राम धुरवा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू, पारा अहिरवारा जिला दुर्ग पोषण से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, ये हैं शिवांशु कुमार खंडाले, सुभाष कुमार खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार खंडाले खंडवा से, धनेश मटी, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी जिम्मी, अमिता दियाना और जियांश मटाई, आप सब हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से, बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, आप हैं डबवाले हरियाणा से जेके बोकालिया, सुनीता बोकालिया, संजय अनिल और मीनू बोकालिया, सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और कुमारी संचित वायाल, आप सब हैं कालेगांव जाफराबाद से, मौताला से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, करडा रिसोर्ट से कुमारी सानवी देशमुख, फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू, आप सब हैं महामायापारा ग्राम दरचुरा से, यहीं से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू, बेरडी से हमारे ये श्रोता हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर, ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म गुरु का ये गीत। इसी गीत की फरमाइश आई है खुपटी से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवान चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट, विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता चौहान, आप सब है वाराणसपुर से, नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

अभी आपकी सेवा में प्रसारित किया गया फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: The goals helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रूपये बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रूपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रूपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रूपये का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह

0: ऊटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई है। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं, जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: इत बदले मत्ता अच्छा मानेड़ा इलाज सुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्ता जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
2: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आप सबका उमंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी।
1: आपने लिखा है, जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है,
2: शिकवे कितने भी हो हर पल फिर भी हंसते रहना,
1: क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है
2: बस एक बार ही मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर विचार के जो कि आपने कविता के रूप में हमारे पास भेजा। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं उनके नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। पहला पत्र हमें मिला है विकास शर्मा जी का, मयूर विहार दिल्ली से। लिखते हैं, अजीत सर एंड विमलेश मैडम, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे।

0: I have been listening to your program for quite a while. In fact, I think after COVID-19 it started. Today was episode number 1040. This shows quite a long journey by CIET and CRT in radio broadcast. Best wishes and gratitude to all the technical team, behind the scene and the host of the show, you both. Yesterday, Vimlesh ji requested to all those who have been listening to the program but not writing letters. So I am writing this letter today. In yesterday's program, Why, an English song was very beautiful. It inspires every child to raise questions. It helps develop scientific temperament in children, which is also prescribed in our Constitution of India. General knowledge in series is also very, very nice.
1: Thank you so much, Vikas ji, responding to our request so promptly and encouraging and inspiring words. We request you to kindly keep it up. Our best wishes to you.
0: Yeah, our best wishes to you. Agla patra hame mila hai Zila Parishad School Sukli, Zila Yavatmal se Sandeep Kohle, Kshitij aur Ashwani ji ka. Aap sabhi chhatr hain.
1: Ji.
0: Likhte hain, hum class 5th mein padhte hain. Hamara umang karyakram bahut hi gyanvardhak aur manoranjak hai. आप लोगों ने आगे लिखा है
1: संवाद नाट्य गायन और सामान्य ज्ञान के माध्यम से हमें अज्ञात जानकारी मिलती है
0: जी।
1: ज्ञान बताने के लिए धन्यवाद ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो कोई चुरा नहीं सकता
0: आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद छात्र मित्रों पत्र भेजने के लिए हमारा निवेदन है कि इसी तरह से पत्र जरूर जरूर लिखते रहें और
1: खूब मन लगाकर पढ़ें उमंग कार्यक्रम सुनने के लिए अपनी क्लास के सहपाठियों और मित्रों को भी प्रोत्साहित करें
0: अगला पत्र हमें मिला है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गाँव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार जी ने लिखा है यहाँ से और आप लिखते हैं एनसीईआरटी के प्रोग्राम उमंग के माध्यम से मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है
1: बहुत अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दिए जाते हैं ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है मैं आपका कार्यक्रम नियमित सुनता हूँ मैं राजेश कुमार विद्यार्थी और छोटी बहन कोमल है जो सबसे ज्यादा कार्यक्रम को सुनना पसंद करती है
0: तो आप दोनों भाई बहन को हमारा प्यार भरा नमस्कार
1: जी
0: और पत्र भेजने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: अपनी पढ़ाई खूब मन लगाकर कीजिए और कक्षा में अपने मित्रों को जरूर बताइए कि उमंग कार्यक्रम में आपने क्या सुना
0: जी उमंग कार्यक्रम में आपने क्या सुना आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए
1: और श्रोताओं अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की आइए सुनते हैं पहला प्रश्न
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था
1: इसका सही उत्तर है साथियों भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी आचार्य विनोबा भावे जी ने जो एक महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे
0: हमारा दूसरा प्रश्न था भारत के इतिहास में रेलवे की शुरुआत कब हुई और पहली ट्रेन को खींचने वाले तीन इंजनों के नाम बताइए
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे युग की औपचारिक शुरुआत हुई
0: जी
1: बॉम्बे और ठाणे के बीच चलने वाली इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और इसे खींचने वाले इंजनों के नाम थे साहिब सिंध और सुल्तान और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न
0: हमारा अगला प्रश्न था कि भारत के पहले पायलट कौन थे और उन्होंने कहां से कहां तक की पहली वाणिज्यिक उड़ान भरी थी
1: तो इसका उत्तर सुन लेते हैं भारत के पहले पायलट थे सर जे आर डी टाटा भारत की पहली कमर्शियल उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को मुंबई यानी तत्कालीन बॉम्बे से कराची की थी
0: और अब लेते हैं अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न था गिरमिटिया मजदूर कौन थे
1: इसका उत्तर है गिरमिटिया मजदूर भारत से विदेशों में जाकर मजदूरी करने वाले मजदूर थे इस मजदूरी प्रथा का आरंभ अंग्रेजों ने किया था
0: और श्रोताओं अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न था भारत में आने वाली पहली कार का क्या नाम था और यह किस चीज से चलती थी
1: भारत में आने वाली पहली कार सन 1897 में भारत आई थी इस कार का नाम था डेमलर और ये भाप से चलती थी
0: जी तो श्रोताओं अब सुनिए आज का प्रश्न है भारत की थल सेना जल सेना और वायु सेना के सबसे ऊंचे पदों के नाम बताइए प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: भारत की थल सेना जल सेना और वायु सेना के सबसे ऊंचे पदों के नाम बताइए 8800440559 है हमारा IVRS फोन नंबर और
0: audio@ciet.nic.in हमारे ईमेल का पता है संदेश जरूर भेजें और खास तौर से वे
1: जिन्होंने आज तक कार्यक्रम तो सुना है जानकारियों से लाभ भी उठाया है लेकिन पत्र आज तक नहीं लिखा है
0: तो श्रोताओ, आइए अब चलते हैं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों के रोचक संसार में। तो पहला कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं
1: नन्हे मुन्ने हंसते खेलते बच्चों के लिए विशेष रूप से। ये कक्षा एक की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक बहुत ही मजेदार पाठ पर आधारित है।
0: बच्चों, आपको मिठाई पसंद है ना? भाई, आपको क्या सबको पसंद है?
1: बिल्कुल।
0: तो आइए चलते हैं एक घने जंगल में जहाँ बहुत सारे जानवर हैं।
1: अचानक गधे महाराज के मन में बड़ी तीव्र इच्छा होती है मिठाई खाने की, लेकिन भाई मिठाई मिले तो कैसे,
0: और वो भी जंगल में।
1: तो सुनते हैं क्या पूरी हुई गधे महाराज की इच्छा।
0: क्या उन्हें मिली मिठाई?
1: श्रोताओ, बेशक कार्यक्रम बच्चों का है, लेकिन ये आपके लिए भी बड़ा मजेदार होगा।
0: क्यों?
1: क्योंकि

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म तकदीर का ये गीत। मोहम्मद रफी की आवाज थी, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल आनंद बख्शी के थे। आइए सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में अनजान का लिखा ये गीत। संगीत राजेश रोशन का है, फिल्म का नाम है याराना।

मोहम्मद रफी के ही स्वर में आप सुन रहे थे फिल्म ससुराल का ये गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं हसरत जयपुरी की ही रचना, स्वर मोहम्मद रफी का ही है और फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

मोहम्मद रफी के गए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज पर यह सभा अब संपन्न होती है। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। संध्या 5 बजे आपकी सेवा में हम फिर हाजिर होंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

हर दिन उपलब्ध है तो हम हर दिन

संदेश हमारे सभी श्रोता इकट्ठे थे। बिल्कुल। और कथा सभा में

0: बच्चे जहाँ सबसे बच्चे बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है? या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले क्या क्या तैयारी करें, वो सब भी हमें छुट्टी की बातें छुट्टी के संदेशों में लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल। और एक ये गोखा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें, और आप सारे संदेश तो आएंगे, सब सब सुनते होंगे।

हर सूर्य 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आंच खुल जा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत पड़ती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही, अब के महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के फिर गए। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब नई पूंजी निकल गई। पाके होने लगे, 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ गए। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी,

खबर साहब को गांव वालों से दुल्हन सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग से 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में

हो गए। ज्ञानी से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।

होती है कि

0: द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है। इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला से बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंज रही थी, अपने लिए नहीं सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देख कर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में परखाने लगी।
1: 15 मिनट 38 सेकंड।
2: हाँ,
1: ये डेली मॉर्निंग में आके हमको ऐसा करना पड़ता है ताकि पूरा चेक हो जाए। तो ये हमने अभी माइक चेक करा दिया है आपको, आप कंप्यूटर चेक करा रहे हैं।
0: वो अपनी ज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी।

0: भ्रमण की जगह में सुरेश के प्रति जो विरोधाभास प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन विदा बाह ने रक्त बाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसहा हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा, माँ बैठी पंखा झड़की और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा, शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
1: इन्होंने मुझे कौन से सोने की

0: विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था, उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने जो ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गए, केश छिपका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गई। अग्नि मैं नेत्रों से उसकी ओर देख कर बोला,
1: आज की तीस लेके लाना, तो आज से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर

मुझे वो दीपक ने उसे भयंकर चिंतित दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी।

আমার আরও ক্যারিয়ারটা হতো।

वो इतना रिग्रेस नहीं कर सकते। उनका मन कहता था कि वो जीते हैं और खुश हैं। उसके मायके वालों को

0: से दिल रक्षण कर दिया और किसी का साथ नहीं मिला। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह खुले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुरा कर बातें करने लगी। ये बातें कोई सामान्य बातें न थी, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
1: माता जी,
0: अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए। तुमने तो मेरी प्यारी बेटी की प्राण ले ली, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी दूँ? जीने तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगी, पर मेहमान हो क्या जना, आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ कुछ कहा सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी

करी है। धन्यवाद और कहानी सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया।

बनाए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्तें किताबें से सुना सब कुछ कठिन होता है, लेकिन उन्हें उन्हें यदि उसका मिल डांटेंगे तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा। कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की थी भी कुछ इस तरह से ही बैठ जाती है, उनको जगह बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती हैं, जैसे वहाँ पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, नया माहौल होता है किसी भी के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहाँ पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है, तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोचने में थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से

अगर मेल भी करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सके। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना।

पढ़ना है, कुछ तो पढ़ना है, कुछ तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था, लेकिन वे माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना

सुबह हल्की सी बारिश।

सारा पानी जमा ना होने दें और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि अपने जो आसपास की आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंग का हो और सफाई करें। और ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी कोई मच्छरदानी

めっちゃ

के ऊपर जो तैयार किए हैं अपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है। और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर कटा हुआ दही, सेवई चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा। या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो वह चटनी ज़्यादा डालिए। उसके उसके बाद चाट मसाला, काला नमक, धना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का रखना है। और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरे धनिया से आप इसे सजा कर सर्व कीजिए। और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया

गाना जो बहुत

ที่จะเป็นที่จดจำคุณยานที่

Gracias.

शुद्धता से ही भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: मीडियम वेव 396.92 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए जाने हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले जाने आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद शाम 5:05 पर सुनिएगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल भी बोली में। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा संध्या 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनिएगा गोंडी लोकगीत, कलाकार होंगे दसरू और साथी। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण किया जाएगा शाम 7 बजे। शाम 7:21 पर सुनिएगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगा। रात 8 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में आज सुनिएगा लक्ष्मण और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पीलामन काजे गोट, प्रस्तुति होगी फूल सिंह कश्यप की। रात 9:15 पर कार्यक्रम जीवनाचो सोर में आज सुनिएगा प्रगति महिला स्व सहायता समूह मंगनार की भगवती देवांगन से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात 9:30 पर सुनिएगा समसामयिक वार्ता साक्षरता की आवश्यकता, वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। और रात 10 बजे कार्यक्रम दौना में आज आपको सुनवाएंगे लच्छूराम और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब जाने कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी साहित्य पत्रिका मोर भुइयां और सुबह 10 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कल प्रातः 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुनिएगा प्रातः 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा विकसिता पॉल का। श्री रामचरितमानस का गायन प्रसारित किया जाएगा सुबह 6:25 पर। कृषि सामयिकी बेड़ा खड़ा चौगोट का प्रसारण किया जाएगा सुबह 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर। हुलहुली कार्यक्रम में सुबह 6:40 पर कल सुनिएगा पाठ भैरम पाठ, वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। सुबह 7:05 पर सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, आकर्षण होंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पत्रांकन और होगी सुमधुर फिल्मी गीतों से सजी मधुरिमा। सुबह 9 बजे सुनिएगा रूपक बस्तर की वास्तु कला और स्थापत्य शिल्प, लेखिका होंगी रोजी रानी तिवारी, प्रस्तुति के परेश की एक ही फिल्म से। यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:30 पर। सुबह 10:30 पर गुड़दुम कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे धनुर्जय और साथियों के स्वर में भत्री लोकगीत। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। कल का हमारा यह कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म अभिनेता राज बब्बर पर। दोपहर सुबह 11:30 पर कार्यक्रम पाड़ में कल सुनिएगा बरात पाड़, वादक कलाकार होंगे किशन और साथी। दोपहर 12 बजे सुनिएगा कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार हम प्रसारित करेंगे दोपहर 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम श्रोता सुमन में। समय होगा दोपहर 1:10। दोपहर 2:30 पर हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। इस कार्यक्रम में कल सुनिएगा वार्ता नई शिक्षा नीति, वार्ताकार होंगे CS बघेल। रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पीलावन काजे गोट, प्रस्तुति होगी सुकरू राम यादव की। रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। फरमाइशी लोकगीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम मोचो मंचो गीत में रात 9:30 पर। और रात 10 बजे कार्यक्रम पाड़ में हम प्रसारित करेंगे बंधनी पाड़ और खेल पाड़, वादक कलाकार होंगे विकास बघेल और साथी। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में।
1: जुहार। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम संगे मैं शांति नाग। रेडियो सुनतो भाई बहन मन, आज जो आमचो एक कार्यक्रम बस्तर संभाग संगे प्रदेश चो 10 जिला मन ने चलातो बीती मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान ने केंद्रित आसे। केवल सबले अगर मलेरिया प्रभावित क्षेत्र चो रूप ने चितातो बीती बस्तर संभाग चो फोटो अदाएं बदले से। पहल बस्तर चो जोन गांव मन ने वर्षा एते ची मलेरिया चो खतरा बाढ़ते रहे, हुता अदाएं सरलगा चलातो बीती स्वास्थ्य अभियान मन कारण ने मलेरिया चो संक्रमण दर ने झपके गिरावट दर्ज करतर होई से। एकाए दखते छत्तीसगढ़ सरकार गेलो 15 जून ले मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चो 14वा चरण चो मुर कर ली से। ए अभियान भीतरे संक्रमित मनुक मन के ची निचिताय सोत बल्कि मलेरिया उन्मूलन चो बाट ने एवे तक मिरलो सफलता के और पूरे नेतोर कोशिश बले करतोर होई से। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग बाटले चलातो बीती ए अभियान बस्तर संभाग चो 7 जिला मन बस्तर दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर नारायणपुर कांकेर और कोंडागांव संगे ची गरियाबंद कबीरधाम और खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला चो संवेदनशील गांव मन ने बले चलातर होई से। अभियान भीतरे राज्य चो 36 विकासखंड मन चो 697 उप स्वास्थ्य केंद्र मन चो भीतरे एतो बीती 2476 गांव मन ने सर्वेक्षण करतर होई से। अभियान दाय 16,20,000 असन लोग मन चो मलेरिया जांच चो लक्ष्य संगालो रासे। एचो काजे स्वास्थ्य विभाग चो टीम 2063 सर्वे दल मन बनाली से। ये टीम गांव गांव और घर घर जाऊन पीड़ित मनुक मन चो मलेरिया जांच करे से। जांच दाएं संक्रमित मिरलो मनुख मन के तुरते उपचार सुविधा देतर होई से। संगे ची लोग मन के मलेरिया ले बचाव मच्छर रोकथाम और समया ने जांच और उपचार ने जागरूक बले करे सोत। एहार अभियान ने पिलामन और खिंडिक बड़े पिलामन चो सुरक्षा ने बले खूबे ध्यान दिलो रासे। ए चुकाजे 4420 स्कूल मन 346 छात्रावास मन 591 आश्रम मन 77 पोटा केबिन मन और 334 अर्ध सैनिक बल मन चो शिविर मन ने दूसर दूसर टीम मन बनालो रासे। ए संस्था मन ने रतो पड़तो पिला मन कर्मचारी मन और दूसर लोग मन चो मलेरिया जांच करून संक्रमण चो पहल अवस्था ने ची पहचान करतर हो से। स्वास्थ्य विभाग लोग मन ले गुहार कर ली से कि सर्वे दल हुन मन चो गांव नहले घर ने अमरलो ने जांच ने सहयोग करोत और जर शीत लागतोर मुंड दुखा नहाले कमजोरी जसन लक्षण दखा दिलो ने तुरते जांच कराओत। छत्तीसगढ़ गेलो एक दशक ने मलेरिया रोकथाम चो बाट ने उल्लेखनीय उपलब्धि पावली से। बरक 2015 ने बस्तर संभाग चो वार्षिक परजीवी सूचकांक एपीआई 27.40 रली जोन बरक 2025 ने कम होन 7 होली से। ऐ समय ने राज्य चो एपीआई 5.21 ले कम होन 0.90 होली से। स्वास्थ्य विभाग चो हिसाब ने बरक 2015 चो तुलना ने बरक 2025 ने मलेरिया चो कुल प्रकरण मन ने 80.09% चो कमी दर्ज करलो रासे। जनवरी 2026 ने चलतो बीती मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चो 13वा चरण चो परिणाम बले हरिक बीती रहे। हुन चरण ने मलेरिया घनात्मकता दर 4.60% ले कम होन मात्र 0.48% रली। विशेषज्ञ मंचो हिसाब ने ए कमी ए गोरचो संकेत आए कि समुदाय आधारित निगरानी और सक्रिय रोगी खोज चो रणनीति प्रभावी रूप ले काम करे से। जानू खाओ कि मलेरिया चो खिलाफ लड़ाई स्वास्थ्य विभाग चो जिम्मेदारी चिन्हु आए बल्कि एथा समाज चो सक्रिय भागीदारी बले हुतलाई ची महत्वपूर्ण आए। यही कारण आए कि अभियान दाएं सर्वे दल मन के स्थानीय स्तर ने जन सहयोग मिरो एचो काजे बले खुबे कोशिश करतोर होई से।

0: शुभ संध्या, गुड इवनिंग संगवारी मन। युवानी कार्यक्रम सुनतो सपाय संगवारी आमची जुवान संगवारी मंचो स्वागत आहे। आज जो कार्यक्रम ने मैं यहाँ से लकेश बघेल
1: और मैं आए आपन मन जो संगवारी धर्मराज पटेल
0: ऐसी संगे आमी दोनों करूं से तुमन मन के जुहार
1: जुहार, जुहार
0: सेवा जुहार।
1: असंतो संगवारी मन, आजकाली लेहरा पानी गरज बरज के सुनु
0: खोए से ची ने
1: मानतर दखानी घाम बेरा बले हो तो समय ने पानी लेहरा बले होए से कसम होए
0: से। हाँ, आरु दख दखते दखते घाम बले होए से और जो ना मूर हो तो बेरा दख ये बेड़ा बुता मन बल होली से ने तो काम काज काम धाम ने बले ये भी जो ना ध्यान देऊ खोए से कसम।
1: असन समय ने तो आमचो क्षेत्र में किसान भाई मन बले पल्हा पकाला होती हाँ, कसन
0: पल्हा पकाला का और संगे संग जो ना धान बुनला से बले
1: हाँ,
0: आई कसन
1: और कोनी कोनी रोपुक बल मुरियाला
0: रोपुक बल मुरियाला सो दख धर्म।
1: हाँ,
0: असन तो जो ना आमचो विषय जो ना आजी चो आए ये बेड़ा खड़ा चो गोट तो नो आए ना
1: हाँ,
0: कसन ये ने मानतर का है आमचो क्षेत्र चो जित्रो बले जानकारी आए और जो ना आमचो लगलो बीती आए तो उनके अमरातोर और उनचो बारे में गोट बात करते रहो बोले जरूरी है। हाँ, कसन दख आजी चो गोटो कसन विषय आए जो न गोट बात करते रची आए छी मानतर विचार बोलाय उनचो उपरे ने जो नाम चुका जाए बोलो ने ए तो बीती समय काज बोले ना है अने आरु एचुई विषय आए आप लोग मन पसंद काम काज के बल्लो ने पैसा के
1: है
0: नी तो आमचो जीवन आने कसन बनावा है कसन मन पसंद काम काज बल्लो ने पैसा
1: पैसा
0: ने पैसा ने दक ये तो भी ती अड़नाप काम काज बल होए सोक सके ना लामचो मंजी ये उन बल रहे से ने तो उनसे जो चर्चा है आमी उनके
1: करवा
0: है कसन अरे तू बोले ये चो बारे में चले समझू और जो ना धीरे धीरे करूं बाती आमी संगवारी मन के अमराऊ।
1: हाँ,
0: अने दख मूर करलू से तो आमी पैसा नहीं पहले तो आमचो शौक मतलब बल्लो ने ये आई कि मन पसंद काम
1: काम
0: उनके जो ना हम पैसा बना तो रहे मानतर पैसा तो बनाऊ हम ना मानतर केबे केबे असन हुआ कि अड़नाप चुनौतियां मन बली हुआ है कसन।
1: हाँ, जेके आमी सही समय नहीं करू बले नहीं सकू
0: नहीं सकू हुआ है सत्य कोट बलसी और दख ये भी आमचो जुवान संगवारी मन जो ना पैसा और जो ना शौक शौक बल्लो ने दख को कहे खेलतोर शौक आसे ना ओके बुलतोर शौक आसे पढ़तोर शौक आसे और को कहे जो ना काम धाम करतोर बल शौक आसे। हाँ, मानतर दख काम चो जुवान संगवारी मन में पढ़ाई लिखाई तो होए से ची ने मानतर काहे कुन शौक ले पढ़ सोते है नहीं लेकिन उनके पैसा ने तब्दील करता रहा।
1: हाँ,
0: तो उनसे काजी कोनी कोनी दख अच्छा पढ़ाई लिखाई कर उनकोनी गुरजी बने से है नी और आप लोग पैसा ने कोनी खाना बनाए सो है नी और असन कोनी पेंटिंग कर सो ये भी तो सोशल मीडिया होली से कुने ब्लॉग होली बरन बरन जो
1: बना
0: बना सो ने आप लोग शौक जो अनुसार मानतर उन जो उन शौक के पूरा कर तो का जिदक चुनौतियां बले ऐसे जो अड़नाप चीज मन बले हो ऐसे है कैसन और दख ऐसे संगे संगे संगवारी मन की अड़नाप बलो नहीं आए कि आप लोग स्किल है नी तो शौक ने अगर हम पैसा बनावा तो पैसा बल्लोन की ये आई कि आमचो जीवना के उनके बनातोर सुन ली धर्म।
1: हाँ,
0: है नी तो आमचो पैसा के उनके बनातोर और जो ना है दख ये भी दख कोनी लेके आसो ना कोनी लेके आसो आमचो संगवारी मन ने।
1: हाँ,
0: तो उन पढ़े से पढ़ाई लिखाई करून बाती अच्छा जो ना नंबर ले पास होली ना कहीं होली तो ये भी असन होली से कि मके कहीं पैसा करता रहे।

0: तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर लो तो नहीं हुए ना। उनचुका जी का है कि एक कौशल शिक्षा धर्तोरबल खूब जरूरी
1: जरूरी है।
0: है नहीं। जसन की कौशल शिक्षा बल्लो ने कि मैं अगर पढ़ाई लिखाई करें तो मैं पीला मन की कसन पढ़ सकें दे है कैसन। अगर मैं कहीं हांडी बनाए से नाल कहीं बनाए तो उन बीती बना तोर बोले मैं चलोगे स्किल रतरास बोलन
1: रतरास।
0: कौशल रतरास की
1: हाँ
0: अगर मके हांडी बनात रहा है कि कहीं और बल बनात रहा है ना चूल्हा बनात रहा है नाल बरन बरन चीज मंचो ने। और दक उनचे संगे संग बड़ी मंचो असन काम तो दक से ची की कोनी एबे काम बुता होली से है नहीं कोनी
1: हाँ
0: नांगर होली है क्या सर। और कोनी मतलब बरन बानी चोसन जोन बनाऊ से आमी तो उनका एक काष्ट कला चो अंतर्गत बले यही
1: यही
0: सही
1: से
0: ने। तो यही पेशा मन के मतलब अगर शौक के अगर पेशा ने तब्दील करता रहा है तो चुनौतियां बले ऐसे
1: ऐसे
0: दख। अगर मैं कहीं बड़े ही चो काम करें से तो दख मके जानू कहीं बनात रहा है जाले मैं मचो अनुसार तो बनाऊ नहीं
1: नहीं
0: सके है
1: सके। हाँ
0: क्या सर। तो जसन ग्राहक बले देखी मैं कसन असन बीती बनाऊ देश
1: बने
0: तेबेन तो जो ना उन बीता असन बनाए तो कहीं ना कहीं उन बले सोचुन सोचुन समझुन बात यहाँ उन सही बले से उनके अनुसार मके बनाऊ
1: बनो।
0: पड़े दे है क्या सर। उसने ची गोट मनाए संगवारी मन आज से जो न शौक आए मतलब मन पसंद काम की अगर हम की पैसा बनाते रहे तो चुनौतियां बले से चुनौतियां बल्लो उनकी पैसा पैसा जो होली ना हाले
1: हाँ
0: और बल चीज हो ऐसे ना धर्म
1: हाँ
0: है नहीं। तो उनके जो ना अमी संगवारी मन की गोट अमराहू से ने। और दख कार्यक्रम ने ये अच्छा गोट तो अमराहू से मानतर दख ए ची गोट नो आम चले गौर चीज मन बला से। और आज जो दिन जो ना सोमवार का दिन
1: सोमवार
0: है
1: जो दिन
0: ने।
1: है।
0: और संगवारी मन का जामी काय काय सुंदर जो गोट मन अनुची आम और संगे संग जो ना गीत गोविंद मन
1: गीत
0: बला
1: गोविंद
0: नुआम
1: बला नुआ।
0: है कैसन। और जो ना ज्ञान ध्यान च गोट बल रुआ है और संगे संग जो ना गोटो दुठान जो ना सामुदायिक गीत ना हाले कहानी पाठ
1: कहानी
0: मन
1: बोल
0: बोले
1: लो
0: आनी
1: रुआ
0: हुआ
1: है।
0: ने। तो देख उनचे ले पहले जो ना हमचे लगे जहाला से तो ये जहाला बल पहिल सुनुता
1: हाँ
0: उतरल जानू हम कार्यक्रम ने
1: आगे बढ़ो।
0: आगे बढ़वा।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: हाले ना लखेस,
0: हाँ हाँ
1: हाले गीत गोविंद के मुराऊ ने
0: हाँ। और आज आमी धरु नीलू से नए तराने
1: नए
0: ने।
1: तरह ने।
0: और दख आज काली जो ना मौसम समिया बले आए ना ने और
1: हाँ
0: पानी लेहरा चो समिया आए है कैसन। कौन तो समय पानी बले पानी तो आए सी चीना आता है ने
1: हाँ
0: पानी तो ना ये तो इच्छा है। तो उसने नया तराने ले गोटोक जानू पानी चो मतलब बारिश चो रूप ने गोटोक गीत आन लू से उन
1: हाँ
0: गीत के सुनवा ने।
1: हाँ ये गीता है फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड ले,
0: हाँ हाँ
1: ये 2000 ने आम चुम जी ये
0: अच्छा
1: बोली।
0: हाँ 2017 ने
1: और
0: ने
1: हाँ
0: हाँ
1: अरे जो बोल आए बारिश,
0: बारिश हाँ
1: ये गाना के जसन रिलीज होली उसने ची आमचो जुआन संगवारी मंचो जीवकार जाने बसली।
0: बस ली। और दखनी धनु भाई ये गीत ने मया मोहनी संगे आसे ची
1: हाँ
0: गीत आप लोग मधुर धुन गालोर काजी बोले जाना जाऊ
1: जाना जाऊ
0: और सुंदर सुंदर जो समान अवार्ड बोले गाना के मिरली से ने।
1: हाँ
0: जसन की जी सिनेमा अवार्ड 2018 ने ये गीत ब्यूस चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर जो अवार्ड आप लोग नाव कर ली। संगे संग एता जोन गायक रलो एस की है नी
1: हाँ
0: ये बले फिल्म फेयर और मिर्ची म्यूजिक अवार्ड ने बले बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर ने बले
1: ना
0: नाव शामिल कर लो से ने।
1: कर
0: तो उताए चुए गीत आए संगवारी मन आवाज दिलो से एस किंग सासा तिरुपति और धुन ने सजालो रासे तनिष्क बागजी सजाला से और बोल दिलो से अराफात महमूद और तनिष्क बागजी। संगवारी मन ये गीत के तुमन मन लगे अमराऊं से।

0: तो धर्मो काय सुंदर गीत रे लीना ने
1: हाँ।
0: आरु जो ना पानी लहरा चो गीत रे लीना ने गीत रो अच्छा सुन तो बोले अच्छा लागली ने तू कसन लागली
1: मके बोले अच्छा लागली
0: अच्छा लागली काय और संगवारी मन के बोले अच्छा ही लागली होती
1: हाँ।
0: क्योंकि उसने प्रकार चो ये गीत रहे ने
1: बियाना जी पानी बोले
0: पानी बोल घसर ली तो उतने अनुसार ये धर लो बीती बोल रहे ना ने अले संगवारी मन तू मन मन के आज चो नए तराने चो दूसरा गीत है नी फिल्म राधेश्याम जो है ये बहुत सुपर सुपर गीत है जसन ये गीत इली उसने ची सोशल मीडिया ने रिकॉर्ड तोड़ून दिली है नी
1: और मया हाँ खूब
0: वायरल बोले और मया मोहनी चो गीत बोला है ने
1: हाँ।
0: और आप लोग जादू आवाज दिलोर बीता जो ना है आमचो अरिजीत सिंह है और धुन ने

0: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हाँ तो संगवारी मन, ये भी आमी गीत सुनते रहूं और अंधाई जोनाए आमी कार्यक्रम ने फिर आगे बढ़ू और जाने आमी तुमन मंच का धरू नेवलू से वार्ता धर्मो।
3: हाँ
2: अरे वार्ता चो अजीक जानकारी देश ना।
3: हाँ ये वार्ता चो ना वाय तकनीक शिक्षा चो
2: महत्व है नहीं।
3: हाँ
2: और ये के जोनाए आम चो वार्ता के आम चो लगे और संगवारी मन लग अमरालो भी तक होना है ना।
3: लोकेश ठाकुर
4: जो शिक्षा विशेष व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है उसे तकनीकी शिक्षा के रूप में माना जाता है। यह सामान्य पारंपरिक शिक्षा से अलग है। यह छात्रों को कृषि, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, ड्राइविंग आदि क्षेत्रों में कुशल बना देती है। जो लोग विशेष तकनीकी कौशल और ज्ञान रखते हैं उन्हें तकनीशियन कहा जाता है। बड़ी ड्राइविंग, यांत्रिकी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, पायलट आदि तकनीशियन हैं। हमारा देश प्राकृतिक साधनों में धनी देश है, लेकिन अब भी हमारे देश के लोग निर्धन हैं। हमें अपने प्राकृतिक साधनों का उचित प्रकार से उपयोग करना नहीं आता है। हमारे पास ऐसे युवा नहीं हैं जो इन साधनों का उचित प्रकार से उपयोग कर सके। सिर्फ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा ही हमें विशेषज्ञ, इंजीनियर और तकनीशियन देती है। हमारे देश में बड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता है। अप्रशिक्षित कार्य करने वाले अपना कार्य योग्यता से नहीं कर सकते। एक अप्रशिक्षित अध्यापक उतनी योग्यता से नहीं पढ़ा सकता जितना कि प्रशिक्षित अध्यापक पढ़ा सकता है। इसलिए यही स्थिति सभी कार्य करने वालों पर लागू होती है। हमें सभी व्यवसायों में योग्य और प्रशिक्षित कार्य करने वालों की आवश्यकता है। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम उन्हें व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण दें। बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए तकनीकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कुशल लोग बेरोजगार नहीं हो सकते। यदि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो वे अन्य शिक्षित लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार तकनीकी शिक्षा हमें बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता को कम करने में मदद करती है। बहुत से शिक्षित लोग बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान और कौशल नहीं है। अगर उन्हें तकनीकी कौशल और ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है तो अपने देश का तेजी से विकास कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा किसी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्माण के हर क्षेत्र में तकनीशियनों की जरूरत होती है। कारखानों, सड़कों, पुलों, नहरों, भवनों, हवाई अड्डों आदि को बनाने के लिए तकनीशियनों की आवश्यकता होती है। यदि किसी देश के पास पर्याप्त तकनीकी ज्ञान है तो निसंदेह विकास की गति तेज होगी। बिजली का उत्पादन करने के लिए, कारखानों में काम करने के लिए, पर्याप्त फसल और सब्जियां उगाने के लिए और इसी तरह हमें विभिन्न प्रकार के तकनीशियनों की आवश्यकता होती है। तकनीकी शिक्षा निर्विवाद रूप से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को बढ़ा देती है। यदि किसी देश में माल का अधिक उत्पादन होता है तो वह अपने लोगों को आसानी से खिला सकता है। अन्य देशों को अतिरिक्त उत्पादन बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। यदि किसी देश के पास पर्याप्त तकनीशियन नहीं है तो उसे अन्य देशों से प्रौद्योगिकी किराए पर लेनी होगी। उन्हें संबंधित देशों को अधिक पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार पैसा देश से बाहर चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप देश का विकास नहीं हो सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्र का विकास तकनीशियनों पर निर्भर करता है।

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बड़ी फैक्ट्रियों की आवश्यकता है। तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव में कोई भी उद्योग सफल नहीं हो सकता। योग्य और प्रशिक्षित विशेषज्ञों के अभाव में कोई भी देश अपूर्ण है। देश में औद्योगिकरण के लिए हमें युवाओं को तकनीकी शिक्षा देना चाहिए। इस आवश्यकता को हम नकार नहीं सकते। यह प्रसन्नता का संकेत है कि सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर है। स्वतंत्रता से लेकर अब तक हजारों तकनीकी शिक्षण संस्थान खुले जा चुके हैं। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति कुशल लोगों के हाथों पर निर्भर करती है। राष्ट्र की समृद्धि के उत्थान के लिए हर देश को तकनीकी शिक्षा पर उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आज हमारा भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। कई सुख सुविधाएं हमारे देश को मिल चुकी हैं। अब हमारे देश की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है वह देश विकास की ओर बढ़ता है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से देश के युवाओं को प्रशिक्षण देकर सिखा कर आगे बढ़ाया जाता है। अब देश के युवा आगे बढ़ेंगे तब हमारे देश का विकास होगा। आज हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हमारे देश में तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवा प्रशिक्षण लेकर देश के विकास में अपना योगदान दे। तकनीकी शिक्षा के कारण ही हमारा देश आज विकास कर रहा है। हमारे देश की सरकार के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को और भी बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन 1945 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन किया गया और यहाँ से यह तय किया गया कि हम किस तरह से देश के युवा को प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ा सकते हैं। देश में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए, जहां से युवा हर क्षेत्र के उद्योगों में किए जाने वाले काम को सीखकर आगे बढ़ा सकता है। हमारे भारत में कई प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए हैं, जैसे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आदि। इन संस्थानों के माध्यम से युवा प्रशिक्षण लेकर उद्योगों में काम करके आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टेक्नीशियन, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, सिलाई का कोर्स और भी तरह तरह के हुनर सिखाए जाते हैं। देश के युवा वर्ग के लोग यहाँ पर हुनर सीखकर अपना खुद का रोजगार कर सकता है। इन संस्थानों में प्रशिक्षण लेने के लिए सरकार खर्चा उठाती है। जब कोई व्यक्ति इन संस्थानों में प्रशिक्षण लेता है तो उसके खाने पीने और रहने का खर्चा भी सरकार उठाती है। प्रशिक्षण लेने के बाद उस व्यक्ति को रोजगार की भी दिलाया जाता है। यदि वह युवा वेल्डिंग का कोर्स करता है तो उसे वेल्डिंग से संबंधित नौकरी दी जाती है। आज हम सभी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी में हमारे देश का शिक्षा स्तर ऊपर उठ रहा है। शिक्षा के साथ साथ हमें तकनीकी शिक्षा भी लेना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का विकास हो सके। हमारे देश में कई ऐसे संस्थान भी चल रहे हैं जहां पर युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग देकर सिखाया जाता है, क्योंकि शिक्षा के साथ हमें हुनर सीखना भी जरूरी होता है। जिस व्यक्ति के पास हुनर होना है वह व्यक्ति कहीं पर भी रहकर अपना यापन कर सकता है। मैं यही कहूंगा कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई हुनर अवश्य होना चाहिए। सरकार भी यह कोशिश कर रही है कि देश के सभी युवाओं को हुनर सिखाया जाए। हमारे देश में सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। यदि हमें बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना है तो हमें इन संस्थानों के माध्यम से सभी को हुनर सिखाना चाहिए। जब इन लोगों के पास हुनर होगा तो यह अपना छोटा काम करके अपने जीवन को जी सकते हैं। आज हमारे देश में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए तरह तरह की मशीनों और उपकरण भी मौजूद हैं, जिन उपकरणों के माध्यम से युवा ट्रेनिंग लेकर हुनर सीख सकते हैं। पहले हमारे देश के मजदूर जब मकान बनाने का काम करते थे तो बिना ट्रेनिंग के उस काम को करते थे, लेकिन आज इन संस्थानों के द्वारा लोगों को मकान बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वह हुनर सीख कर अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण कर सके। आज हम हर क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी जानती है कि हमारे देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमारे देश में कई इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले गए हैं, जहां से युवा प्रशिक्षण लेकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। आज हमारा देश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में

0: के सबसे अग्रणी देशों में से एक है। इस क्षेत्र में हमारी सेवाओं से हम पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, परंतु इस स्थान और पद को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर सजग और सक्रिय बने रहना है, अपने ज्ञान और तकनीक को लगातार विकसित करते रहना है। आज कड़ी प्रतियोगिता और तेजी से बदलती व विकसित होती तकनीक प्रौद्योगिक का युग है।
1: लखेस
2: होइन
1: काय सुंदर मान्तर शिक्षा चो बारे में
2: वार्ता ले लीना ने और तकनीक शिक्षा का महत्व ने कितरो सुंदर सुंदर गोट और कितरो सुंदर सुंदर काड़ा मन सांगलो ने यानी कि कसन ले कसन करो और कसन ले कसन सरकार बोले आम ची जुवान संगवारी मन काजे काय काय पैसा मन आने से और उनचे हुनर के चिता तोर पहचान तोर गोट मन के सांगला ने और ये गोट के जो ने आम चले गमराते रहोत ना लोकेश ठाकुर ने कितरो सुंदर गोट मन रेली ने और द कार्य ने जो ना वार्ता तो आसे ना मांतर का है कि आमचे संगवारी मन लगे अमरा तो ओसन गोटो का समुदाय गीत बलासे ने तो सबसे पहले तो ये समुदाय गीत की जो ना सुनु और जानू ये चो सुर लोन जानू आमी ये समुदाय गीत के बारे में जानकारी सांगवा ने हां

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: याले गीत मन के सुनुन सुनुन ने अच्छा बोले लागे गोड बोल भूलकले
3: ना अच्छा ये आमचे ज्ञान ध्यान चे गोट ने आले ये ज्ञान ध्यान चे गोट आमचे संगवारी मन का खूब जरूरी है ना ने तो आमी आमचे प्रोग्राम ने जो ना ज्ञान ध्यान चे गोट आमी अमरावरु आम संगवारी मन तुमन मन अगर आमचे गोट की सुनसाद जाले काय के लिखुन बोल संगावा ना हले सुरता बल संग उगवा ने ताले ज्ञान ध्यान ची गोट की जोना आमी मूर करू से
2: लखेस विश्व वर्षावन दिवस हर साल 22 जून के
3: मना हुआ ने और उनचे संगे संगे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 ने भारत जो 17वां नंबर ने स्थान मिल ली से भारत और उनचे संगे जो ना दिल्ली ने चौथा नवंबर की जो ना साइबर वार्ता आयोजन करला से और उन देश आयाम चो नीदरलैंड ने
2: और विश्व चो सिकिल सेल दिवस 19
3: जून के बना हुआ ने ये साल चो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 चो थीम रली स्वस्थ आयु का जे योग ये तो रली आम चो ज्ञान ध्यान चो गोट ने अनाय फिर संगवारी मन की जो ना फिर गीत गोविंद की मूर कराऊं है नी तो संगवारी मन तुमन मन चो लगे नए तराने चो कोटोक और गीत आसे फिल्म आए बरपीले स्वर दिलासो श्रेया घोषाल निखिल फॉल जॉर्ज और संगीतकार आयत प्रीतम और गीत दिलासो स्वानंद किरकिरे।

0: हाँ तो संगवारी मन अले धनु भाई देख आज जो कार्यक्रम ने आमी संगवारी मन का कितरो सुंदर सुंदर गोट बाद बलानलू ना ने ज्ञान ध्यान च गोट बलानलू और संगे संग जो ना नहीं तरह ने जो गीता आनलू ने नहीं तक आम चो घड़ी की जे दखलो ने जातो समय आबले हो ऐसे ने आले ये सब क्या मी सकलू आम चो आनलो बीती के और मैं बीदा धरें दे ने ऐसे संगे ये वाणी कार्यक्रम सुन तो सपाय संजोरिया आम चो जुवान संगवारी मन के मैं जातो पहिल लकेश बघेल
1: और मैं धर्मराज पटेल
0: आमी दोनों करूं से जुहार।

0: अभी युवा साथियों के लिए प्रसारित किया गया उनका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम 107.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

आप सुन रहे थे दसरोर साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। ये आकाशवाणी जगदलपुर है, प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।

0: स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत आज रायपुर से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मानसून ने आज छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। दुर्ग पुलिस ने म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाने और ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लेखा नियंत्रक का कार्यालय रायपुर द्वारा कल पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि सोमनाथ मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रमुख केंद्र है।
1: आज बड़ा शुभ का विषय है।

0: छत्तीसगढ़ से 1000 श्रद्धालु सोमनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में, जिनको आज हम लोग ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विदा किए हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं, इसमें पद्मश्री भी हैं, इसका पूजा अर्चन करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगेंगे।
1: संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सोमनाथ धाम की यह यात्रा श्रद्धालुओं को केवल आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं, बल्कि भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव को निकट से अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करेगी। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन से प्रदेश से सोमनाथ के लिए 1000 से अधिक विशिष्टजन, पद्मश्री, राज्य और राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार तथा साहित्यकार रवाना हुए। यात्रा में शामिल श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के शिवालयों की पावन भूमि के माटी कलश और पावन नदियों का जल कलश बाबा सोमनाथ को अर्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने दंतेवाड़ा जिले से प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश की पुष्टि की है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है।
2: आज 22 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून 2020 छत्तीसगढ़ में ऑनसेट किया गया है। दंतेवाड़ा तक मानसून का प्रोग्रेस हुआ है और प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
1: मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून प्रदेश में सामान्य तिथि की तुलना में करीब 10 से 12 दिन की देरी से पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल बीजापुर जिले में कभी माओवादियों का गढ़ रही कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर भी सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर 5000 फीट ऊंची यह पहाड़ी कभी माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले वर्ष ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने माओवादियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया था और तलाशी अभियान के दौरान यहां से भारी मात्रा में हथियार तथा 450 से ज्यादा आईडी बरामद किए गए थे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस 2.0 सर्वे की अंतिम प्राथमिकता सूची के निर्माण के लिए 24 जून को राज्य की 11,600 अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में आवास योजना के लिए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। यदि किसी पात्र हितग्राही का नाम सूची में नहीं है अथवा किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो ग्रामीण ग्राम सभा में दावा और आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्य में खनिज संसाधनों के संरक्षण, उनके नियमानुसार उपयोग और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने शिकायतों के आधार पर कल और आज विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण कर जांच अभियान चलाया। इस दौरान बलौदाबाजार में खपरीडीह में चूना पत्थर के भंडारण स्थल और खदानों में अनियमितता पाए जाने पर 6 क्रशर इकाइयों को सीलबंद कर संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए गए। इसी प्रकार सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम दहीदा में महानदी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे मशीन को जब्त कर सीलबंद किया गया। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दंडाह स्वाही स्थित केवाई नदी, पसौरी, कुटरा तथा हसदेव नदी क्षेत्र के अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 81 एटीएम कार्ड, 62 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 13 मोबाइल, 11 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और हार्ड डिस्क सहित करीब 2.5 लाख रूपये मूल्य की सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक या सिम कार्ड उपयोग के लिए न दें, क्योंकि ऐसे दस्तावेजों का उपयोग साइबर अपराध, ऑनलाइन सट्टा, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों

0: किया जा सकता है। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआई के संपर्क में होने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पंजाब निवासी सेवक सिंह पर आरोप है कि वह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी के काम के आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी विदेशों में भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर साइबर सेल को जांच के लिए भेजा है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने ने लगातार दूसरे वर्ष जून महीने में ही किसानों को समर्थन मूल्य और अतिरिक्त रिकवरी राशि का शत प्रतिशत भुगतान कर देश के सहकारी शक्कर उद्योग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कवर्धा में कल आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 29,43,00,000 रूपये सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित किये। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने दंतेवाड़ा जिले में ढोलकल ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण किया। जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत करीब 61,00,000 रूपये की लागत से इसे विकसित किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस रूट के शुरू होने से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में प्रशासन को मिले 396 आवेदनों में से 277 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय रायपुर में कल 23 जून को पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए है जो संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय के छत्तीसगढ़ सर्कल से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और उनके सुझाव सुने जाएंगे। कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के स्केटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 से अधिक पदक जीते हैं। इनमें विशेष रूप से भिलाई से शामिल सभी 8 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए हैं। इस प्रतियोगिता में देशभर से 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने आबकारी विभाग के 30 अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें जिला आबकारी अधिकारी और सहायक जिला आबकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रवीण वर्मा को रायपुर जिले का प्रभारी आबकारी उपायुक्त बनाया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में तकनीकी कार्य की वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन और हीराकुंड एक्सप्रेस 16 से 20 जुलाई के बीच परिवर्तित मार्ग से चलेगी। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कोरबा शक्ति मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर की टक्कर से दोपहिया सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत आज रायपुर से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मानसून ने आज छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। दुर्ग पुलिस ने म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाने और ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लेखा नियंत्रक का कार्यालय रायपुर द्वारा कल पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिन्दी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।

0: जीएसटीता नालू रकम मोलत दर लगे मास और मत्ता। 1,000 रुपये ते कम मोलत कमरा पोइत के 0 GST मिंदे अचूट 1,399 रुपये ते होटल कमरा पोइत के 12% जीएसटी लगे मास और मत्ता। 2,500 पोइस 7,499 रुपये मोलत कमरा पोइत के 18% टैक्स लगे माता। ईदे नए दीबे मोलता कमरता मई दे 28% जीएसटी लगे मास और मत्ता। मती इंजे होटल नेगा कमरा पोइत के सिर्फ रेंड रखाते मोला लगे माता। 7,500 ते कम मोलता कमरा मिंदे इतके 5% और इदेन दीबे मोलता मिंदे इतके 12% जीएसटी याना आंता।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम मंगतू, राम राम
1: राम राम पगनी, राम राम बोले अमरली।
0: अमरली ए चीज संगे बस्तर के स्वर सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन भाई बहन मन की मैं पगनी
1: और मैं मंगतू
0: अमी दोनों करूं से राम राम,
1: राम, राम। पगनी
0: ओ नंदन पील नंदन पीला मन
1: के बोलनी बुलकु काय नानी नानी पीला मन के बोले कुबे कुबे मया और लाड
0: आज नी हम ज्ञान ध्यान चो गोड धरून आम्ही एवाने आज बेलास नी ज्ञान ध्यान चो गोड धरून अमरलू से तो आमचो बस्तर चो दादा दीदी मन फिर जानिस की खूब लोग हम खेती बाड़ी करू आने खेती बाड़ी करू आ खेती बाड़ी संगे संगे बोल कहीं असनी पल पालन पोषण बोल करू से ने जैसे की गाय होली भैंस भैंस होली और फिर असनी कुकड़ी पालन होली बकरी पालन होली
1: कहीं बोले पशुपालन
0: पशुपालन
1: करू से और हम चो जीवना के ऊपर उठाऊ से ने तो उसने आए हम जो तो गांव ने पशुपालन करतो रहा है बकरी पालन हो नाले फिर सुअर पालन हो नाले कुकड़ी पालन हो कहीं बोल पालन कर सकता और सरकार मन ने आजकल योजना मन बोल निकरे से और निकरे से और उन मन के हम छो छूट बल मिले से और छूट के बल दरुखलाए हुए थे और ये हम चलक तो
0: ये गोट तो होली ये दाय हम चलक गोट निक गोटा से एक बल सुन
1: हाँ
2: जीएसटी तक ऐतिहासिक बदलाव किस मन सरकार ऑटोमोबाइल न पुर्रो जीएसटी दर नग संशोधन की तोड़ अदेन के पंडुम की न समयाते एंट्री लेवल हैचबैक इंधन कम्यूटर फोटो गाड़ी और ऑटो रिक्शा असनोर सस्ता मोला ते उदर किता पूना परिभाषा हिसाब ते सुडला कार गाड़ी 1200 सीसी ते अपना पेट्रोल कार गाड़ी आयत के 1500 सीसी ता डीजल कार और 4000 मिलीमीटर लाटनाव मिंदे इत के यु कोंडे 18% जीएसटी श्रेणी ते वाता।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी ने ऐतिहासिक बदलाव आनते सरकार ऑटोमोबाइल उपरे जीएसटी दर ने संशोधन कर ली से एचुले तिहार समय ने एंट्री लेवल हैचबैक कंप्यूटर बाइक और ऑटो रिक्शा घेन तो लोग मन के ये मन और सस्ता ने मिरे दे नुआ परिभाषा हिसाब ले नानी कार 1200 सीसी तक चो क्षमता बीती पेट्रोल कार अरु 1500 सीसी तक चो डीजल कार आसे जेचो आगर ले आगर डेंग रतो 4000 मिलीमीटर आसे ये सपाय 18% जीएसटी चो श्रेणी ने ऐसोत।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: पगनी हे गोट तो होली ने आमचे लगे तो रोजे दिन चासन भेट वार्ता धरून बाती येऊ से ने तो उसने भेट वार्ता धरून इलु से ये आत केदारनाथ पांडे उनचे संग भेट करूगात बलबीर सिंह कचाले भेट वार्ता बोल सुनू।
2: गांवकारी भाई बहन मन, आज मैं असन गोटोक ठान चो गोट बात करें से जे कि अपन मन जानला सुनसास बल होती कि बिनता भेजा नाव ने कुटुकसन गाँव आसे। आरु ये जोन गाँव आए बोलुबे बोले चारों कुतले डोंगरी आसे आरु मंजिगते एतान कितले गाँव मनासोत। तो यही गोट बात कर तो काजे आज आमता ने अम्बरला से उताय चरो बिता सबले आगे नाव सांगना काय नाव है।
3: मोचो नाव केदारनाथ पांडे है।
2: अच्छा, केदारनाथ पांडे।
3: हाँ।
2: गाँव बल्ले ने
3: गाँव बल्लन मोचो बिनता है।
2: हाँ।
3: विकास खंड लोंडेगुड़ा।
2: लोंडेगुड़ा। हाँ। तो दक केदारनाथ पांडे जसन की तुम चू जोन गाँव आए मैं जाऊन बत दखले बल्ले ने भौरक ले बल्ले डोंगरी आसे।
3: हाँ, एक भौर डोंगरी आसे
2: और मंजी गते गाँव में
3: मंजी गते गाँव आसे
2: तो
3: चार पंचायत आसे।
2: अच्छा, चार पंचायत।
3: चार पंचायत आसे भेजा बिंता करेकोट सतसपुर।
2: अच्छा,
3: चार पंचायत चो लोग हुता बसलू से।
2: अच्छा, और गाँव किठन आसे।
3: गाँव तो असन होता छह गाँव आसे चार पंचायत ने।
2: अच्छा,
3: दुठन आश्रित गाँव वाला से कोरली बोलूम भाती और गोटोक रायगोंदी बोलूम भाती। रायगोंदी जो ने सतसपुर पंचायत ने हुआ है और आश्रित गाँव है और कोरली बले उसने गाँव है और कोरली चो बारे ने खंडी तुम की मैं और सांगून दे से होता मात्र 25 घर आसे।
2: अच्छा,
3: मांतर का हुता चो लोग आज तक ले बीमार ना जुन पड़ो।
2: अच्छा,
3: ये बड़े हुता चो खूबीज बात है। और इंद्रावती नदी बीचो बीच हुता कटुन भाती गेली से कोरली गांव ने और बढ़िया सुंदर मजा गांव है। टापू ने एकदम बसली से गांव हुनके आम चो बाटे हलवी ने बोलुआत हुनके कुरुद बोलुआत तो कुरुद ऊपर हुता गांव बसली से हुता डूठन स्कूल वाला से प्राइमरी और मिडिल स्कूल।
2: अच्छा,
3: और गांव मास्टर बोलता चार जना असत हुता है रहुआ और कोनी मुख्यालय बनो भाते रहुआत और गांव पारा लोग बोले बड़ा मतलब आनंदमय ने हुता जीवन बितास हो।
2: तो केदारनाथ पांडे जसन की ये गोट अच्छा नंगत गोट तुम सांगला की हुता चो लोग के भी बीमार नहीं पड़ो।
3: बीमार नहीं पड़ो
2: बोले कारण काय हो।
3: कारण काय हुता चो जलवायु कारण ने काय में कसन आ जाले हुता तो 10 बज ना आलो उनकी बेर दखा नहीं दे और 3 बजली बोलन बेर बस तो दखा दे ऐसे।
2: अच्छा,
3: चारों बाट ले तर पहाड़ी मतलब डोंगरी जो ना छेके से बेर के और 10 बज ना गाँव लोग बल निकलो ना जंगली जानवर होता खूबे सुअर बलून भाती आसोत बरहा बलुआत हलविन बरहा बोलसोत तो हुन बरहा मन कर कोहरा निकरला बोलो ने बड़ी दिक्कत हो ऐसे।
2: अच्छा,
3: हुन 10 बजलो ने गाय बैला ढील सोत होता।
2: अच्छा,
3: गाय बैला छेरी बोड़ी चरौ नेत्र 10 बज ढीलून भाती नेसोत और हुन 3-4 बजू घरे वापस आनसो।
2: बोले ने बीमार सीमार निपोर तो कारण असन लागे काय कुता बोले चारो बाटले डोंगरी हो तो कारण ने कहीं बोले असन प्रदूषण भी थी चीज
3: होता नहीं है।
2: नहीं है,
3: नहीं है
2: शुद्ध लहरा।
3: शुद्ध लहरा
2: हवा पानी एकदम निर्वा
3: निर्वा बल तो
2: बोले यार खान पान बोले कहीं असन जसन की रासायनिक खाद ये चुप कहीं पर
3: उनचो कहीं चे उता उपयोग नहीं करो।
2: उता है चो रसायन ले
3: उता है चो है जो बोले घरे हुन मंचो गाय चो गोबर चो बने से या पैरा कूड़ा मंचो जो सड़लो बीती बने से हुनी बीती के खेत ने नेसो तर होता है सब्जी भाजी कमासो और होता है काज कर सो। गाँव चो तो परिवेश हिसाब ने हुनमन खान पान कर सो तुम चो भेंडा आए टोटा भाजी आए है कि नहीं ये सब चीज मंचो उपयोग ज्यादा कर सो।
2: तो भले ने ये सब कारण है बोले
3: ये सब कारण है।
2: तो केदारनाथ पांडे जसन की तू यास बिनता चो
3: बिनता चो
2: है कि नहीं पचो तू चो जन्म बाढ़ होता है होली
3: होता है होली मचो पढ़ाई लिखाई बोले 8वीं तक चो पढ़ाई लिखाई होता है होली पाचे 9वीं पढ़तो का जामे लोहड़ी गुड़ आई लो।
2: अच्छा,
3: आगे तो बिजली पानी का ही नहीं रहे
2: नहीं रहे
3: चिमनी उजर ने पोड़ लू बाखरा भीतर भरी हो रो तो राया रूता पर धुआं धुआं

0: पूरा होम भाती नहीं करतो रहा बिहान उठलो ने असन टाइप चो तकलीफ ने पड़लू। और आज खंडिक में उता पढ़ाई बारे में सांगू दें से कि हूं तो बामन बस्ती आज बिंता ने बसली तो हुंचो फायदा आसपास चार पंचायत के लोग के मिरली।
1: अच्छा
0: आज प्रॉपर बिंता गांव ने प्रत्येक घर ले सर्विस बिता आसोत और हूं तो कोटो बड़े खूबी की बात है कि दसवीं बारहवीं फेल बिता नहीं आत होता।
1: अच्छा
0: हाँ और वो पूरे लोग होता कहीं ना कहीं रोजगार ने जोड़ला सत कोई जरूर न है कि सरकारी नौकरी मिलो है कि नहीं कौन गाड़ी चलाए से स्वयं गाड़ी निकालो से टैक्सी मन होता ग्यारह ठंग गाड़ी चले से बिनता ले चार पंचायत लोग बसुन बता शहरे ऐसो आठ बजे गाड़ी छूटू है और एथाल फिर दुई बजे डॉक्टर लागू घर ले फिर एथाल स्टैंड आए था तो एथाल फिर जमाए लोग फिर बसुन भाती फिर रोज जो दिन मरा जो काम आए उनके धरुन भाती फिर वापस फिर सांझ फिर घरे
1: मंत्र केदारनाथ पांडे भाई जसन की मैं देखले एकदम बल्ले डोंगरी खाले उतरन भाई तुमचो गांव जाऊ कुलाई पडू है और बल्ले ने सड़क बोले उतलो अच्छा नी बनले बल्ले माटी मुरुमचो सड़क आसे
0: माटी मुरुमचो
1: टेबले बोले हुताचो लोग बल्ले ने कहे कि पढ़ा लिखा ने और उन्ती बाढ़ती ने बोले आगे आसोत आए कि नहीं और फसल हिसाब ने काय काय धरसोत
0: फसल हिसाब ने हुता धरसोत पहला मुख्य फसल है हुताचो धान। धान तो मैं तो बोले से छत्तीसगढ़ ने बिनता बराबर धान कहा है नहीं हो येसु बोले जसन गुलाबार सूखा बल सुन लास्त बोले आई कि नहीं येसु रिकार्ड तोड़ फसल होली से बिनता ने।
1: अच्छा
0: असन बराबर फसल कोनी बरक नहीं हो रही आमचो सियान मन सांग सोत कि असन फसल कोनी बरक नहीं रही बोलते मतलब पूरा पचास साल चो रिकार्ड के होता टूटाली से धान बोले और धान संगे संगे मंडिया हुआ है चिकमा हुआ है कोदा हुआ है।
1: अच्छा
0: और हुन चले फिर उड़ीद उड़ीद बल कमाऊआ थुता उड़ीद बले हुआ है।
1: अच्छा।
0: और जो ना राहेल बोल सोत कांदुल
1: कांदुल
0: कांदुल बले हुता फसल मुख्य फसल बना ये सब फसल।
1: अच्छा जैसन की तुम बल्लास की

0: बितावल जाते रहुआत तो जाचो घरे बाल बच्चा वगैरह नहीं हो से असन बितावल जाऊन बत शिवजी तो स्थान है बोलसो तो हुता बाल बच्चा जी बोले खंडी मतलब मनोकामना पूरा होतो काय तो आसे और संगे संगे फिर गांव ने गोटोक भेजा गांव ने बोलन बात गोटोक घोड़ा पकड़ा बोलन बात गोटोक दत्तो लाए तो स्थान आसे हुता पिकनिक स्पॉट असन
1: अच्छा
0: तो ये सब मन होता जो मतलब दत्तो असन काय तो आसे
1: अच्छा अच्छा जसन की तुम छो ता बोले नदी गोटोक आसे कौन
0: इंद्रावती नदी है हुता गोटोक नारंगी नदी बल मिरली से
1: अच्छा
0: दोनों मिलन भाती जाए से
1: अच्छा बोले ये जो पानी चो उपयोग ऐसा में कहीं कर सो खेती बाड़ी ने
0: खेती बाड़ी खंडी ककनार चंदेला बाटे हुंचो उपयोग कर सो आमचो बिंता खाले का है बिंता ले मतलब करीबन 2-2.5 किलोमीटर दूरी हो से और हुता ले हुन क्षेत्र ने लाइट नहीं आए लाइट नहीं रलो कारण ने पंप पंप कोनी नहीं लगाओ तो डीजल पंप चो उपयोग करूं भाती कोनी तो हुन साग भाजी चो उपयोग कर सो कुछ किसान
1: अच्छा
0: पूरा नहीं करो पूरा उपयोग करो क्लाइन सको
1: अच्छा बोले कुछ किसान कर सत बोले
0: हाँ कुछ किसान कर सत
1: जैसन की तुई तो हुता है चियास बोले नार तुई बोले ने पढ़ा लिखा उन बातें उता चो
0: मैं सर्विस हाँ सर्विस करें से आज मैं संकुल सन में पद ने आसे तो मचो अंडर ने 21 स्कूल आसे उता 14 प्राइमरी आए और 6 मिडिल और गोटक हायर सेकेंडरी 12वीं तक कक्षा आसे मास्टर हुता है रुवात कोनी मास्टर ए बाटून बाटले नहीं आवत तो मुख्यालय चे रसोत और बराबर अप टू डेट ड्यूटी कर सोत और लोहंडी गुड़ा चो अधिकारी बल मानुआत की नहीं बिनता बराबर गाँव नहीं आए और आम चो लोहंडी गुड़ा विकास खंड ने नंबर 1 पोजिशन दिला सोत
1: अच्छा
0: असन टाइप जो होता जो माहौल आसे
1: बोले ने असन आए तु होता है छो तो कारण ने बोले तु संकुल केंद्र प्रभारी हो तो कारण तू बोले ध्यान ज्यादा
0: ज्यादा रहे से
1: ज्यादा रहे
0: ज्यादा रहे से
1: बोले हर समय दखा रखा कर तो
0: देख रेख कर तो
1: स्कूल मन के
0: असन टाइप जो मतलब होता हमें करुण भाती गाँव पारा चो लोग मिलुन भाती सब संग प्यार बाड़ी से तो सबके दखू से कोचे पीला हो तो उनके आमचो पीला समझुन भाती होता पढ़े लिखाई चलाऊ से
1: अच्छा बोले कहीं तकलीफ
0: बिल्कुल नहीं आया होता
1: असन मान ले अचानक कोनी बाहर चो आदमी गेलो ने कोनी अधिकारी गेलो ने एच काज बोल तुम चो बाटले पूरा सहयोग
0: पूरा सहयोग रहे से
1: अच्छा
0: पूरा सहयोग हुआ है हुता संगे संगे हुन चोले आम चो आदिवासी भाई मन काज बोले हुता हॉस्टल बल खुल ली से प्री मेट्रिक छात्रावास आसे जो हुता छठमील धर्म बाद 12वीं तक चो पीला जो नदी चुन पाट ककनार चंदेला महिमा पालम पुष्पाल एमन गांव आसे तो हुन गांव चो पीला अगर ए बाटे बिनता ने उन बात पड़तो चाहसो बोलो ने कसम बोलो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी गोट की आसे उन क्षेत्र काजे तो हुन मन काज बोले हॉस्टल चो सुविधा बल सरकार द्वारा कर लो रासे
1: अच्छा
0: आरो लेकी मन काजे लेकी मन के रतो तो भारी तकलीफ आए हुन मन काज बस 100 सीटर चो गोटो आश्रम बना लो रासे भेजा गांव ने तो पूरा बालिका जो नाथ हुताय रून भाती हुताय पढ़ा लिखा करुआ हुन मन चो पढ़ाई लिखाई हुताय चे आए
1: अच्छा
0: असन टाइप चो 100 सीटर चो आए आश्रम
1: बोले केदारनाथ जरूरत हिसाब ने बोले ने काय चीज चो जरूरत आसे बोले
0: ये भी फिलहाल हम चो जरूरत तो हमके सड़क चो आसे गोटो आरो गोटो कासे आमके मेन आसे गाय बैला छेरी बोकड़ी आमचो बीमार पड़लो ने आमके लोहंडी गुड़ा एतर पड़े से
1: अच्छा।
0: डॉक्टर काजे आमचो पशु औषधालय गोटो बनून दिलो ने हुन बड़े भारी होती
1: अच्छा।
0: तो कसन आजकल खुरा चपका है कि नहीं गलघोटू असन टाइप जो कई प्रकार जो बीमारी हो से तो हुंचो कारण ने फिर आमके एक आदमी के एतर पड़े से लोहंडी गुड़ा और यथा डॉक्टर धरून बात जन बात फिर टीकाकरण वगैरह करतर पड़े से
1: अच्छा
0: तो ये चीज चो और आमचो सड़क चो दुई चीज चो ज्यादा परेशानी
1: अच्छा।
0: बिजली चो व्यवस्था तो होली 2001 ने बिजली ली बिजली आम के बहुत अच्छा मिरली से हुंचो उपयोग आमे भरपूर करूं से
1: अच्छा और जैसन की आजकल नवा नवा हिसाब ने खेती बाड़ी करते हिसाब ने कहीं कल मशीन हिसाब ने तुम चो
0: हो आसे
1: आसे
0: आसे आम चो ट्रैक्टर आसे धान मोडातु भी थी मशीन आसे हुन चोले थ्रेसर आसे धान मिर्तु काज बले हुन भी थी बले उपयोग करू से
1: अच्छा
0: आरो संगे संगे आम चो गांव चो 2-4 जन पीला मन बले कृषि थाने था कुमरा और कृषि फार्म हाउस ने था पढ़ाई कर सोत
1: अच्छा
0: हुन पीला मन बल बीच बीच ने जौन भते आम के मार्गदर्शन बल देते रसोत
1: अच्छा
0: नहीं असन असन कर तो राय ने मिट्टी के पलट तो राय है कि नहीं ते हुन चो उपजाऊ अधिक हुआ बल असन असन बल गांव के किसान मन बल खंडी खंडी मार्गदर्शन बल करते रहो
1: असन बल्ले ने कहा कि खिनिक सड़क जो सुविधा
0: हाँ सड़क जो सुविधा नहीं आया हमके हुनी कारण है हमके ज्यादा तकलीफ होए से
1: अच्छा
0: माटी मुरुमी सड़क आए और पानी मारन दिन उनका आया डोंगरी चो पूरा मुरुम के बोहरा ने ऐसे
1: खाले उतरा
0: खाले उतरा ऐसे फिर पानी छान ली बोलन 10-20 हजार खर्चा कुन बाद फिर रिपेयरिंग कराऊ से तो हुनी कारण है हमके खंडी तकलीफ होए से

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर, मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम आम चौगांव।

0: राम राम मग
1: जुहार पगनी जुहार
0: जुहार मग तू जुहार
1: आला मुरली
0: हो
1: तो आम्ही तो दोनों भेट गाठवलू नी मानतर आमचं गाव सुन तो सपाय गावकारी दादा दीदी मन को भेटघाट करू अरे आमचं गाव सुन तो सपाय गावकारी दादा दीदी सियान सजन मन के मय मग तू
0: अरे मैं पगनी आम्ही दोनों करू से जुहार
1: तो पगनी रोजे दिन चो असताना आम्ही
0: ज्ञान ध्यानचं गोठ धरून अमरू असणी बोला आम्ही आजी बोले ज्ञान ध्यानचं गोठ धरून आमच्या दादा दीदी लगे अमरलू से आजीचो फिर गोट आहे आमच्या लगे पशुपालन तो आमचं गावकारी दादा दीदी मन सपाय लोग आपलो खेती बाडीचो बुता करेस बुता संगे संगे बोले कई कसन जे पशुपालन के करेस तो
1: पशुपालन करसो तावर आपलो आज जीवन चलास तो उसने आहे पग निरोजे दिन चो असन तो आम्ही सांगू छे काही बोल गोठ मन के पशुपालन करून बाती जीवना चलतो बीती और उन आमचो जीवनाचं साधन करतो बीती ने
0: हाँ सत्य गोट के बोलली से कसन की बोलले की आमचो गाव जो अर्थव्यवस्था बोलले की कृषि आहे और पशुपालन आहे अरसनी आमचो आजीविका बोले साधन होय से की गामचो गाव गाव गाव ने सबचो घर ने काही ना काही असन मन के पशु से ची और आपलो पसुन बात ले फिर दुई पैसा बल कमाऊ से हुन बल सत्य गोटा है मातराम असली पशु से गाय भैंस और कुकड़ी बकड़ी ए मन के पशु से कसन बोले की गाय गाय भैंस के पसले आम के
1: नहीं उन तो आए छे और काय आमचो आमचो संगे पशुपालन वाले करू से और पशु मन चराऊ से और रहू से और कोनी कोनी ताने कुबे 200-300 पशु पाल सत नहीं बकड़ी मन कोन तान 200 पाल ला से तो उन जो जीवना यापन उन चो
0: नहीं चले सत्य आए कसन की कई बूता भयना बल नीरल पर उनची देख रेख करून बात ले बोले करे सो तारा असन है कि गाय भैंस ले आम के गोरस मीरे से और मांस मीरे से और जैसे नाम चो शरीर का जे कितलो प्रोटीन मन चे जीनेस मन के मीरे से
1: तो उन तो आए चे और उन गोट तो आसे तो आम चला कि मानते आम चला गोट गोट आसे अले गोट कर सुन

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: इंडियाना होटल नगा कमरा पोइत के जीएसटी ता 4 रकम मोलत दर लगे मास और मत। 1,000 रुपए ते कम मोलत कमरा पोइत के 0 GST मिंदे अचूट 1,399 रुपए ता होटल कमरा पोइत के 12% जीएसटी लगे मास और मत्ता 2,500 7,499 रुपया मोलत कमरा पोइत के 18% टैक्स लगे माता इदे नए दीबे मोलत कमरा ता मैदे 28% जीएसटी लगे मास और मत्ता मती इंजे होटल नेगा कमरा पोइत के सिर्फ रेंड रखाते मोला लगे माता 7,500 ते कम मोला ता कमरा मिंदेत के 5% और इदेन दीबे मोला ता मिंदेत के 12% जीएसटी याना थामता।
4: मंग तू एदायाम लोक गीत सुनू एक गावला सोत ए लोकनाथ वैष्णो।

उसने आसे हम चले गए और बोले गोटो गीत अले एक गीत के बोले सुनू और दादा दीदी मन बोले सुनाऊ पाचे गीत करिया।

0: পগ্নি,
1: এ
0: গোটকে তো শুনলু গীত কে নে
1: শুনলু হ
0: তো আমচলে গোটক আছে
1: গালো লোকে চিতেল
0: আরে গালো লোক চ তো নাম হয় কীর্তি নিষাদ অরুণ চ
1: সঙ্গারি মান
0: তো আমচলে গে আছে গোটক নাটক ওয়াট আলি এ
1: এ লিখলা
0: লিখলা সে সদন সিং নাগ আর আমচলে গমরা লাসে বলবীর সিং কাচ
1: এক বল শুনু
0: আর এক বল শুনু পাঁচে ভাগ ধরলো লোক চ নাগ সঙ্গো
2: नाही इतरो पैसा कवडी खर्चा करून पडालो काय मतलब दिली गुनु ये साहब के आमचो असन अपळ काम के करे दे मने उसन जाले पडाई काय काज करलीस तुके तुके जानू पीला बेराले भूती पठालो न रखत रहती काय काज बोले इतरो पडाले जाल मैं
3: आले ओ काय बोले रहा हो पोपड़ा पोडून भाती बारवी क्लास ने अच्छा नंबर आनलो से এতে তুমকেই পারলে বেড়া খাড়া বুতানি সাহা হয়ে দে বলে সে চাল কায় না সাইসে
2: কায় না সাইসে ম একে বেড়া খাড়া নে চিকল মাটি নে কাম করে দে বলো নিত্র পড়ালে সে নে ইত্র পড়ুন লিখুন ভাতি নৌকরি করতো খিড়ি পয়সা কৌড়ি বলে ঘরে এতি আলে সমঝাও কায় সমঝাও জল তুই
4: এ দে না বাবা আলে খিড়ি মোচো গোট কে বলে তো সমঝুন দেখা না
2: আলে সমঝাও কায় সমঝাও আজ জালে
3: এ হো एक्के हार पीरा के डराउन पकाय सास खिंडी कस्तीर ने सुनून बल तो दखा हुन काय बले से आले
2: काय काय असने सुनवास रे मोचो तो मन के टूटोन दिलो इले का आले सांग बे
4: ए ना बाबा असन आय आले नौकरी बल्ले तुरते पड़ते खन तो ककई नी लगे और एबे मैं 12वीं पास कर ले से मोचो विषय बल्ले हुनी खेती कमानी बीती रहे और एबे बेड़ा कमानी ने नुआ उवाटले करलो ने अले खुबे फायदा आसे अले ये कि मैं तो जाने
3: लेका एक खार बले से जाले खिंडी घुंचो गोट के बले तो मानुन दखा होक सके हुन काई अच्छा करुन दखाय दे होती
2: काई माटी के करुन दखाय देता आमचो बेड़ा कमानी आए बरसाचो भरोसा और ये कमानी करते करते मैं डोकरा होले एबे फिर ये बैडू करुन दखाय दे मने जाले मोके तो नी भावली
5: काय होली गुनुक ना चैतन व्यातले क्लियर कलर सुना दे से कसन होली लेका के काय काजे असन खिस्सा

0: सुन के
1: नी दखास मामा लेका बारहवीं पास हूँ बेड़ा कमानी ने संग दे दे बोले से तबे हुन के खिजे चकर सोत
0: आले बाबू रूप साहे तू पढ़ लीस लिख लीस पढ़ा लिखा माने होलीस ना एबे कसन हिसाब ने बेड़ा कमानी चो गोट बोलसिस
2: ए दादी असन आए कितरे पढ़ा लिखा होलो ने बोले मैं आए तो किसान चो बेटा है नहीं और ये बे पढ़ा लिखा होन भाती नुआ उटले खेती कमानी कर तो गोट के जान ले से यही गोट के बाबा के समझातो के बाबा नी समझे से
0: असन आए जाले मैं तुझे बाबा के समझाए देना ये चैतन धकना दिन बदले से जुग बदले से एबे कैक नवा नवा वाट बननी कर ली से आर रूप साय पढ़ा लिखा होन बोले खेती को मानी कर तो मन बना लो से बल्ले हो नगद गोटा तू ये मन के नी टूटाओ आर एक जसन करे दे उसन उन्नत बाटले बेड़ा को मानी करुक देस मैं बोले से ना तुझो बेटा खुबे नगद आए उनके तू समझ
2: आले ना बोडू एबे तू ही बोल सी जाले मैं एक हो बोले से आले दखाओ बे कसन करुन भाती बेड़ा उजराय दे और कमाए दे जाले जुआर साहब जुआर
3: जुआर जुआर रूप साहब बस
2: ओ साहब खुब्बे मुश्किल ने मैं मोचो बाबा के समझा ले से साहब काय के सांगू हास्ता
3: रूप साहब जूना बेरा चो कमानी कर तो लोग के नुआ गोट के समझातो खिंडिक मस्किली चे होए से
2: हो साहब
3: तू ही फिकर नी कर जसन तुचो बुबा दखे दे कि तू ही ये बे बेड़ा ने बोर चो वाट बना ली आरु लिखा पढ़ी कर तो के हुन पास होली
2: हो
3: एके दखुन हुन खूबे हरी खोए दे
2: हो साहब ये बे बोर चो काम तो होली एदाई बाटली साहब हुन बेड़ा रेटे रेटे नहीं हुन तार बाड़ी बना तोर हुन चो काजे बोले मैं उवाट के धर ले से आउर सिर मीट चो पोल के बोले आपने सिखुन भाती बना ले से इत्रो ने मुझे बेड़ा चमक में होन जाए दे साहब कोनी बाटले चोर खंगार पशु जानवर चो कहीं चे डर नहीं रहे दे साहब
3: तु तो सब पाए बाटले नंगत उवाट मन के धरुन काम करसिस रूप साय
2: हाँ साहब
3: असन काम करुन सत्य आए तुचो मसागत ले तु गोटक दिने करुन दखाऊ चे आस असन लागे से
2: ये पे जानू साहब दिन दुनिया के दखून चलुक लागे से बड़े बड़े लोग मन होला उन्नत कमानी करुन भाती दखाला ये बे यही काम के आमचो असन बस्तरिया माने के बोले करुक लागे से तेबे तो है मैं गोटक गोट के भूलक ले मैं काय काय फसल धरें दे हुनके गोठिया तो काजे मैं यून रहे साहब
3: असन
2: हो
3: आले तेबे सुन
2: आले सांगा

0: दखलास तुम्ही लेका के बलते रहास कसन करून दखाय रे बोलून एबे दखा ए काय रसिया बोरिंग कॉम ए काय रसिया तार चोबाड़ी बेड़ा बोले कसन सुंदर दखा देस ए साग मादी ने बोले दखा नी आ हा हा हा कसन मन के फरीक करून देस हो
1: सत्य बलसिस पाकली मैं अबुज माने लेका चो दिमाग के नी समझते रहे मैं काय जूना हिसाब ले कमाती करतो लोग काय जाने ये जैविक खेती के ये दुनिया जो टडम के
0: आगे हो पानी मार ले कमानी होते रली नहा ले नहीं आय कसन ए बे काय रसिया लेका जानो बोर कोड़ाउन दी लो से ते बे 12 महीना पानी और दखा लेका बले कितरो मसागत करे से
1: हो पाकली भगवान असन भाई मानी बेटा सपा के देव ए ना ए बाट पानी झपा ना ए बाट ले ए बाट ना ए बाटे ओय ओ बाबू
0: ए मै बल जा से हो घर बाटे झप के ना दे ले जा से आ
2: हो जा जा
3: आले आले हो गए हां हां ए देख हो गए रहा हो गए रहा हो गए रहा हां आले ये

0: तो गांवकारी सियान सजन मन ये ध्यान देऊन सुना। आज ही आमी सपाय एथा परगन भरचो किसान मन जुहलू से एथा नगद काम करतो किसान मन के पूरे करून जमाए किसान मन के बाट दखातोर होए दे। आले ते बे सपाय होगा हुन बस आए
1: हाँ आले
0: ये दे
2: एबे ढोलू
0: हाँ बसना एबे आमचो प्रमुख अतिथि काजे गांवचो बोंड का सियान के आमी पूरे बसालू से तो बोंड का सियान एबे आम के बाट दका तो हिसाब ने दुई शब्द बोल दे। आले बोंड का सियान
3: आले तेबे ये गांवचो सरपंच पटेल कटवार सियान सजन सपाय लोग के मैं बोंड का करे से जुहार मचो असन अपड़ लोग के मान देउन पूरे बसाला तुमके जुहार लागो। और मैं काय गोट के बोलेंता और मैं तो अपड़ माने कहीं के तू नी जाने तेबले बोले गोटो गोट बोलें दे। ए गांव चो बेटा रूपसाय पढ़ुन बाती खेती कमानी कर तो विचार कर लो हुंचो बाबीता चैतन हुनके रीस होलो तेबे हुनके खेती कमानी चो गुआट के मैं सुन ले समझा तो के बाबीता मान लो। और ए दे मैं दखे से रूपसाय इतरो बाढ़ती कर लो से कि हुंचो खेती कमानी के दख तो काजे लाभ पीले किसान बने ऐसोत। और दखा आमचो गांव का जे बोले मानचो गोटाय किए रूपसाय के गोटो पुरस्कार हाय काहे पुरस्कार ना
0: उनी फिर श्रेष्ठ कृषक पुरस्कार काय।
3: हाँ और ये मैं दखे से रूपसाय इतरो बाढ़ती कर लो से हुंचो खेती कमानी के दख तो काजे लाभ पीले किसान बने ऐसोत। और दखा आमचो गांव का जे बोले मानचो गोटा कि रूपसाय के गोटक पुरस्कार हाँ काय पुरस्कार ना
0: हुनी फिर हुन श्रेष्ठ कृषक पुरस्कार काय।
3: हाँ हाँ हाँ हाँ हुनी भी ती इनाम बोले मिरली से जसने बाबू आप लोग गांव चो नाव के जगा लो ए गोट का जे मैं खुबे हरी का से आज ही हरी चो दिना ये दिन ने आमी हरी कुदिम संगे आम चो काम कमानी करते रहूं इतरी बोलन बाती मैं ओ गाय होय से राम राम।
0: एबे सियान बोंड का नगद गोट के बल्ला मोचो बोले यही गोट के बलतो राय कि जसन आम चो देश ने सेना चो जुआन मन देश चो संद ने आम चो रखिया करे सोत उसने देश चो भीतरे बोले किसान मन माटी ले अरन उपजाय सोत और देश चो सपाय लोग चो पेट के भरे सोत। यही काजे महापुरुष मन बले बल्ला सोत जय जवान जय किसान आम चो जवान मन के बोले शरण आसे और आम चो किसान मन के बोले शरण आसे। रूपसाय आम चो गांव चो नाव के जगालो से असनी सपाय किसान मन उन्नत वाट के जानोत समझोत और समझुन बाती हुनके जीवना ने उतरावत बले तेबे आमचो देश ने उन्नत कमानी करुक सकूं दे सर लगा उन्नति बाढ़ती करुक सकूं दे।
4: मोके इत्रो सहर आलास मैं माटी चो बेटा आए माटी मोचो माय आए आमी किसान भाई मन के एबे माटी चो मोल के जानतो राय माटी के दखून जानून जांच कराऊन उन्नत जैविक हिसाब ने कमानी करतो राय मौके बोले इतरो मान दिलास यही काजे मैं आपन मन के जुहार करें से खुबे खुबे धन्यवाद।
5: मौके बल दुई पद बोलतो राय गांव करी सियान सजन मन मैं आजी खुबी हरी कहां से। हाँ ये चो काजे कि मैं मोचो बेटा के पढ़तो काजे पठाले नौकरी करे दे बोलते मानतर किसानी करे दे बोलतो के खुबे रिस होते रहे। आज ही मैं जान ले कि खेती किसानी कर लो ने बोले मनुख ना बोले जगा सके और पैसा बोले कमा सके। हाँ आज ही मोचो छाती डेंग होली से मैं आज ही खूबे हरी खां से यही काजे हरी खां से कि रूपसाय मोचो बेटा है मोचो बेटा है मोचो बेटा है मैं हुनके नी समझते रहे ये बे भगवान ये असन बेटा सपाय के देव। तो सियान सजन मन आमचो

0: बेरा आमी बरसा चो भरसा ने रहूं उदल दाय जूना हिसाब ले आमी चलते रहूं एबे नुआ समय आए नुआ नुआ वाट वन निकर लीसे जसन रूप साय करुन दखालो से उसनी दूसर किसान बले करुन दखावत मोचो यही गोटो गोट रहे यही गोट बलतो रहे।
1: ओ दादा दीदी मन हारक फेर रूप साय और हुंचो बाबा चेतन काजे आले तापड़ी पेटा। तो किसान दादा दीदी मन आमचो पूरे आमी दखलू कि कसन करुन भाती रूप साय उवाट मनचो फायदा धरून बाट दखालो आम के हुनके दखतो राय समझतो राय और हुनी उवाट ने चलतो राय उन्नति बाढ़ती करतो राय।
2: एदाय सपाईलो लोक के मैं बने से कि डंडिकले यथा कृषि महकमा चो साहब मन बले एदे मने और नगद फसल के दखा तो काजे हुन बाटे प्रदर्शनी बोले लगली से दख तो लोग प्रदर्शनी के दखा फेर यथा जुहा साहब मन नगद उवाट मन के सांग दे सांग तो महागोट के मैं बोले सांगे दे आले एदाय सुनू ये बाढ़ती गीत और जैविक खेती उवाट करून बाढ़ती बाट ने हिंड तोर एक आमी संकल्प बोले करूं।
3: नवा दिन आए नवा जो

0: पगनी काय सुंदर नाटक के तो सुन लू
1: नी
0: एक ये चतन भागदर रोहत गेंदलाल नायक और रम जम कच्छ और रात शशांक सिंडे नारायण सिंह बघेल और सुश्री सरस्वती रायगवार उनके संगे संगे हम जो लगे
1: इतने लोग ये नाटक के आम से लगे और एक आम से लगा अमरा रोहत बलबीर सिंह कच्छ और एक लिखू रोहत सदन सिंह नाग ये नाटक भीतरे आम के कितलो जानू को मिली की कसन है आम के खेती कमानी करते रहा ये वाट के आम से लगे सांगते रोहत तो असनी ज्ञान ध्यान चो गोट और ये नाटक के आम से दीदी मन सुनला होती और आप जीवन आने के आनो तो ये नाटक तो सुन लू ये दाय आम चो
0: गोटक गीत बला से अले गीत को सुनू और दीदी मन को सुनाऊ
1: सुना
0: गीत कुरिया नाव के पाचे सांगू
1: हाँ।

0: गीत
1: के गौर होत बसंती और उनचो संगवारी मन
0: तो गीत गोविंद ज्ञान ध्यान चो गोट तो होली
1: होली
0: समय गई दखले आमचो
1: समय पहले होई छे
0: हां
1: ने
0: हां समय ने खूबे मोलास ने समय ने उरल समय ने जाऊ को असनी फिर के भी भेट गाठ हो वहां तो एदा मोर रगर रख सकलू और दादा दीदी मन से विदा मांगू
1: अले जा तो पूरे हरक हम चो गांव सुन तो सब पाए गांव कारी दादा दीदी मन के मैं मंगतू
0: और मैं फगनी आमी दुनो करू से
1: जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव। मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये आकाशवाणी जगदलपुर है, प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम नानोली। आज नानोली कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं लक्ष्मण और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत।

चलाते आते देव आईंदे उठ चोड़ी।

नैनोली कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मण और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीलावन का जगोट। प्रस्तुति है फूल सिंह कश्यप की।

पिलामन का जे गोट कार्यक्रम सुनतो सपा पिलामन के मचो बाटले कुबे कुबे मया हाउर लाड़। दका पिलामन आमी रोजे दिना महापुरुष मंचो हाउर कई महान योद्धा मन होसोत नाले मान भारत चो जुन महान बेटी मनात हुन मंचो जीवना के सांगुन से। दका आजी बले मैं थुम चुका जे महापुरुष जसन माँ महिला होली बल्ले ने महान जुन बेटी मन होली उन मंचो जीवना के सुनाए दे। मांतर उनचो पहल ए गोट के तुम्हें सुना। एकलो पीला जोन हाय उन पीला बेरा घर चो छत ने जाऊन बातीन बद्री के दकुन बलते रहे। मैं एक दिन ये तारा मन लगे जाएं दे। पीला मन तुमन मन बले बद्री के दकुन के बे सोच विचार ऐसे होती कि ये तारा मन कितरो चमक सोत काय आमी बले उन तन जाऊक सकूं। पीला मन तुमन मन लेख कर लासोती ने कल्पना यही सपना दखली आउर उन्हीं सपना चो पाटे गेली। एंदा सपना पीला मन जान लासोती कि आज चो गोट में हानले से कल्पना चावला चो जीवना चो उपरे। पीला मन गोट मैं सुनाएं दे हाले तुम्ही नगद बसुन बातें सुना। भारत चो महान बेटी कल्पना चावला हरियाणा राज्य चो करनाल नाचो जन शहर ने जन्म दरुन रहोत। उन मंचो जन्म जो है 17 मार्च 1962 ने होली। उनचो बाबा चो नाव श्री बनारसी लाल चावला और उनचो आया चो नाव संज्योति देवी रहे। कल्पना अपलो परिवार ने 4 भाई बहन ले सब ले नानी रली घरे उनके सफाय मया ले मोन्टू बलते रहोत। कल्पना चो शुरू चो जन पड़ी है उन टैगोर बाल निकेतन ने होली। कल्पना जब 8वीं ने हमर ली तो उनके इंजीनियर बन तो मन कर ली। उनचो आया उनचो बेटी चो मन विचार के समझुन बातिन उनचो बारती का जो खूब मदद करते रहे। मांतर उनचो बाबा उनके इंजीनियर नी बनुक बलते रहे उनके डॉक्टर नाले शिक्षिका बल्लने मैडम बनाऊक चाहते रहोत। मांतर कल्पना पिलाबेरा लेची अंतरिक्ष ने जातोर सपना दखते रहे। कल्पना लगे नंगत मेहनत करतो लगन हाउर काम करतो आदत असन गुण रली। कल्पना काम काजे टग हाउर आहार ओलन बले डरतो बीती नी रली। कल्पना छावला जो ना उनके ऊपरे उड़तो ने कुबे मन रहे और उन जे आर डी टाटा बल्लने जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ले प्रेरित रली। बल्लने रतन जोन जे आर डी टाटा रहोत उन भारत चो विमान चालक बल्ले ने जात चलातर रहोत और भारत चो सब कुबे बड़े उद्योगपति बल्ले रहोत। कल्पना चावला शुरू चो पढ़े ही टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल ले पढ़ ली और उन चोले उन एरोनोटिकल इंजीनियरिंग चो पढ़े ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ ले कर ली। आई करते करते 1982 ने इंजीनियरिंग जोन अभियांत्रिकी बुलवात उनता ने स्नातक चो उपाधि दर ली। कल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका का जे 1982 ने गेली और 1984 ने MSc वैमानिक अभियांत्रिकी ने विज्ञान निष्णात चो उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन ने धर ली और कल्पना 1986 ने दूसरा विज्ञान निष्णात चो उपाधि मिल ली और 1988 ने कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर ले वैमानिक अभियांत्रिकी ने PhD बल्लने विद्या वनस्पति चो उपाधि मिल ली। कल्पना के हवाई जहाज ग्लाइडर और व्यवसायिक जहाज के चलातोर लाइसेंस का जे प्रमाणित उड़ातोर प्रशिक्षक चो दर्जा बल मिरुन रहे। उनके एकल और बहु इंजन वायुयान जहाज उली पानी जहाज होली उनमन का जे बल व्यवसायिक जहाज मन जुन होसोत उनके चलातोर काजे बल लाइसेंस मिलुन रहे। अंतरिक्ष यात्री बनतोर फैल उन नासा चो सुप्रसिद्ध जुन हाथ उन वैज्ञानिक मतलब खोजाकारी रला। 1988 चो सरासरी ने कल्पना चावला चो एम्स अनुसंधान केंद्र काजे ओवरसेट जोन मेथड्स इंक चो उपाध्यक्ष रह उन बातिन काम शुरू कर ली। कल्पना उनता ने VSTOL ने CFD ताने कोच करला। कल्पना मार्च 1995 ने नासा चो अंतरिक्ष यात्री कोर ने मिल ली और उन 1997 ने पहल बार उड़तर काजे उनचो नाव के चुनुन रहो। तो फिलामन जानुआ नासा खाया नासा जोन आए उनचो पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जोन के नासा बुलवात। ये संयुक्त राज्य अमेरिका चो सरकारी जोन है उनचो बाग है। ये संस्था अमेरिका चो अंतरिक्ष कार्यक्रम वैमानिकी और अंतरिक्ष ने कोच करतोर जिम्मेदारी ये चो ऊपरे रह से। तो उसने उनचो पहल जोन हाथ अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 के 6 अंतरिक्ष यात्री मन चो दल चो इस्सा चो बाटले अंतरिक्ष शटल कोलंबिया ने STS-87 ने उड़तर शुरू होली। कल्पना अंतरिक्ष ने जतर बीतीन भारत ने जन्म लो पहल मेहरार बल्लने महिला रली और अंतरिक्ष ने उड़ा तो बीतीन भारतीय मूल चो दूसरा माने रली। उनचो पहल राकेश शर्मा 1984 ने सोवियत अंतरिक्ष यान ने जाऊन रहे कल्प

ना अपलो पहला मिशन के 1,04,00,000 किलोमीटर बल्लो ने 65,00,000 मील दूर ले जाऊन बातिन 365 घंटा ले अधिक ने पृथ्वी चो 252 हार जोन है किंदरला। STS-87 चो बाटले स्पार्टन उपग्रह के संगातोर काजे बले जिम्मेदारी रेली। ये नस्लो उपग्रह के दर तोर काजे विंस्टल स्कॉट हाउर तकाहो दोई के अंतरिक्ष ने जाऊ पड़ून रेली। 5 महीना चो जांच पड़ताल चो पाचे नासा ले कल्पना चावला के ये मामला ले एकदम दोष मुक्त करला। STS-87 चो उड़लो पाचे चो काम काज पूरा होतो के कल्पना अंतरिक्ष यात्री कार्यालय ने तकनीकी पद मन ने काम करला। उनके उनता ने उनचो काम काज के उनचो संगवारी मन विशेष पुरस्कार देउन बातिन मान सम्मान दिला। 1983 ने उन उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक जीन पेरे एरिसन ले मिरली और उन संग बिया कर ली। बिया ओन 1990 ने उन संयुक्त राज्य अमेरिका चो नागरिक बन ली। भारत का जे कल्पना चावला चो भारत ने सबले आखिर जोन यतर रली उन रहे साल 1991 और 92 चो। नुआ साल चो छुट्टी चो समय रहे उन और उन जन मनुकात उन दोनों बुलु के उन रोत। सन 2001 ने उनके STS-107 चो चालक दल चो हिस्सा गाई ले उन चो दूसरा हार उड़ान उड़तो खाजे चुनला। समय समय ने कई परेशानी विवाद और तकनीकी समस्या चो काजे हर बेरा जोन है बेर होते गेली। 26 जनवरी 2003 के कल्पना ये सपा परेशानी लेबल कोलंबिया ने चेगुन बातिन विनाशरत जोन STS-107 चो मिशन के शुरू करला। उनचो जिम्मेदारी मन ने रहोत स्पेस हब वाले फ्री स्टार जोन लघु गुरुत्व चो प्रयोग काजे कर्मचारी दल 70 आर प्रयोग करला। जोन चो गाइले पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान उन्नत तकनीक विकास अंतरिक्ष यात्री मन चो दकारका चो पढ़ी करतोर बल ने अध्ययन करतोर वैसे कोलंबिया अंतरिक्ष यान ने उनचो संगे और बल जातोर लोग मन रहोत जोन मन चो नाव है कमांडर रिक डी उजवन पायलट विलियम सी मेकुल माइकल पी एंडरसन इलॉन रामोन डेविड एम ब्राउन लोरेल बी क्लॉर्क। अंतरिक्ष अमरलो बीतीन पहल भारत चो जुन मेहरार बल्लने महिला कल्पना चावला के दूसरा आर चो अंतरिक्ष यात्रा ची उन चो आखिरी आर चो जतोर बीतीन होली। सफाए गई चो खोज गोड विचार चो पाचे वापस जन आमचे पृथ्वी ने एतो समय ने पृथ्वी चो जन वायुमंडल ने अंतरिक्ष यान चो एतो समय खूबे भयंकर घटना होली। उन घटना एवे तक इतिहास चो गोट होली से और इतिहास ने उन घटना एबल सुरता हासे। नासा ची नहीं पूरा विश्व भर का जे एकुबे बड़े दुख चो घटना रेली। 1 फरवरी 2003 के कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी चो कक्षा ने ओलतो समय ची टूटून बातिन बिखरली। दखती ची दखती अंतरिक्ष यान और उनता ने बसलो सातो यात्री मंचो मतलब सातो लोग मंचो जोन चीना होली नालूताल जोन बाशलो बीतीन जोन हाय उन टेक्सास नामचो शहर ने गसरुक मुरियाली और सफल बलतो बीतीन जोन अभियान हाय खूबे सत्य बनून गेली। ये अंतरिक्ष ने जातोर लोग मंचो तारा मन संग आजन गेला मांतर उन मन खोज कर लो बीतीन चो जोन लाभ है पूरा विश्व के अवेबल मिरे दे। असन प्रकार ले कल्पना चावला चो एक गोर सत्य होली की उन बलून रहे मैं अंतरिक्ष काजे ची बनले से अर समिया अंतरिक्ष काजे जीवा से हाउर उनचो काजे चिमरू हैं। दक असन ये तो उनचो गोटरली उसनी उनके कई पुरस्कार और सम्मान बल मिरुन रहे। जसन उनचो पुरस्कार ने हासे कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक चो सम्मान बल्लो ने ये सम्मान संयुक्त राज्य कांग्रेस गाइले कोनी बले अंतरिक्ष यात्री जोन आप लोग कर्तव्य चो अच्छा काम करून राष्ट्र और मानव जाति चो जोन कल्याण कजे खूबे नंगत खाम करतर लोग के देतर हो से। और असनी दूसर पुरस्कार है नासा विशिष्ट सेवा पदक। ये बले संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन गई मृत्योर सबले बड़े पुरस्कार है। ये पदक संघ सरकार चो कोनी बल सदस्य के देख सको जोन सैन्य अंतरिक्ष यात्री और नागरिक कर्मचारी दोनों शामिल हासोत। नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक ये राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन चो सम्मान है। एकोनी नागरिक नाले सैन्य अंतरिक्ष यात्री पायलट मिशन विशेषज्ञ पेलोड विशेषज्ञ अंतरिक्ष उड़ान मिशन और कोनी बल अंतरिक्ष यात्री के आपलो व्यक्तिगत जन बागदर लोर चो समिया ने खूब अच्छा उपलब्धि और सेवा काजे देतर है से। कल्पना चावला चो सुरता ने भारत और अमेरिका ने कई संस्था और ठान मंच नाव संगाला से जन मन हा जसन की 5 फरवरी 2003 के भारत चो प्रधानमंत्री घोषणा करला कि उपग्रह मंचो मौसम श्रृंखला मेटसेट जोन आए METSAT कल्पना चो नाव ले हो दे। हाउर भारत चो पहला मौसम उपग्रह मेटसेट 1 भारत गाइले 12 सितंबर 2002 के कल्पना 1 नाव ले शुरू

टेक्सास विश्वविद्यालय चो आर्लिंगटन जोनता ने कल्पना चावला एरो स्पेस इंजीनियरिंग ने मास्टर विज्ञान चो डिग्री 1984 ने धरली उंचु सम्मान ने गोटोक सेनागार कल्पना चावला हाल चो नावले 2004 के नाव संगाला टेक्सास गोटोक विद्यार्थी अपार्टमेंट परिसर मन ने चावला संगे सपाय अंतरिक्ष ने गेलो वैज्ञानिक मन चो नाव ने ऑलमन आसे मंगल ग्रह ने कोलंबिया इल्स चोन नाव ले कल्पना चावला संगे सातो अंतरिक्ष यात्री मन जोन कोलंबिया सटल चो घटना ने महत्व होली जोन हाजला उन मन चो नाव ने चावला पहाड़ी हासे कल्पना चावला चो भाई संजय चावला बल्ला की उनके पूरा करतुर काजे मेहनत करतुर है डरतुर नु है और केवे आर मानतुर नु है और कल्पना चावला उनके पूरा करतुर काजे मेहनत करतुर तो आले सुना है गीत के।

हाँ, पिलामन एक गीत तो सुनलू तो जातोपुरे पिलामन का जे गोट कार्यक्रम सुन तो सपा बड़े नानी पिलामन के मज बाटले कुबे कुबे मया हौर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीला मन का जयगोठ, प्रस्तुति थी फूल सिंह कश्यप की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी मौके पर बुला

0: बताया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी भविष्य में न घटे इसकी कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
3: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
7: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित

0: के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बाराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सीआईएसएफ के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken

0: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कोर 10-12 लोग और ग्रुप ने गोटो का मी खाता खुलायलु और आई तन 10-10 रुपया हफ्ता ने जमा करते रहूं आई पैसा का मी बैंक ने कर जमा करूं।
1: अच्छा हाँ हाँ फिर बाद में सरकार बाटले कहीं सहायता मिलला भी?
0: सरकार बाटले आरे पैसा बलुआ 15,000 आरे पैसा मिलला और सीआईएफ बलुआ 6 महीना बाद ने सीआईएफ पैसा मिलला और 1 साल बाद ने हम 1 लाख पैसा दलू और 12 लोग का मी बैंक नामी अपना उठाई करी बैंक ने हमें पटाई सारलू।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ बोले ने सब ले पहल बोले ने काय काम की तुम्हें मूर करला साले?
0: पहले तो समूर काम चलला पाचे 2020 ले आमी गोठान काम करलू।
1: अच्छा हाँ हाँ समूह ने काय काम करते रहला?
0: समूह ने मैं पशु सखी काम करवाए
1: पशु सखी।
0: हाँ गाय बैला कुकड़ा चिमड़ा असनी काय मरनी बले हुआ है माथा बोलू हुआ ताय बले हुआ है गाय बैला के असनी गलगोटा ये सबर तो बड़े बड़े डॉक्टर मन के आग दे बार कारीगर असनी बीमार सीमार आए बलते और खुद छोटे छोटे बीमार होल तो मशीबल करवाए।
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा तो ये पशु सखी काज बोलते तो के ट्रेनिंग धर के लाग सी?
0: हाँ पशु सखी काचे ट्रेनिंग धर के लागला हमके
1: कहाँ
0: बकावंड।
1: अच्छा बकावंड।
0: हाँ
1: अच्छा बोले ने कतक लोग कहते हैं ट्रेनिंग दिला जाले?
0: तो हर गांव ने तो आई लगे 27 पंचायत ने हर गांव ने एक लाले का पशु सखी बलवार तो आती सब लोग जाए कर हम सीख लू और सीखी करी आई कर हम गांव ने भी कुकड़ा चिमड़ा के इंजेक्शन लगावा।
1: अच्छा हाँ हाँ तो है तन पूरा इंजेक्शन लगा बीती बोले सब सांग लगा
0: आओ कसन मार बारा है कसन कतक मा दवाई दर बारा है कसन मार बारा ये सब सिखाए लाए तो सीखी करी आई लू और ये गांव ने हमी कर बुआ चे।
1: अच्छा तो हाँ तो मतलब दवाई वगैरह बोल कहीं है सरकार बाट
0: हाँ
1: ले?
0: दवाई बल सरकार बांट ले देवा
1: अच्छा बोले तुमके खुद घेनुक ना पड़े?
0: नहीं
1: हाँ हाँ तो ये जैसन की पशु जानवर वगैरह बोले कहीं सर्वे वगैरह तुम कर सा कि कहीं हाक दिले ने लगा ऐसा कौन?
0: नहीं हर घर ने तो दिन भर तो कुकड़ा चिमड़ा तो दिन भर बुलुआ संजो ले हलुआ तो हर
1: हाँ
0: घर ने आमी तो जावा तो हर कुकड़ा के आमी इंजेक्शन लगावा छोटे बच्चा के अलग लगाए बराई और बड़े टाके अलग लगाए बराई।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ बोले सबका अलग अलग अलग
0: हाँ अलग अलग आवाए।
1: हाँ तो बोले ने कहीं विशेष समय बल रही से आज का जैसन कि पशु टीकाकरण वगैरह बोले लगावा बोलवा तो हसन बल तुम लगा हुआ?
0: गाय बैल के
1: हाँ
0: गाय बैल के तो बदमाश

0: हर परिवार का कहीं दखा दे से अच्छा उद्यम हिसाब ने का कसन लागे से
1: नहीं पहले तो आमी के नीना जाइत रहूं गांव ने कुली बुती जाऊं तो दारू काचे जाऊं तो बरसात बेरा बेड़ा ने बुती जाऊं तो जोन दिन ले आमी 2016 ले आम जुड़लू आचे आई दिन ले बल्लासन मैं शुरुआत ले पशु सकिन काम कर भी अच्छा आई दिन ले के नी कुली बुती के नी ना जाऊं तो पाचे फिर 2020 ले फिर गोठान होइला गोठान होइ बाके आमर आर्थिक सहायता अधिक अच्छा लागला कि घर द्वार बल खूब अच्छा होइला पिला जी लाग बल पढ़ा लिखा अच्छा करायलू अपना घर द्वार के बले आघर ले दूसरा बदल लू एबे आम के बल खुद अच्छा लागसी अच्छे
0: बल्ले ने कहा कि बल्ले ने खिनिक पैसा कोड़ी हिसाब ने खूब सुविधा होली
1: हाँ नोनी बले 12वीं तक पढ़ाई ली ऑनलाइन पढ़ाई हुई तरह अर्धाई मोबाइल ना रहे तार मोबाइल धर दे ली और फिर 12वीं पढ़ी कर छाड़ ला चाड़ बाग फिर एक ठन टेलर धर दे लिया चेबे नोनी टेलर करवा काम
0: अच्छा हाँ हाँ ये तो अच्छा है टेलर बोले गोटो हुनर आए समझो है कि नहीं बोले कहीं बोले काम करुन करुन उन असली खाली समय ने उन बल काम कर ले सके अच्छा तुम जो समूह जो लोग एबे आगे बोले असन उन्ती बाढ़ती काज काय सोचला सास काय करा से
1: तो एबे आवरी हम काय करू हां तो आई आवरी बोले कहीं काम होइले हावरी बोले करबू
0: अच्छा असन मन आसे बिचार आसे बोलू हां हां तो आले दिदी तू इतलो अच्छा बोले तुम जो सोसायता समूह तू जो पशु सखी बनलो सफाई गोटके इतलो अच्छा नंगा सांगली साल खूब खूब जुवार
1: जुवार

0: Sahayata Samuh 7.
1: जीवनाचो स्वर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रगति महिला स्व सहायता समूह मंगनार के अध्यक्ष भगवती देवांगन से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे बलबीर सिंह कच्छ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आइए सुनते हैं हलवी बोली में वार्ता साक्षरता की आवश्यकता। वार्ताकार है बलबीर सिंह कच्छ।
4: रेडियो सुनतो सपाय भाई बहन मन के सेवा जोहार। आज चो ए कार्यक्रम ने आमी आपन मन संगे गोड बात करवा जानवा आपन मन सपाय जानास इकी ये गोटोक असन समय आए भले ने काई भले काम के कर तो काजे माने के खेनिक भले पढ़ा लिखा होतर जरूरी आए। तो आज आमी गोड बात करवा वर्तमान में साक्षरता की आवश्यकता बलने ए समयाने साक्षरता चो आवश्यकता। आमी सीधा सीधा बोलुक सकूं कि आमचो जीवनाने पढ़ा लिखा रो तो काजे काय काजे जरूरी है। आपन मन जान सास कई काम बुता ने बल जायसास होती और करसास होती तेबे ये जानु खोए से कि पढ़ा लिखा झुंडोलो माने आए हुन तो काई बल काम के झपके करे से मंत्र जोन निरक्षर आए मने अनपढ़ आए कहीं पढ़ा लिखा नहीं जाने उनके कहाँ बोले गेलो ने कितलो चीपा होए से कितलो अटकनी होए से कितलो समस्या होए से ये होनी माने जानुक लाए सके। तो रेडियो सुन तो भाई बहन मन आगे झुके बल ने गांव गांव ने बोले शहर मन ने बोले पढ़ तो काजे स्कूल मन खूबे कम रली जेचो कारण ने कहा कि लोग मन बलने पढ़ूक लाय नहीं सकला। आरु जोन आमचो पारंपरिक रीति नीति आय जसन की सामाजिक काम मन है धार्मिक काम मन है सांस्कारिक काम मन है और बले जितलो आमचो पुरका पार्टी चो जोन बुद्धिवान लोग मनरला पीढ़ी ने गांव ने पारा ने देश ने जोन बाटे अगर पढ़ा लिखा रला

हुन मन तो आपलो जोन सामाजिक रीति रिवाज के लिखला और कई कसन महान बुद्धिजीवी लोग बोल रहा हुन मन असन समाज चुका जे काम करला जे काय कि आजी आमी हुन मन चु लिख लो कथा कहानी के इतिहास के पढ़ लेने जानुक होए से कि हुन मन कसन भले ने आमचो देश के आमचो समाज के आमचो गांव पारा के उदिम बना तो काजे गोटक दूसर के भाईचारा गोटक सूतुर ने रतो काजे कसन सिखिया देते रला जोन जोन बाटे पढ़ा लिखा लोग रला हुन बाटचो लोग तो असन बुद्धिजीवी लोग मंचो जोन कथा कहानियां उन मंचो इतिहास के लिखला मंतर जोन गांव बाटे जे बाटे काहे कि स्कूल नहीं रहे लोग मन पढ़ा लिखा नहीं रला आरु असन बाटे बले कई कसन महान बुद्धिजीवी मन लोग रला जे मंचो कारण ने कहा कि उन समाज चलते रली मंतर पढ़ा लिखा नहीं हो तो कारण ने हुन मंचो मरना होले ने हुन मंचो जोन विचार आए हुन मंचो जोन काम आए समाज काजे देश काजे पारा काजे काय करला हुन मोरतक होता है बोतुन गेली कसन बल्ले ने हुन बाटे पढ़ा लिखा कोनी माने नी रला हुन के कोनी लिखुन बाती नी संगाला तेबे आमी हुनचो जोन कर्म आए हुनचो जोन काम आए हुनचो जोन बुद्धि के आए हुनके आमी जानुकलाय नी सकूं तो असन असन जोन कथा कहानी मन बले आसे अर्जसन की आमचो कई सामाजिक है धार्मिक है सांस्कृतिक परंपरा और बले जोन बल परंपरा आसे उनके तो आमी बनाते हूँ से मानते हूँ से ये गोटक पीढ़ी ले दूसर पीढ़ी जाते जाए से तेबे हुमन एबे मतलब बाचली से मंत्र जोन आमचो महान बुद्धिजीवी लोग रला हुन मंचो जोन काम रली हुन मंचो जोन विचार लोली बले ने समाज के हरी कुदिम ने संगा तो काजे समाज के आगे बड़ा तो काजे हुन मंचो मोरतो के हुताए भूतुन गेली हुन समय ने हुनी बाटे कोनी पढ़ा लिखा माने रतो तो हुनचो कथा कहानी के लिखतो आर्य ब्यामे पढ़तू हैं हुनचो ज्ञान के जानतू आरु हुन ज्ञान के आमी एबे आमचो जीवनाने आनुक सकतू मंतर पढ़ा लिखा नहीं हो तो कारण ने हुनचो मरतो के हुनचो जोन ज्ञान आए हुनचो जोन बुद्धि आए हुनचो ताने जोन ताकत रेली हुन सपाय भूतुन गेली यही काजे आम के पढ़ा लिखा रे लेने ये सब के बचाव खुला सकू आपन मन जानास भले ने आमचो जीवना काजे कई धंधा पानी बल करूं से रोजगार करूं से एचो काज बोले पढ़ा लिखा हतोर जरूरी है कसन बले दखा आगे जुगे कहीं बिक्री भांजरी करतो राय तो जुगे करून आमी सोली पहली के काम ने आंते रलू आरु सोली पहली ने नापुन बाती आमी कोनी भीती नहीं आए ना आले कहाँ है लकीर खींचते रहूं ना आले एक पहली दुई पहली काजे गोटी के मंडाते रलू ना आले कहीं कटके के टूटान बाती एक ठान दू ठान असन संगाते रलू तो ये गोटोक भले ने निरक्षता बेराचो गोटोक काम रली अनपढ़ बेराचो गोटोक काम रली मंतर एवे तो काय कि किलो आर बाटली से आर एक जान तो का जाम के पढ़ा लिखा को भी जरूरी है कसन बल्ले दखा असन है कि काई बल्ले बिक्री भांजरी कर तो काजे दखा बल्ले ने कई कसन सामान बल्ले आजकल मन निकल ली से पाकिट मन रली से तो उन सामान ने लिख लो रहे से केबे बन ली उन केब तक काम चो काम ये उकलाए सके दे उन चो कीमत कितलो आए ये सब के आजकल बल्ले ने कहा कि प्रसंस्करण करुन बाती काई बल्ले सामान के बिकतर रहे से आरे काजे पढ़ाई लिखा होता और बोले जरूरी है आर कोनी बाटे कहीं सामान के गांव ने जुगे करुन अनपढ़ लोग ठगा जाए सो कहीं बोले आप लो अनाज के बिक्री भांजरी करते रहे हाट गाय नेतर आए तो कोचिया मन बल्ले ने आप लो टुकना टाकरा झोला बोरा के झिकुन बाती हनुमन किलो ने मंडाए सोत झोंके सोत आर सांग सोत कि तू चो इतलो किलो होली इतलो रुपया किलो आए मंतर अनपढ़ होतो के कारण ने जोन किलो बाट के जोन मंडाए सोत उन बाट कितलो चुआ है एक किलो आए कि दुई किलो आए पांच किलो आए आमी

नहीं सकूं, जो अनपढ़ लोग आत, निरक्षर लोग आत, उन मन तो इतली जानो, बोले गोटाक मंडान दिला वजन के तौल ला, मंत्रता कितलो किलो आसे एक नहीं जान ला, एक नहीं जान तो कारण ने कहा है कि आमी ठगाए हों से। तो धंधा पानी कर तो लोग काज बोले, और कहीं बिक्री भांजरी कर तो लोग काज बोले, पढ़ा लिखा हो तो जरूरी है, चाहे गांव चो हो नाले पर शहर चो हो, बोले नहीं दोनों चो जो धंधा पानी कर तो लोग के बोले शिक्षा खूब जरूरी है। आजकल तो अपन मन जानास कि बिना शिक्षा चो आमी आगे बाड़ू बोले नहीं सकूं, अजुगी करुण आमी बोले ने आमचो देश बोले कृषि प्रधान देश है, और गांव में ने जुगे खेती बाड़ी करते रहे से। आजकल तो अपन में जाना कि आधुनिक तरीका ने खेती करते रहोली से, बोले ने बीज एवल नवा उन्नत किस्म चुईली से, खद भात एवले उन्नत किस्म चुईली से, कहीं कल मशीन आए बोले ने खेती बाड़ी करते काजे ए मन बल का है कि उन्नत किस्म होली से। तो मचो बोल तो गोट ऐसा ना है कि देखा आजी खेती बाड़ी ने बोले आमी बल ने उन्नत किस्म चो बीज मन आनु से, आरु देखा ऐसा ना है कि कोनी बोले बीज के आमी घेनु से, तो उन बीज ने बोल का है कि लिखा रहे से उनचो रेट बोल रहे से, और कौन दिन बन ली और कौन तारीख तक उन रोक लाए सके, और हन चलो उन पाठ उन काम देख लाए नहीं सके, ये गोट के बोल का है कि पढ़ा लिखा रोले ने पढ़ुन बाती आमी जानुक लाए सकूं ना ले जेके उनचो जोन बनलो बीती जोन तारीख आए उन सरली बोले ने कहा कि उन चुपजन बल जुगे हो लाए नहीं सके, और संग संग कहा कि कहीं दवाई दारू आम के घेन तो रहा है लगात रहा है, बोले हुन बोले आजकल दखा इतलो ग्राम मिली ग्राम आए किलो आए, बोले ये सफाई लिखा रहे से कि एक एकड़ ने आम के इतलो किलोग्राम इतलो लीटर पानी के आमी घोरन बाती लगात रहा है। तो ये सब चीज का है कि जब तक आमी पढ़ा लिखा नहीं रहूं तब तक तो आमी जानुक लाए नहीं सकूं, और आजकल देखा बोले न काई बोले योजना चो लाभ धरतो काजे, सरकार ची योजना चो लाभ धरतो काजे का है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बोले ने ऑनलाइन ने आम के फार्म भरुक लाए पड़े से, कोनी से बोले योजना चो लाभ धरतो काजे, सरकार ची योजना मन चो लाभ धरतो काजे। तो जोन माने पढ़ा लिखा से तो हुन तो जानुक लाए सके दे कि आम के ऑनलाइन काय बीती है, ऑनलाइन आम के कसन फार्म भर तो रहे, आगे जुगे तो कहा कि आम कहा फार्म मांग लू ना कोनी गांव छो पटवारी ना गांव छो गुरुजी ना गांव छो ग्राम सेवक ना कोनी गांव छो असन पढ़ा लिखा आसे जाले उन चल लगने उन बाती भराव बोलते रहूं, और उन भर उन दिलन कहा कि आम फार्म के नहीं जमा करते रहूं। मंत्र कहा कि आजकल बल ने पेन ने लिखुन बाती फार्म भर तो बीती एक काम बोले धीरे धीरे सरे से मतलब सरली एदा सब काम ऑनलाइन होए से, बोले ना आम के कंप्यूटर ने ऑनलाइन फार्म भरता है तेवे हुन योजना चो लाभ धरुक लाए सकवा। तो ये हिसाब ने बोल दकू कि आम के खेती बाड़ी करतो ताने लोग किसान भाई भी मन के बोले खिंडिक ना खिंडिक पढ़ा लिखा होक लाए पढ़े दे, तेवे हुन आगे उन्नति बाढ़ती करुक लाए सक दे। आजकल देखा कि बोले ने कोनी किसान भाई खूबे बल्ले ने कहा है कि कहीं जो खेती बाड़ी कर सो, तो आजकल तो खूबे खूबे साग भाजी बल्ले ने 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ ने जोंदरा लगाए सोत है, मीरी लगाए सोत, सेमी लगाए सोत, बरबट्टी लगाए सोत, भेंडी लगाए सोत, कुंडा लगाए सोत। तो ये सपाय बिक्री भांजरी कर तो काज बोले आजकल ऑनलाइन सिस्टम होली से हम होता दुख लाए सकूं कि ऑनलाइन ने आमचो दखुन बाती कहाँ कौन काय रेट चले से, आम बल का है कि होता आम चो जो फसल क्या है होता कंप्यूटर डालून बाते आम गुलाए देश ने आम के फैलाव को लाए सकूं कि मचो लगे इतलो माल आसे, इतलो सब्जी आसे, इतलो अनाज आसे, मैं बिकू चाहे से मैं इतलो कीमत ले बिकू आए। तो ये सब चीज के का है कि सांग तो काज बोले पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी है। तो होने काजे ये समय ने आम के पढ़ा लिखा बल्ले ने हो तो खूब जरूरी है, और संग संग दखा बल्ले ने कहा कि भाई बहन मन कोनी बाटे गेलू जसन कि आमी भ्रमण ने कहा बुलू गेलू कहाँ कहीं काम ने गेलू, तो एचो काज बोल का है कि पढ़ा लिखा होता जरूरी है। सबले पहले तो ये गोटा है कि आम बस स्टैंड ने जाऊं से तो ता दखुक लाए पड़े से कौन बस स्टैंड ने गेले तो गाड़ा भर होता बस मन है, जो पढ़ा लिखा आदमी है होने उन डगरा उकलाए सके कि कौन बस
ने काय लिखला से कौन बस कहाँ जातो बीती है ये तो लिखो रहे से जो पढ़ा लिखा है उन आदमी जानू कला सके तो ये बोले का है कि कितलो आम के तकलीफ हो से जोन पढ़ा लिखा नहीं आता और जोन असन ठान ने जोन अमरुन जाए से होने मन के पूछ ले जानू को दे कि अनपढ़ रहे ने कितलो माने के चिपा हो कला सके ये आए पढ़ा लिखा चो ताकत ये आए शिक्षा चो ताकत भले ने कहा कि आमी कहाँ है जावा कहाँ बुलुक जावा कोनी बाटे गेलो ने कहाँ है गेलो ने तो कहा है कि ये सफाई चीज के पढ़ा लिखा रोलो ने आमी जानुक लाए सकवा है आजकल तो ये बोले आए कि देखा भले ने का ही बोले घेनू का ही बोले खाऊं तो ये चुका जो कहा है कि मतलब ऑनलाइन भुगतान जे के बोलूं से है ऑनलाइन भुगतान करूं से पैसा कोड़ी चो झंझट बोले दाई गेली जोन पढ़ा लिखा आदमी आए आमी अपन मन एक कप चाह पिया 10 रुपया हो 5 रुपया हो है कहीं नाश्ता करा कहीं साग भात कहीं खाना खा ना ले कपड़ा लता गेन बल्ले ने कहीं बोले गेन तो काम ने आजकल ऑनलाइन पेमेंट बल्ले ने ऑनलाइन पैसा दे तो बीती उठ होली से तो ये सब के दखुन बाती आम के ये बे गोटो गोटक माने के पढ़ा लिखा हो तो जरूरी आए और पढ़ा लिखा रहने ने ते भी आमी ये ऑनलाइन भुगतान बल कर सको मान लो अनपढ़ आसो कहीं आम के पैसा बोले दे तो रहा है पैसा आसे जाल उनके बोले आम कहीं घेन बात उनकी देते रहा है तो उनके कौन नोट कितलो चो आए कौन 20 रहा है कि कौन 50 आए कौन 100 आए कौन 500 चो नोट आए ये केवल तो जोन पढ़ा लिखा आदमी है होनी जानुक लाए सके दे और गेन तोर बोले आमी लाखों कई लाखों करोड़ों गेन तोर आए जाले हुन चुका बोले पढ़ा लिखा होक लागे से ते भी हुन गिनतू के रुक लाए सके तो आमचो जीवना ने बल्ले ने कहा कि काई काज बोले पढ़ा लिखा हो तोर जरूरी आए और संगे कहा कि आमचो बुद्धि के आम के बड़ा तो काजे आमचो ज्ञान के बड़ा तो काजे आजकल तो आपन मन जाना सी कि समाचार पत्र होली से पत्र पत्रिका होली से कई पुस्तक मन छपली से कई बड़े बड़े महान व्यक्ति मन जोन आमच देश का जे लड़नता वीर मन बोले आसोत स्वतंत्रता सेनानी मन बोले आसोत समाज सुधारक मन बोले आसोत और कई कसन बड़े बड़े ज्ञानी मन आसोत ये मन चो पुस्तक मन बोले छपली से है जोन आदमी जोन माने जोन ले काले की पढ़ा लिखा सो तो मन पढ़ून बाती आप लोग ज्ञान के बड़ा उकला सको आप लोग देश के जानुक लाए सको तेबे उनचो जीवना सुधरुक लाए सके दे आमी पढ़ा लिखा नहीं रहलू बोले ना मैं काय करूँ आम के कोनी तो बोले ने कहा कि कथा पुराण सुना लो सन बोले हर समय तो सुना उकलाई नहीं सके केबे के बार कहीं टाइम दे उन बाती सांगे दे सुनाए दे मतलब हर समय तो आम के सुना उकलाई नहीं सको तो ये आमचो ज्ञान के अर्जन कर तो काजे आमचो ज्ञान के बड़ा तो काजे कापी पुस्तक बल्ले ने पढ़ून बाती सीख तो काजे आम के शिक्षा बल्ले ने पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी आए ये समिया इली से है और संग संग का है कि आमी बल्ले ने काची संगे आम के बल्ले ने संपर्क बनान बाती रहतो रहा है ऐसो काज बल्ले पढ़ा लिखा लागे से कसन संपर्क बल्ले ने देखा आमी इतले मैं सांगे से जसन की आजकल तो सपाई लोग मोबाइल चो गोट ने खबर दिया दी सांगा सांगी हो सो कहीं अटकनी होली कहीं घर ने कहीं काम पड़ ली आम कोई कोनी सगा बल्ले ने 20-25 किलोमीटर लापी आसोत नाले बस्तर चो कोनी ची बल गाँव ने आसोत सगा मन आपन मन तो जाना ची कि सपाय परिवार चो जो सगा है बेटी बहिना मामा है काका काकी है बोले रिश्तेदारी नाता नारी मन का है कि गाँव गाँव ने आसोत आगे जुगे का है कि आमी बोले ने कहीं बिया शादी आए नाल कहीं दिन नहानी आए नाल कहीं आए तो बोले हिंडते हिंडते जाओन बाती उनके सांगुकलाए पड़ते रहे तो कितलो दिन लागते रहे जाओन मंत्र ये भी तो असन हुआ मोबाइल चो होली से आमी का है कि 1 सेकंड ने फोन करून बात उनके सांगुकलाए सकूँ अंतर ये चुकाज बोल का है कि होता पढ़ा लिखा उकलाए पड़े से है पढ़ा लिखा आम के होता काय नंबर आए उन नंबर के होता चेपा उकलाए पड़े से नाले काची नंबर के मोबाइल ने सेव करता रहा है बल्ले ने हुंचो नंबर संग का है कि नाउन ने उनके सेव कर उकलाए पड़े से
है और कहाँ के भी कहीं असन काम पड़ ली उनसे संग गोड़ बात करते रहा बोले न उन मोबाइल ने उन नाव की टाइप करुक लाए।

तेबे हुन्छ ना उता निकरेसे तेबे हामी उनके मोबाइल ने फोन करून बाती कहीं बोल खबर आए नाल कहीं बोल गोट आए हामी उनके सामने कुलाय सकूं उनसे संग गोट बात करूं कुलाय सकूं या कौन आदमी करूं सके है जो अनपढ़ आदमी है उन तो करूं कुलाय नहीं सके जो अन पढ़ा लिखा आदमी है उन्हें करूं कुलाय सके तो आम के गोटक दूसर संगे बल्ले ने कहा कि संपर्क बनान संगा तो काज बले बल्ले ने गोड बात हर समय उनचो संगे आमी नजदीकी ने रहू बल्ले ने गोड बात करते रहू कहीं खबर बल्ले ने कहीं सुना सुनी सांगा सांगी हो ये चो काज है। आजकल मोबाइल खूबे काम दे से और मोबाइल के चला तो काज बोले खूबे पढ़ा लिखा हो तो जरूरी है है तो ये असन असन बल्ले ने कहा कि काम मन एबे पढ़े लिखा रतो काजे आम के खूबे जरूरी है। और संग संग देखा बल्ले ने कहा कि आजकल तो कंप्यूटर जो जमाना बल्ले होली से है कंप्यूटर ने कई काम मन होए से है मैं आगे बल गोटे उरले कि जो ऑनलाइन कहीं बल फार्म वगैरह भरूँ से कहीं भराऊँ से तो कंप्यूटर ले भरसो तो ये चो काजे सीख तो काज बल खूब जरूरी है। बल्ले ने कहा कि पढ़ा लिखा हो लेने ते भी आम कंप्यूटर के सीख लाए सकूँ ते भी आम कंप्यूटर के चलाव लाए सकूँ है। आजकल देखा कई कसन आसे कि कंप्यूटर ने जो दिलो रासे कि कई आमी काम करूँ से जाले होता कंप्यूटर चला बेरा हूँ सांगे से कि तु गलत करसी नाल तु अच्छा करसी नाल तु एता जा नाल तु होता कर नाल तु उनके बोले ने माउस ने दबाओ होता सांगते जाए से जो उन पढ़ा लिखा आदमी है होने तो पढ़ उन बातें समझुक सके और कंप्यूटर जो काम के अनुकूला सके तो असन असन बल्ले ने कहा कि आमचो ये जो ये तो बल्ले ने ये समय ने पढ़ा लिखा चो काम होए से है। जैसा कि मैं आगे बोले बोलते रहे कि ऑनलाइन से जो काम आए बोलो कहीं बोले फार्म भर तो काजे आए नाले कहीं बोले जो पढ़े लिखे जो लेखा लिखी मना था आजकल तो बल्ले ने कहीं से बोले जो नौकरी पैसा काजे आए नाले पढ़ाई लिखाई काजे आए है ये चो काज बोले कहा कि ऑनलाइन ने कर सो। और आजकल एक आया है कि जैसन कि आमी असन बले होली से कि ऑनलाइन बीती आमी कहाँ बस ने जात रहा है कहीं रेल ने जात रहा है कहीं जहाज ले जात रहा है तो आम के टिकट कटा तो काजे बोले घर ले आमी मोबाइल ने करुक लाए सकूं टिकट आमी शहर ले रायपुर जात रहा है रायपुर ले शहर है तो रहा है ना कहीं दूसर बाट जात रहा है जहाज चेगुन को दिल्ली जात रहा है भोपाल जात रहा है ना रेल चेगुन बात कोनी आम के रायपुर जात रहा है तो ये बोल का है कि आमी घर ले ची मोबाइल ले टिकट बोले ने होता घेन उकलाए सकूं बोले ने आम के पढ़ा लिखा रोलो नहीं तो आम जान उकलाए सकूं आम रेल चो टिकट के कसन घेनवा जहाज चो टिकट के कसन घेनवा बस चो टिकट तो कसन घेनवा है उनचो जो टिकट घेन तो जो नियम धियम आए उनके आम के जान उकलाए पढ़े दे ते भी आमी उन टिकट के बोले घेन उकलाए सकूँ बोले ये काम के भी हो दे जे भी आमी पढ़ा लिखा हुआ निरक्षर रले अनपढ़ रले ने आमी बल्ले ने कहा कि ये काम के करुक लाए नहीं सकूं होने का जे मचो बोल तो गोट यही आए भाई बहन मन आम के पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी है। ये समय ने पढ़ा लिखा चो खूबे महत्ता आसे अपन मन आजकल तो गांव गांव ने अपन घर घर ने दक्षास बल्ले ने कोचो घर कहा कि चार चक्का बीती गाड़ी आसे कोचो घर कहा कि दुई चक्का बीती गाड़ी आसे घोषो घर का है कि तीन चक्का भी गाड़ी आसे है खेती किसानी करते भी तो मन लग का है कि ट्रैक्टर आसे कई कल मन आसे मशीन मन आसे तो ये मशीन बोल काय नहीं चले डीजल और पेट्रोल नहीं चले है। आजकल तो जो पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो सपाय लग गाड़ी मन आसे नानी सुनी गाड़ी तो सपाय घर मन नहीं आसे तो ये गाड़ी मन ने कहीं पेट्रोल सर ली कहीं डीजल सर ली तो आमी पेट्रोल पंप ने जाऊँ से और पेट्रोल पंप बेरा आमी होता बोलूँ से कि आम के तीन लीटर पेट्रोल देस पाँच लीटर पेट्रोल देस बोले होता लीटर दका ऐसे मशीन रहे से उन भर तो बेरा अपन मन दक्षास की नहीं जाले होता सांगे से कि इतलो लीटर होली इतलो लीटर होली इतलो लीटर होली इतलो पैसा होली है। जोन आदमी पढ़ा लिखा है तो हो आदमी का है कि उनके उन मशीन के दक उन बातें सांग जानुक सके हाँ इतलो लीटर होली इतलो पैसा होली नहाले एता बोले अभी ठगा खाओ सकूं
कसन बल्ले अनपढ़ काय की मान

ఆమె 20 లీటర్ పెట్రోల్ డాలు ఉతా 15 లీటర్ డాలు హా హోలీ जोन पढ़ा लिखा है उन तो दकुन बात सांगित नहीं ये था तो 15 लीटर डाल लीस 5 लीटर आउट डाल और जोन अनपढ़ आदमी है हाँ होली बोले ना होली 20 लीटर चो पैसा दे दिलो 15 लीटर डीजल भरा दिलो पेट्रोल भरा दिलो ये तो आम अनपढ़ चो कारण ठगा खा लो करें तो यही काजे आमचो जीवना ने पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी है जसन जसन का है कि आमचो देश बल्ले ने कहा है कि बढ़ते जाए से बदलते जाए से उसन उसन का है कि आमचो जो काम ने आन तो जो जिनिस मन है उन मन बोले बदल जाए से जसन कि मैं तुम संग गोटे आले कि आगे का है कि हिंडते जाते रहू फिर उतलन का है कि हमें साइकिल ने जाते रहू साइकिल ने तो इतलो पेट्रोल डीजल नहीं लागत रहे मानते रहे दाएँ का है कि फटफटी होली से कार होली से मोटर गार्ड होली से ऐसो काज का है कि आम के बल्ले ने डीजल पे टुक भरुक लाए पड़े से है जब तक आमी पढ़ा लिखा नहीं हो तो आम के कई बाटे का है कि धोखा खाऊक लाए सकूं तो होने काजे आम के पढ़ा लिखा होता और खूबे जरूरी आए तो मचो बोल तो गोट यही आए कि ये समय ने आम के घर चो गोटो गोटो माने के पढ़तो रहे पढ़ा लिखा होता रहे और गांव चो बोले गांव ने आमे दकों से कहीं कसन घर मनासे आम चो किसान भाई बहन मनासोत गांव ने रोतो लोग आसोत कि जुगे करून गांव चो लोग काय करसोत कि काची घरे 2-3 जन पीला आसोत तो काय करसोत पीला पीला के आजकल देखो कैसे कि जोन पीला पड़ुक जात रहे हुन दूसरी तीसरी पढ़ लो पढ़ते पढ़ते पांचवी पढ़ते पढ़ते हुन घरे गोटक फिर पीला चो जन्म होली जन्म होता के फिर उनके खेला तो कूदा तो किनिक डंड होली बल्ले ने कहा कि घर तो लोग गांव के लोग तो कहा कि जुगे करो कूली बूती जाए सो तो काय हो ऐसे कि जो पीला स्कूल जाते रहे पांची पोड़ू रहे उनके उन पीला खेला तो काज हट कान दे सो नहीं तू पीला खेला वामी बूती जाऊं दे कूली जाऊं ये बोले आम के गांव मैंने धका दे ऐसे तो एचो ने काय हो ऐसे हुन पीला तो नहीं पढ़ लो और ये तो जन्म लो से हुन पीला बोला आगे पढ़ुक लाई नहीं सके तो ये सब चीज के आम के जानते रहे कि जोन बोले पीला मनासोत उनके कसने कर उन बोले आम के पढ़ाई लिखाई करत रहे कहीं मंजे गए थे उन मन कट के नहीं उकलाए नहीं देते रहे और गांव ने ये बोल हो ऐसे कि पीला मन के काय कर सोत कि बोले ने जोन बोले आम चल लगे पशु जानवर आसोत उन मन के चरा तो काज पटा सोत स्कूल जा तो पीला के जोन प्राइमरी ने पढ़ लो से मिडिल स्कूल ने पढ़े से हुन पीला के काय कर सोत कि गाय बैला चराउक लाए पटाए सोत छेड़ी बोकड़ी चलाउक लाए पटाए सोत बरा मन के दखा रखतो काज पटाए सोत मेंढा मेंढी के दखा रखतो काज पटाए सोत हुन पढ़ तो पीला के स्कूल ले छंडाए सोत ये सब काम कर तो काज बल्ले ने असन आए पढ़तो बेरा आम के पीला के कहीं बल्ले ने कहीं बाधा एवक लाए नहीं देत रहा पीला के अच्छा पढ़ात रहे भले आमी आमचो लगे आमचो गांव ने आमी अनपढ़ आसू एवेबल कई गांव ने अनपढ़ आसोत कसन बल्ले का है कि हुन गांव ने हुन पारा ने आगे स्कूल चो जोन सुविधा नहीं रही पढ़ तो काज पढ़ा तो लिखा तो काज सुविधा नहीं रही तो ये होते रही मंतर एवे तो गांव गांव ने पारा पारा ने स्कूल नासे आमी पढ़ाओ के लाए सकूं है आमचो जोन परंपरा ने आगे चलते रही जे कि आमी बोलू से कि कई कसन परंपरा मनासे कई कसन बल्ले ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे तो जोन आमचो जीवना का जे बल्ले ने बाधा है आमचो जीवना का जे चीपा है आमचो जीवना का जे अटकनी है तो असन परंपरा मन के टूटा उकलाए पड़े दे जसन की अभी मैं गोट बात करते रहे कि आम आपन मन संगे कि आमचो लगे गाय बैला हासे तो उन पड़ुक जाए से उन पीला 3-4 साल स्कूल ने गेलो तो गाय बोला चरा तो काजे उन पीला के आम स्कूल ले छड़ना उसे ये परंपरा तो अडरा परंपरा ये तो गलत परंपरा है कसन बल्ले का है कि उन पीला चो जोन भविष्य है आगे बाढ़ तो बीती जोन तकनीक है शिक्षा है बोलुवे उनके मे रुक नहीं सकले ने हुन पीला फिर आगे बाढ़ उक लाए नहीं सके हुन पीड़ा आगे नहीं बाढ़ लो हुन पीला ज्ञानी नहीं हो लो तो हुन आम के बोले का है कि अस्थिर ने खुआ उकलाए अस्थिर ने जिया उकलाए आम चुकाई तकलीफ होले ने बीमार सीमार पोड़ लू बल्ले ने हुन पीला आम के उतलो जतन कर उकलाए नहीं सके तो होने काजे का है कि आम के बल्ले ने गोटक पीढ़ी तकलीफ हो उकलाए सके बल्ले ने ये तो जन पीढ़ी

0: जाए ये भी चीज उन पीला मन आए उन पीला के आम के पढ़ात रहा है आगे पढ़ात रहा है घरे कितली बल चिपारो आम के कसनी ने कसुन करुन बाती बले उनके बल ने पढ़ा तो जोन पीला मन क्या है उनके ठेबा तर नो आए उनके सिखा तो रहा है उन मन के पटा तो रहा है। आजकल तो कहा है कि घरे नहीं आए जाल कहीं हॉस्टल में ना से हॉस्टल ने भर्ती कराता रहा है उन मन के पढ़ाता रहा है आगे सिखाता रहा है हुन लेका पढ़ लो लिख लो जाल का है कि आप लोग बल्ले ने परिवार ने जित लो खेती बाड़ी भले आसे उन खेती बाड़ी के अच्छा करुक लाए सके दे आरू आमी जोन डोकरा डोकरी होलू बल्ले ने हुन पीला आमचू जतन नगत करुक लाए सके दे कहीं बीमारी से मारी पढ़ लू बल्ले ने उन अस्पताल ने उकलाए सके दे है कहीं अच्छा उन पढ़ा लिखा रहे ने सरकार चु योजना मन चु लाभ धुरुन बाती नगद ढंग ले बल्ले ने उन्नत हिसाब ने खेती बाड़ी करुन बाती घर से जोन परिवार आत घर से जोन डोकरा डोकरी आत हुन चु जीवना के अच्छा अस्थिर ने संग उकलाए सके आम के तकलीफ हो उकलाए नहीं सके। तो रेडियो सुन तो भाई बहन मन शहर चो हो नाले गाँव चो हो जोन अनपढ़ आसोत माए बाप अनपढ़ आसोत नाले काय की कसन और भले असन कई कासे जोन पढ़े लिखे जोन गांव चो रहतो हो नाल शहर चो लोग तो, होतो हो तो हुनमन आप लोग पीड़ा पीला के पढ़ा तो काजे बल ध्यान दे उन्होंने तो भले अनपढ़ रहा माए बाप अनपढ़ बल रहा नाल शिक्षित बल रहा हुनमन जोन बल पीला घरे आसोत जन्म धर दे उन पीला मन के जरूर पढ़ावा जरूर लिखावा तेबे हुन आमचो समाज काजे आमचो परिवार काजे आमचो गांव काजे आमचो देश काजे नगत रह दे यही याद पीला मन आमचो भविष्य। तो देखा इतलो मैं अपन मन संग गोट बात कर ले कि साक्षर बल ने पढ़ा लिखा रलो ने निरक्षर बल ने अनपढ़ रोले ने जीवना चो उन्नति बाढ़ती ने कितलो अटकनी है उकलाए सके कितलो चीपा ये उकलाए सके फिर आरक मैं सरासरी बल्ले से पीला मन के पढ़ावा लिखावा आगे बढ़ावा खूबे खूबे सेवा जोहार।
1: जीवना जो सुहूर कार्यक्रम के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे वार्ता साक्षरता की आवश्यकता। वार्ताकार थे बलवीर सिंह कच्छ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोदोमाली। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गोंडी लोकगीत। कलाकार हैं लच्छू राम और साथी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम कोदोमाली। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लच्छू राम और साथियों के स्वर में गोंडी लोक गीत।

कोदोमाली कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लच्छू राम और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत।

0: कोतवाली कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे लच्छूराम और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। समाचार अब हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल